मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज शनिवार है, सकसंवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 6वीं तिथि। तदनुसार 27 जून सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:52 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है खेत खलिहान में वार्ता, मिर्च की खेती। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। हमारे दैनिक जीवन में मिर्च का काफी महत्व है। इसका अनेक रूपों में इस्तेमाल होता है। इसकी खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम और आर्द्रता का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो मिर्च की फसल अधिक तापक्रम और आर्द्रता पसंद करती है। यह प्रायः 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पसंद करती है, लेकिन सब्जी जाति वाली किस्में कुछ कम तापमान में भी अच्छी होती है। मिर्च की फसल की खेती के लिए कार्बनिक पदार्थ से भरपूर उचित जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। क्षारीय भूमि में इसकी खेती नहीं की जा सकती है, परंतु चूने की अधिक मात्रा हो तो भी इसकी सफल खेती की जा सकती है। यह कुछ हद तक अम्लीयता बर्दाश्त कर सकती है। भूमि का पीएच 5.5 से 6.5 होना अच्छा होता है। अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए मिर्च की बुआई सही समय पर करनी चाहिए। बिहार में मुख्य फसल हेतु बीज की बुआई का उपयुक्त समय जून जुलाई का महीना है और रोपण का समय जुलाई अगस्त है। बीजों को बीज स्थली में बोएं, जिसका ठीक समय अभी चल रहा है। बीज की बुआई के पहले बीज का उपचार थीरम या कैप्टान नामक दवा से निश्चित रूप से आप कर लें। इसके लिए 1 किलोग्राम बीज में 2 ग्राम दवा मिलाकर उपचारित करें। 1 हेक्टेयर खेत में रोपाई के लिए 40 से 50 वर्ग मीटर भूमि पौधशाला के लिए पर्याप्त होगी। बीज बोने के लिए पौधशाला की ऊंचाई भूमि की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर रखें तथा उसमें पानी नहीं रुके इसकी भी व्यवस्था रखें। क्यारियों की चौड़ाई 1 मीटर तथा लंबाई आवश्यकता अनुसार रखें। बीज को उपचारित करना किसी भी हालत में नहीं भूलें, अन्यथा पौधे बीमारी से आक्रांत होकर मर जाएंगे और उपज में काफी कमी होगी। अगर पौधे कमजोर हों तो यूरिया का उपरिवेशन कर तुरंत सिंचाई कर दें। पौधशाला में लगे पौधे को कम से कम 2 बार 10 से 12 दिनों के अंतराल पर डाइथेनियम 45 नामक फफूंदनाशी दवा का छिड़काव करें, ताकि रोग होने की आशंका नहीं रहे। कीट का आक्रमण दिखाई पड़े तो मेटास्टैटिक दवा के 0.1% घोल का छिड़काव भी 10 से 12 दिनों के अंतराल पर करें। हरी मिर्च के लिए फसल सारों भर उगाई जाती है। किसान भाई इसके लिए बुआई भी फसल लेने के समय के हिसाब से ही करें। सफल खेती के लिए स्वस्थ और रोग मुक्त बीज का उपयोग करें। बीज की दर उसके अंकुरण और शुद्धता प्रतिशत पर निर्भर करती है। यदि बीज का अंकुरण 90 से 95% है तो प्रति हेक्टेयर 700 से 900 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। प्रायः मिर्च के पौधे के रोपण शाम के समय ही आप करें। तेज धूप के समय यदि आप रोपाई करती हैं तो पौधे की वृद्धि कम होती है और पौधे मुरझाने लगते हैं, उन्हें सूखने का भी भय रहता है। मिर्च में रोपाई के लिए उचित दूरी किस्म एवं ऋतुओं के अनुसार कम या अधिक होती है। साधारण तौर पर मिर्च की रोपाई पंक्ति से पंक्ति 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। अगर खेत में उर्वरा शक्ति काफ़ी अधिक है तो दूरी कुछ और अधिक आप बढ़ा सकते हैं। किस्मों के बारे में आप जान लें। मसाला के लिए मिर्च की प्रमुख किस्में हैं पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, G1, G2, G4, G5, पंत C1, आंध्र ज्योति, भाग्यलक्ष्मी, K2, पंजाब लाल। संकर किस्मों के लिए सोल्जर, क्रांति, दशहरा, गोदावरी, प्रीति, हीरो, BSS 202, BSS 414, तेजस्विनी अच्छी जातियां हैं। इनकी आप बुआई कर सकते हैं। कुछ कम कड़वी किस्में भी हैं जिसमें अर्क वसंत, अर्क गौरव प्रमुख हैं। संकर किस्म में भारत और इंदिरा का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब ध्यान देने वाली बात यह है कि खेत में खरपतवार नहीं होने चाहिए। इसके लिए आप निकाई गुड़ाई करते रहें। कृषि रसायनों का भी प्रयोग आप कर सकती हैं। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, लेकिन यदि वर्षा नहीं हो और धूप तेज हो, नमी की कमी हो जाए, तो उस समय आवश्यकता अनुसार आप सिंचाई भी कर सकते हैं। इस तरह से मिर्च की रोपाई करें और इसकी खेती से लाभ उठावें।
0: खेत खलिहान में अभी आपने सुना वार्ता, मिर्च की खेती। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में दो नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर इस लड़ाई

0: करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाश
2: मीडिया वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन मनन।

गांधी जी इन तीनों में सबसे अधिक महत्व आध्यात्मिक पहलू को देते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि मनुष्य अपने मूल स्वरूप में एक आध्यात्मिक सत्ता है। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि विकास की प्रक्रिया भौतिक से आध्यात्मिक की ओर ही अग्रसर हुई है और इस प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिकता का ही साक्षात्कार करना है। मानव की स्वरूपगत आध्यात्मिकता का प्रमाण यह है कि उसमें चेतना, बुद्धि, विवेक, अंतरात्मा, संकल्प, संवेग, सौंदर्य बोध, नैतिक बोध आदि पाए जाते हैं। ये सभी आध्यात्मिकता की अभिव्यक्तियां हैं। आध्यात्मिकता का प्रतिफलन शुभत्व है। इसलिए गांधी जी मानते थे कि मनुष्य अपने आंतरिक स्वरूप में शुभ है। ऊपर से वह भले ही स्वार्थी और बुरा दिख पड़ता हो, परंतु अंदर से वह कभी बुरा नहीं होता। मनुष्य के आंतरिक शुभत्व का प्रमाण यह है कि वह प्रेम पूर्ण उपचारों के प्रति संवेदनशील होता है। गांधी जी कहते थे कि मनुष्य कितना भी कलंकित और दूषित क्यों ना हो गया हो, मानवीय और कुशल उपचारों से उसे सुधारा जा सकता है। अनेक बार ऐसा देखा गया है कि अगर हम किसी बुरे व्यक्ति को प्रेम से समझाते हैं तो वह बुराई का परित्याग कर अच्छाई के मार्ग पर आ जाता है। अंगुलीमाल की कहानी इसी सत्य को उद्घटित करती है। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था। वह मगध के एक जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता वह उसे रास्ते में लूट लेता और उसे मारकर उसकी एक अंगुली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। पूरे इलाके में उसका आतंक छा गया था। लोग दहशत में थे। जब महात्मा बुद्ध को इस बात का पता चला तो उन्होंने अंगुलीमाल से मिलने का निश्चय किया। एक दिन वे उस जंगल में शांत भाव से चल रहे थे। अंगुलीमाल की नजर उन पर पड़ी और उसने महात्मा बुद्ध को कहा, ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध रुक गए और अंगुलीमाल से कहा, लो मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? फिर उन्होंने अंगुलीमाल से कहा, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल तुरंत 10 पत्ते तोड़ लाया। महात्मा बुद्ध ने पुनः उससे कहा, अब इन पत्तों को फिर से उस पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि तुम यह काम नहीं कर सकते तो तुम सबसे ताकतवर कैसे हुए? फिर उन्होंने अंगुलीमाल को समझाया, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? जाओ तोड़ने का काम छोड़ो, जोड़ने का काम करो। महात्मा बुद्ध के वचनों का डाकू अंगुलीमाल पर जादुई असर हुआ। एक अनजानी शक्ति ने मानो उसके हृदय को बदल दिया। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया और आगे चलकर वह एक बहुत बड़ा साधु हो गया। यह कैसे संभव हुआ? यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि अंगुलीमाल के अंदर शुभत्व छिपा हुआ था, सुषुप्त पड़ा हुआ था, जो महात्मा बुद्ध के प्रेमपूर्ण उपचार के फलस्वरूप जागृत हो गया। गांधी जी को मानव के आंतरिक शुभत्व में अटूट विश्वास था। उनका अहिंसा सिद्धांत इसी विश्वास पर टिका हुआ था। अहिंसा का एक अर्थ तो निश्चित रूप से हिंसा नहीं करना है, परंतु इसका भावात्मक अर्थ प्रेम है। प्रेम में मनुष्य के अंदर सुषुप्त पड़े शुभत्व को जगाने की अद्भुत शक्ति है। गांधी जी जीवन पर्यंत इसी शक्ति का प्रयोग करते रहे और बड़ी से बड़ी सफलताएं हासिल की। आज इस प्रेम की शक्ति का, अहिंसा का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। आज हमारे समाज, हमारे देश और पूरी दुनिया के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उनका मुकाबला हम इसी प्रेम की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।

चिंतन मनन आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए देश वंदना।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अभी आपने सुना समूह स्वर में देश वंदना। अब आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अब आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर के स्वर में एक और भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में एक और भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा में भेंटवार्ता, मूत्र की थैली में संक्रमण। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर ब्रजकांत सिंह, भेंट करता है सचिन कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज हम बातें कर रहे हैं मूत्र की थैली में संक्रमण के बारे में, और हम जानेंगे इसके कारण, लक्षण और उपचार शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर ब्रजकांत सिंह से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मूत्र की थैली में संक्रमण के क्या कारण हो सकते हैं।
2: मूत्र की थैली में पेशाब बहुत देर तक स्टोर्ड होने के बाद उससे बाहर निकलता है। अगर किसी भी कारण से उसमें स्टेसिस हो रहा है, यानी कि रुकावट पैदा हो रहा है, जिसके चलते कि पेशाब ज्यादा देर रुक जा रहा है, तो उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसका इन्फेक्शन का कारण बेसिकली बच्चों, बूढ़ों और मिडिल एज वाले में अलग अलग होता है। स्त्रियों में इन्फेक्शन होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम असेंडिंग इन्फेक्शन होता है, लेकिन कभी किडनी से भी नीचे की ओर इन्फेक्शन आता है। अगर कोई भी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन है, या तो यूरेथ्रा में कोई जम है, या कुछ भी ब्लैडर में ही कोई डायवर्टिकुलम बना हुआ है, तो उस स्थिति में इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है।
1: जी, तो क्या डॉक्टर साहब इसमें साफ सफाई का भी महत्व है?
2: साफ सफाई का इसमें खास करके मिडिल एजेड लेडीज में तो बहुत ही ज्यादा महत्व है, इसलिए कि वो साफ सफाई के बदौलत उस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। इसलिए चूंकि यूरेथ्रा लेडीज का छोटा होता है, इसलिए अगर आप सफाई पर ध्यान रखते हैं तो इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी घट जाती है। और ओल्ड एज में जनरली पेशाब में जो मूत्र की थैली में इन्फेक्शन होता है, वो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, प्रोस्टेट बढ़ता है, प्रोस्टेट बढ़ने के चलते पेशाब में रुकावट आती है और थैली में पेशाब का जमाव होता है, और जमाव के चलते उसमें से इन्फेक्शन होने का डर बढ़ जाता है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, जब संक्रमण हो जाए तो कौन कौन से लक्षण सामने नजर आते हैं?
2: किसी भी आदमी को मूत्राशय में संक्रमण होने के बाद पेट के नीचे भाग में दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, पेशाब में जलन होता है, पेशाब स्मोकी कलर का, या उसमें कभी काल खून भी आता है। और अगर मूत्राशय में इन्फेक्शन है तो पेशाब के बाद में ही जनरली ब्लड आता है, और उस स्थिति में चूंकि इन्फेक्शन है कोई भी, तो फीवर भी आ सकता है। तो मूत्राशय में जलन होना, बार बार पेशाब होना, पेशाब में रुकावट आना, या पेशाब में खून आना, इस प्रकार का कोई भी दिक्कत अगर किसी को आता है तो उनको चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। और खास करके हम लोग मिडिल एजेड में तो कम ही उसको सीवियर मानते हैं, लेकिन अगर किसी एडल्ट में, बच्चे में अगर इन्फेक्शन होता है, तो उसको तुरंत चिकित्सक सलाह इसलिए लेनी चाहिए कि एडल्ट आदमी का यूरेथ्रा तो बड़ा होता है, उसमें इन्फेक्शन बहुत कम पॉसिबिलिटी है, इसलिए डिस्पोजिंग फैक्टर को निकालना कि आखिर क्यों उसमें इन्फेक्शन हुआ, इस चीज

0: को जानना और उसका जानने के बाद उस लक्षण के अनुसार से उसका पेशाब का कल्चर करवा करके, उसका रूटीन यूरिन करवा करके, अल्ट्रासाउंड करवा करके डॉक्टर इस बात पर पहुंचते हैं कि आखिर पेशाब का जो इन्फेक्शन हुआ उसका कारण क्या है। और कारण जानने के बाद उस अनुसार से प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर को भी कम किया जाता है, प्लस उस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब अब इसके उपचार की हम लोग बातें करें तो इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है?
0: उपचार जनरली हम लोग पेशाब का कल्चर करवाते हैं। कल्चर करवाने के बाद जिस प्रकार का बैक्टीरिया उसमें आता है उस अनुसार से और जिस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव होता है उस एंटीबायोटिक को दे करके हम लोग इस बात पर उसको ट्रीटमेंट में लाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। और प्रायतर गर्मी के दिनों में लोगों को पेशाब का इन्फेक्शन ज्यादा होता है, इसलिए कि शरीर में पसीना जितना आता है उस अमाउंट में लोग पानी कम पीते हैं, पेशाब कंसंट्रेटेड होता है जिसके चलते इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है।
1: जी, तो क्या ज्यादा मात्रा में पानी पीने से भी संक्रमण का खतरा घट सकता है?
0: निश्चित, पानी पीना ही सबसे बड़ा उपचार का एक पार्ट है, सबसे हाइड्रेशन थेरेपी। क्योंकि कोई भी चीज जैसे आप नहर में देखते होइएगा कि पानी अगर गंदला आ रहा है तो उसमें छोटा छोटा टुकड़ा बनते बनते वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है।
2: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आपने सुना भेंटवार्ता, मूत्र की थैली में संक्रमण। भेंटवार्ता का थे डॉक्टर ब्रजकांत सिंह, भेंट करता थे सचिन कुमार। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी।

देवर्षि नारद का माया जनित मोह टूट चुका है। प्रभु को अनुरूप पाकर उनके चरणों में बैठ नारद जी अपनी शंका का समाधान चाहते हैं। प्रभु ने अपनी माया से प्रेरित करके जब उन्हें मोहित किया था तो वे विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए आकुल हो गए थे। देवर्षि की जिज्ञासा यह जानने की है कि तब किस कारण प्रभु ने उन्हें विवाह नहीं करने दिया था। हर्षित होकर श्री रघुनाथ बोले, जो समस्त आशा विश्वास को छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं उनकी वैसे ही रक्षा करता हूँ जैसे माता अपने शिशु की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर सांप अथवा आग को पकड़ लेना चाहता है तो माता उसे वैसा नहीं करने देती। सयाना हो जाने पर माता का स्नेह तो पूर्वत बना रहता है, किंतु तब पुत्र अपनी रक्षा आप करने लगता है। इसी प्रकार ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है, किंतु अपने बल तथा क्षमता का मान अभिमान न करने वाला तुम्हारे जैसा व्यक्ति मेरे शिशु पुत्र के समान है, जिसे केवल मेरे संरक्षण की आवश्यकता है। मोह रूपी वन के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है, जो जप तप संयम नियम आदि को ग्रीष्म ऋतु की भांति सोख लेती है।

रामचरितमानस गान संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, इसमें सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे से लेकर 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे रसरंग, मौसम सूचना, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज के दिन का इतिहास, कानून की बातें एवं फिल्म संगीत। 9:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे 9:30 पर, कलाकार होंगे स्वामी प्रणवानंद। फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से आप सुनेंगे 10 बजे से। 10:30 पर आप सुनेंगे लोकगीत, कलाकार होंगे चामालाल मंडल। 11 बजे से आप सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम फोन इन आपकी पसंद। दोपहर 12 बजे से आप सुनेंगे शहरी महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोग। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी श्री पार्वती के। शास्त्र संगीत

राष्ट्र सेवा के कार्यक्रमों का प्रसारण होगा हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 5 बजे से आप सुनेंगे युवा वर्गों को संबोधित कार्यक्रम युवा वाणी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 6 बजे से। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। लोकगीत आप सुनेंगे 7:10 पर। कलाकार होंगे नवल किशोर पंडित एवं साथी। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी आप सुनेंगे 7:52 पर। कलाकार होंगी पायल चक्रवर्ती। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान वाणी हमारी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

श्रोताओं, एक बार फिर से आपको बता दें कि रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान भारती हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अभी आपने सुना हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6:55 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: एवं अभ्यभाषता।
1: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, नार्को टेररिज्म इको सिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: उत्तर प्रदेश आरक्षिबलिना श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दानराशि वंचना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टो जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमंत्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानां उपहाराणां दानानां च वञ्चनासम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वीयोत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रोत्तराखंडेषु, लक्षद्वीपस्य कतिपय क्षेत्रेषु च तडित्पातस्य संभावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा 16 संजाता अस्ति। तत्र व्रणितानां उपचारः SSKM चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
2: नमस्कार,
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

गुड मॉर्निंग विक्रमशिला दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम में जिसे आप रोजाना सुनते हैं सुबह के 7 बजे से लेकर 7:55 तक। और श्रोताओं, आज मैं हूं आप सभी के साथ आपका रेडियो दोस्त केशव, और आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह प्रोग्राम जानकारियों से भरा है, जहाँ पर हम जानते हैं बहुत सी जानकारियों को, जैसे कि मौसम सूचना, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज के दिन का इतिहास एवं अन्य जानकारियां। और श्रोताओं, आज के दिन हम आपको जो है, आप सभी को पता है कि हमारा ये दैनिक कार्यक्रम जो है 2 भागों में हम आपको सुनवाते हैं, यानी कि कार्यक्रम के पहले भाग में हम आपको सुनवाएंगे रसरंग, और आज हमारे साथ रसरंग में गायक कलाकार हैं अभय कुमार सुमन। साथ ही साथ आज का दिन है शनिवार का, और 7:20 पर हम आपको सुनवाएंगे कानून की बातें। इसमें आप सुनेंगे वार्ता माप तौल संबंधित कानून, और वार्ताकार होंगे अजय नारायण राय। साथ ही साथ कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में पहुंचते ही हम जानेंगे अन्य शेष जानकारियों को और आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, चलिए बिना किसी देरी के अपने कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत, और सुनते हैं गायक कलाकार अभय कुमार सुमन के द्वारा गाया यह भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, और मैं हूं आप सभी के साथ आपका रेडियो दोस्त केशव। और अब आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं गायक कलाकार अभय कुमार सुमन के द्वारा गाया यह भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको मौसम सूचना से अवगत करवाते हैं, यानी कि मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज 27 जून के दौरान जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत तथा दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दक्षिण पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। तो श्रोताओं, ये थी मौसम सूचना के बारे में जानकारी। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम सुनते हैं गायक कलाकार अभय कुमार सुमन के द्वारा गाया यह गीत।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कुछ जानकारियों को, तत्पश्चात हम आपको सुनवाएंगे अभय कुमार सुमन के स्वर में एक भजन।
1: इट्स रेनिंग ऑफर्स ऑन द न्यू एज बलेनो दिस सीजन। Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
2: Kam samay mein zyada munafa, bas ek click mein, kamaal hai.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे रसरंग में गायक कलाकार अभय कुमार सुमन को। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कानून की बातें। इसमें सुनिए वार्ता माप तौल संबंधित कानून। वार्ताकार हैं अजय नारायण राय।
1: माप तौल संबंधित कानून माप तौल अधिनियम 1976 में बना और यह समूचे भारतवर्ष में 8 अप्रैल 1976 से लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत तौल के लिए किलोग्राम, लंबाई माप के लिए मीटर एवं द्रव माप के लिए लीटर का प्रयोग सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा समय माप के लिए सेकंड, तापमान माप के लिए सेल्सियस का प्रयोग किया जाने लगा। पूर्व में माप के लिए स्थानीय लोग विभिन्न प्रकार के तौल का प्रचलन करते थे, जिसे लोकोक्ति में सेर कहा जाता था। पहले कहीं 101 का वजन हमारे जिले के कहलगांव में 105 के वजन के नाप से बटखरा विख्यात है। एक सेर में 16 कनमा होता था और 4 कनमा का एक पौवा प्रचलित था। इसी तरीके से द्रव्य के माप के लिए पूर्व में सेर, पाथा आदि का प्रयोग किया जाता था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा साल 1976 में सारे पूर्व प्रथा को समाप्त कर एक स्टैंडर्ड अधिनियम वर्ष 1976 से प्रचलित हुआ। माप तौल अधिनियम के धारा 36 में माप तौल के मॉडल का अप्रूवल किया गया। इसके लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार ने ऑफिसर की नियुक्ति की है, जो माप तौल की जांच करवाते हैं और माप तौल में गलत पाए जाने पर सरकार के अधीनस्थ जांच करने के कार्यालय में इसे भेजा जाता है, और जिसके लिए निश्चित राशि उस व्यक्ति से जो गलत माप तौल का उपकरण प्रयोग करता है उसे राशि वसूल की जाती है। माप तौल के लिए ऐसे निर्माणकर्ताओं को जो वाट या मीटर वितरित करते हैं उन्हें राज्य सरकार धारा 37 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करती है। यदि राज्य सरकार द्वारा लिए गए लाइसेंस के अंतर्गत माप तौल में कुछ और अनियमितताएँ बरती जाती है तो केंद्रीय सरकार राज्य सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस को रद्द कर सकती है। माप तौल के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न अधिकारी को नियुक्त करते हैं, जो इस अधिनियम की धारा 40 में परिभाषित किया गया है। कंट्रोलर, जिसका अर्थ है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे व्यक्ति जो राज्य के कानून के अंतर्गत नियुक्त किए गए हों। इंस्पेक्टर का तात्पर्य है निरीक्षक, ऐसे व्यक्ति जो राज्य सरकार के द्वारा विदित कानून के अंतर्गत निरीक्षण के कार्य करते हैं। अपराध और उसका निराकरण, धारा 50 में यह परिभाषित किया गया है कि यदि कोई गलत वजन और माप प्रयुक्त करता है तो उसके लिए उसे जुर्माना भी धारा के अंतर्गत किया जाएगा, जो कि कम से कम 6 महीना एवं 1,000 रुपया जुर्माना किया जा सकता है, और अगर दोषी व्यक्ति पुनः पकड़ाते हैं तो इस सजा की अवधि 2 वर्ष तक कारावास में बढ़ाई जा सकती है और राशि की भी उत्तरोत्तर वृद्धि की जा सकती है। राज्य सरकार ने विभिन्न माप तौल के लोगों को भी दंडित किया है, जो कि PLJR 1977 में उल्लिखित है, जिसमें व्यक्ति वजन के लिए पत्थर का प्रयोग कर रहे थे जो कानून के अनुसार दोषी पाए गए। इसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति बटखरा में कोई अनुचित कार्य करता है तो वह भी माप तौल अधिनियम के धारा 18 का उल्लंघन माना जाता है और उसे 2 साल का कारावास एवं जुर्माना 5,000 रुपया या दोनों के भागीदार हो सकते हैं। धारा 52 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति माप तौल करने का सामान बनाता है केंद्रीय सरकार से अनुमति लेकर और उसका निर्यात करता है, जो कि स्टैंडर्ड उचित धारा के अंतर्गत निहित है, तो ऐसे माप तौल के स्टैंडर्ड नाप के उल्लंघन में उसे 1 साल का कारावास और 2,000 रुपया जुर्माना या दोनों की जा सकती है, और यदि ये दूसरी बार गलत करते पकड़े जाते हैं तो कारावधि 3 साल और जुर्माना सीधा सीधी तदनुसार बढ़ाई जाती है। इसमें एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति किसी दुकानदार से 2 किलो चीनी खरीदा, उसे 2 किलो चीनी कीमत चुकता करना पड़ा, जबकि खरीदार भी एक व्यापारी था, उसे उस दुकानदार के वजन पर शंका हुई और घर आकर उसे अपने बाट पर तौला तो 2 किलो चीनी 1 किलो 800 ग्राम हो गया। उसने इसकी शिकायत उपभोक्ता न्यायालय में केस कर दिया। इस नोटिस द्वारा दी गई केस करने के दौरान उस दुकानदार को 1,000 रुपया न्यायालय द्वारा जुर्माना किया गया। उस दुकानदार ने उस जुर्माना को चुकता किया तथा वहां पर के आसपास के दुकानदार को हिदायत किया कि भाई हमने खरीद 200 ग्राम चीनी 2 किलो में कम दिया था, उसके बदले हमें 1,000 रुपया जुर्माना देना पड़ा।

0: इसलिए हम लोगों को सामान कम देने वालों के लिए एक ठोस कदम उठाकर आगे बढ़ना होगा, जिससे नापतौल घटतौली में सुधार हो सके। प्रमाणित नापतौल संशोधित बिल में 2005 में लागू किया गया, जो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए किया गया। प्रमाणित मापतौल अधिनियम राज्यसभा में 10 मार्च 2005 को पटल पर प्रस्तुत किया गया। यह नियम खाद्य उपभोक्ता एवं जनवितरण प्रणाली हेतु देवेंद्र प्रसाद यादव द्वारा 23 दिसंबर 2005 को प्रस्तुत किया गया। प्रमाणित मापतौल अधिनियम 1985 जो वर्ष 1976 के अधिनियम का संबंधित स्वरूप लाया गया। इसमें यह प्रावधान की गई कि कंट्रोलर की नियुक्ति इंस्पेक्टर एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कारावास एवं प्रमाणीकरण के सत्यापन मापतौल का निबंधन निर्माण बिक्री एवं मरम्मत करने पर व्यवधान किया गया और नाप के सत्यापन के लिए उपाय किया गया। नापतौल के प्रमाणीकरण के लिए संबोधित बिल 2005 में जो लाया गया आगे जरूरतों की पूर्ति के लिए लागू किया गया। नियत योग्यता एडिशनल कलेक्टर की नियुक्ति एवं निरीक्षक की नियुक्ति हेतु। नंबर 2 निबंधीकरण के लिए मापतौल के आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयीकरण हेतु। नंबर 3 जुर्माना के लिए जो विभिन्न धाराओं के लिए इस नियम के अंतर्गत आते हैं उनका पूर्व निरीक्षण। केंद्रीय सरकार को यह शक्ति निहित किया गया कि वह इस कानून के अंतर्गत लाइसेंस निश्चित शुल्क एवं इसके कानून का निर्माण करे। नंबर 5 केंद्रीय सरकार अतिरिक्त संयुक्त उप एवं सहायक कंट्रोलर एवं निरीक्षक की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श पर योग्यता के आधार पर व्यक्ति चुने। यह कि निबद्धीकरण के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं मापतौल के उपयोग के लिए उसको भी परिभाषित किया गया। नंबर 7 लाइसेंस जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्माणकर्ता एवं मरम्मत मापतौल के लिए दिए जाते हैं वह संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू होता है। नंबर 8 विशेष सत्यापन अभिकर्ता मापतौल प्रमाणीकरण कानून 176 के अधीन आते हैं, उनके सत्यापन के लिए इस कानून में प्रावधान लाया गया। अपराध एवं सजाएं। नंबर 1 मापतौल के सील में यदि धोखाधड़ी की जाती है तो उसके लिए जुर्माना अधिकतम ₹10,000 प्रथम अपराध के लिए, द्वितीय अपराध के लिए जुर्माना ₹10,000 एवं 6 महीना कारावास। नंबर 2 यदि कोई निर्माणकर्ता जो मापतौल के औजार का पैकिंग एवं बिक्री करता है और कम वजन पाया जाए तो ऐसे निर्माणकर्ता को ₹20,000 जुर्माना का प्रावधान किया गया है एवं कारावास 2 साल प्रथम अपराध के लिए एवं द्वितीय अपराध के लिए 5 साल का कारावास किया गया। मापतौल अधिनियम बहुत विस्तृत है लेकिन प्रचलन में व्यक्ति अभी भी विभिन्न प्रकार के कम वाट एवं नाप का प्रयोग कर लोगों के आँख में धूल झोंकते हैं, जिसके लिए सरकार ने स्टैंडर्ड मैट्रिक सिस्टम का तराजू प्रचलन में लाया है। लेकिन यह तराजू भी समय समय पर सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा जांच किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, जिससे लोगों को कम माप परिमाण में सामान नहीं मिल सके।
1: श्रोताओं आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना कानून की बातें। इसमें आपने सुना वार्ता मापतौल संबंधित कानून। वार्ताकार थे अजय नारायण राय। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है और श्रोताओं वाई कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको आज के दिन के इतिहास के बारे में बताते हैं, यानी कि आज की तारीख है 27 जून और 27 जून को हमारे इतिहास में क्या कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हैं इसके बारे में जानते हैं। श्रोताओं आपको बता दें कि साल 1838 में हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता महान कवि एवं उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन हुआ था। साल 1897 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की आधिकारिक घोषणा की थी। साल 1957 ईस्वी में ब्रिटेन की मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि धूम्रपान के कारण फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। साल 1967 ईस्वी में आज के दिन दुनिया की पहली एटीएम मशीन को लंदन के बार्कलेज बैंक में स्थापित किया गया था। साल 2002 में आज के दिन G8 देशों ने रूस के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसके तहत परमाणु हथियारों को नष्ट किया जाना था। और श्रोताओं, आज के दिन आपको बता दें कि साल 1922 ईस्वी में तमिल के प्रसिद्ध साहित्यकार अकिलन का जन्म हुआ था। साल 1939 में भारतीय संगीतकार आरडी बर्मन यानी कि राहुल देव बर्मन का जन्म आज के दिन हुआ था। और साल 1964 में भारत की स्टार अधिवक्ता पीटी उषा का जन्म आज के दिन हुआ था। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के दिन में ऐतिहासिक घटनाएं जिनके बारे में हमने जाना। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत, क्योंकि कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। और अब जो गीत हम आपको सुनवाएंगे उसे हमने लिया है फिल्म भूल भुलैया से। इस गीत को आवाज़ दिया है KK ने।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जानते हैं रेल सूचना के बारे में। गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, जिसका सही समय है 7:50 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस, जो कि रोजाना चलती है और इस गाड़ी का सही समय है 7:55 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस, जिसका सही समय है आगमन का 8:15 और यह गाड़ी अपने समय से 25 की देरी से चल रही है। गाड़ी संख्या 15658 ब्रह्मपुत्र मेल, जिसका सही समय है आगमन का 8:05 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 5:15 की देरी से चल रही है। गाड़ी संख्या 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस, जिसका सही समय है सुबह आगमन का 9 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 20 की देरी से चल रही है। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी, जिसका सही समय है आगमन का 9:35 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 30 की देरी से चल रही है। गाड़ी संख्या 13229 गोड्डा राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, जो कि एक साप्ताहिक गाड़ी है और यह शनिवार के दिन चलती है और इस गाड़ी का सही समय है आगमन का 10:15 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर से रवाना होगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस, जो कि रोजाना चलती है और इस गाड़ी का सही समय है 11:55 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। तो श्रोताओं, ये थी रेल सूचना के बारे में जानकारी। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवाते हैं ये फिल्मी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म हेट स्टोरी 3 से। इस गीत को आवाज़ दिया है अरमान मलिक ने। लेकिन इस गीत से पहले आइए कुछ जानकारियों को सुनते हैं।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इट्स रेनिंग ऑफर्स ऑन द न्यू एज बलेनो दिस सीजन। Upgrade to the bold and techie, new age Baleno, and get amazing benefits, easy finance options, and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno.

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और वही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जानते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों के बारे में। पहले चरण में 27,000 शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। राज्य के 78,000 स्कूलों में 5.8 लाख प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 1 जुलाई से शिक्षक नए स्कूल में पढ़ाना शुरू करेंगे, इसलिए ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया तत्काल पूरी होगी। ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को रिक्त सीट मिलने पर तुरंत मंजूरी मिलेगी, उसी समय उनका पोस्टिंग लेटर भी अपडेट हो जाएगा। वहीं अगली सुर्खी के बारे में बात करें तो अगली सुर्खी है कि 15 जुलाई से पेपरलेस रजिस्ट्री, अब मोबाइल पर मिलेगी डीड। बिहार में 15 जुलाई से पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू होगी। इसके बाद निबंधन विभाग खरीदार और विक्रेता से कोई ऑफलाइन दस्तावेज नहीं लेगा। आवेदन के समय सभी जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। रजिस्ट्री पूरी होने के बाद खरीदार और विक्रेता के मोबाइल पर डीड की पीडीएफ का लिंक भेजा जाएगा, इसे घर बैठे डाउनलोड किया जा सकेगा। वहीं अगली सुर्खी के बारे में बात करें तो BAU सबौर में राष्ट्रीय आम समागम का आज राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में शनिवार व रविवार को 2 दिवसीय राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला आयोजित होगी। इसका उद्घाटन शनिवार को दोपहर 2 बजे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन करेंगे। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा व ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार भी शामिल होंगे। अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर DR सिंह करेंगे। आम प्रदर्शनी के लिए परिसर में 1,000 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जहां किसानों द्वारा लाई गई विभिन्न किस्मों के आम प्रदर्शित किए जाएंगे। वहीं अगली सुर्खी के बारे में बात करें तो अगली सुर्खी है कि नीट UG बैंक डिटेल्स सुधार के लिए 30 जून तक का मौका। NTA ने नीट UG 2026 के अभ्यर्थियों को फीस रिफंड से जुड़ी बैंक डिटेल सुधार का एक और मौका दिया है। यह सुविधा अधूरे वेरिफिकेशन वाले उम्मीदवारों के लिए है। बैंक अकाउंट सत्यापन और सुधार विंडो 30 जून तक खुली रहेगी। इस बीच रीटेस्ट की प्रोविजनल आंसर की भी जारी हो गई है। अभ्यर्थी 28 जून तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और श्रोताओं, आपको बता दें एक और सुर्खी के बारे में कि T20 भारत को पहली बार आयरलैंड ने हराया। आयरलैंड ने पहले T20 में वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम को 34 रनों से हराकर इतिहास रच दिया। यह आयरिश टीम को भारत के खिलाफ 12 मैच यानी 9 T20 और 3 वनडे में पहली जीत रही। इससे पहले दोनों टीम के बीच हुए सभी 11 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते थे। तो श्रोताओं, ये थी समाचार पत्रों की सुर्खियां। और अब आइए आपको सुनवाते हैं ये फिल्मी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लुटेरा से। इस गीत को आवाज दिया है मोनाली ठाकुर ने।

0: अभी आपने सुना मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
4: क्रेश,
5: क्रेश
3: और बाल्टी बॉय।
6: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
2: सुनो ना।
1: हाँ,
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूँ।
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
2: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
3: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
5: तिलका मांझी तो बहुत।
3: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
7: बख्शी जगबंधु तो
3: करो।
5: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
6: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज एवं उर्दू समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
8: पटना केंद्र है, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से होगा।
9: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस

0: के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त

0: करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला के हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
2: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, युवराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली

0: प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीरअर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्ता ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi Service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, 2-times champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आज इस मुल्क के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज करेंगे। भारत ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री तैयार की है, जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। भारत ने जलजले से मुतासिरा वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। उसने राहत का सामान और तिब्बी इमदाद रवाना की है। इस कुदरती आफत में मरने वालों की तादाद 920 तक जा पहुंची है। FIH मर्दों के प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त दे दी। और फुटबॉल में 2 बार का चैंपियन यूरोगोए स्पेन के हाथों 1-0 से हार जाने के बाद फीफा आलमी कप से बाहर हो गया है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में उच्च शिक्षा में बेहतरी और सुधार के लिए नया विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत प्रदेश में अब आपदा प्रबंधन कार्य में भी श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। बिहार पुलिस की कल आयोजित होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे की ओर से आज और कल 13 परीक्षा विशेष ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया। अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल और पश्चिम चंपारण समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में उच्च शिक्षा में बेहतरी और सुधार के लिए नया विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया जाएगा। लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में आयोजित उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इस पर सहमति बनी। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह अधिनियम दूसरे राज्यों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की श्रेष्ठ प्रणालियों पर आधारित होगा। इसके लिए 15 राज्यों के विश्वविद्यालयों के अधिनियमों का अध्ययन कर उनकी उत्कृष्ट व्यवस्थाओं को शामिल करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए कुलाधिपति पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप और मुख्यमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना लागू करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत अब आपदा प्रबंधन कार्य में भी श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बाढ़, कटाव, जल जमाव, सूखा, अन्य प्राकृतिक आपदा से बचाव और राहत से संबंधित निर्माण कार्यों में इस योजना के श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा जोखिम कम होने के साथ ही स्थानीय श्रमिकों को गाँव में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में बिहार समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य मिलकर गांवों के विकास की साझा रणनीति तैयार करेंगे। मधुबनी और दरभंगा जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से जल्द ही क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP शुरू किया जाएगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने मिथिला मल्टी कमोडिटी उद्यान क्लस्टर के संबंध में असेसमेंट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। अब विभाग CDP 2021 के तहत चयन कर कार्य शुरू करेगा। श्री सिन्हा ने बताया कि यह देश का 5वां क्लस्टर होगा। इस परियोजना से दरभंगा और मधुबनी के लगभग 20,000 किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं केला, आम, लीची और मखाना आधारित मूल्य श्रृंखला को सशक्त बनाने के साथ ही बागवानी विकास को नई गति मिलेगी। प्रदेश में पीने के पानी के लिए अब सतही जल को प्राथमिकता दी जाएगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने भूमि जल पर निर्भरता और उसकी निकासी कम करने के उद्देश्य से यह फैसला किया है। इस संबंध में केंद्र सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजी गई है। रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के पहले चरण में दक्षिण पूर्व बिहार के 8 जिलों भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और कैमूर को शामिल किया गया है। इन जिलों में भूजल स्तर अपेक्षाकृत कम है। इस परियोजना पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से कल प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 993 पदों के लिए आयोजित यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। पूर्व मध्य रेलवे परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज और कल 13 परीक्षा विशेष ट्रेनें चलाएगा। दानापुर मंडल की ओर से आज पटना के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से सहरसा, भभुआ, बेतिया, पूर्णिया, अररिया और सिवान के लिए कुल 6 परीक्षा विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। वहीं कल 7 परीक्षा विशेष ट्रेन संचालित होंगी।
प्रदेश के 211 नव स्थापित राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जारी विभागीय पत्र को अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया है। विभाग के निदेशक एनके अग्रवाल ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है। गौरतलब है कि इससे पहले इन राजकीय महाविद्यालयों में प्रतिनियुक्ति के लिए यूजीसी के मापदंडों के अनुरूप नेट, जेआरएफ और पीएचडी की अर्हता प्राप्त सरकारी शिक्षकों की सूची प्राप्त करने के आदेश दिए गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह के मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का फैसला किया है। विभाग ने एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में विभाग को आवेदन न देकर प्रेस वार्ता करना बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानों के प्रतिकूल है। श्री सिंह को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया में मनोरोग विभाग में प्राध्यापक के पद पर स्थानांतरित किया गया है। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा को दुरुस्त बनाए रखने के लिए सभी जिलाधिकारियों को अगले 3 महीने तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अपने अपने क्षेत्र में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। गृह विभाग की विशेष शाखा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस दौरान रोहतास, कैमूर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना, नालंदा और शेखपुरा समेत आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात की आशंका है। विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं इस अवधि में 8 जिलों अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश हो सकती है। वहीं

0: हिस्सों में भी मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है।
1: राज्य के किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की

0: घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर बारिश होने से अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। भभुआ और डेहरी को छोड़कर ज्यादातर स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। इस अवधि में 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे तक ऑनलाइन सेवाएं नहीं मिल सकेंगी। ऊर्जा विभाग के अनुसार आज रात 8 बजे से कल रात 8 बजे तक विद्युत संबंधित

0: पांच से कम सदस्य होने पर अंत्योदय अन्न योजना के लिए घट सकता है अनाज आवंटन। प्रभात खबर ने मौसम की खबर को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, 36 जिलों में सामान्य से भी कम बारिश, 2025 की तुलना में बदला मॉनसून का रुख। दैनिक भास्कर लिखता है, वेनेजुएला में भूकंप से 589 मौतें, 50,000 अब भी लापता। भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, बचाव के लिए आज का दिन अहम। राष्ट्रीय सागर ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर लिखा है, चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा। आज अखबार के शब्द हैं, बिहार के जिलों में बड़ा फेरबदल, 30 उपाधीक्षकों का हुआ तबादला। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में उच्च शिक्षा में बेहतरी और सुधार के लिए नया विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत प्रदेश में अब आपदा प्रबंधन कार्य में भी श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। बिहार पुलिस की कल आयोजित होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे की ओर से आज और कल 13 परीक्षा विशेष ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया। अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल और पश्चिम चंपारण समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:06 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम का पहला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। इस गीत को आवाज दिया है।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नहीं पुराने। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म राज 3 से। इस गीत को आवाज़ दिया है केके ने, गीतकार हैं संजय मासूम और संगीत है जीत कांगली का। लेकिन इस गीत से पहले कुछ जानकारियों को सुनते हैं।
1: Future feels effortless with the Grand Vitara because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: सुनो ना।
2: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: The future

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नहीं पुराने। कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म रावण से। इस गीत को आवाज दिया है रेखा भारद्वाज एवं जावेद अली ने। गीतकार हैं बुले शाह एवं अनुराधा श्रीराम और संगीत है ए आर रहमान का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म गुरु से। इस गीत को आवाज दिया है श्रेया घोषाल एवं उदय मजुमदार ने। गीतकार हैं गुलजार और संगीत है ए आर रहमान का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं स्वामी प्रणवानंद। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं स्वामी प्रणवानंद। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं सूरदास की रचना।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं स्वामी प्रणवानंद। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं कबीर दास की रचना।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं गायक कलाकार स्वामी प्रणवानंद को। कार्यक्रम है सुगम संगीत। अब आइए आपको सुनवाते हैं महर्षि मही की रचना।

0: Mal.
1: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं स्वामी प्रणवानंद। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं तुलसीदास की रचना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार थे स्वामी प्रणवानंद। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का पहला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म वारिस से। इस गीत को आवाज दिया है मनमोहन सिंह एवं लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं वर्मा मलिक और संगीत है उत्तम सिंह का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म जुदाई से। इस गीत को आवाज दिया है मोहम्मद रफी एवं आशा भोसले ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। अब जो गीत हमने लिया है वो है फिल्म अपनापन से। इस गीत को आवाज दिया है लता मंगेशकर एवं मोहम्मद रफी ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म प्यासा सावन से। इस गीत को आवाज दिया है लता मंगेशकर एवं सुरेश वाडकर ने। गीतकार हैं संतोष आनंद और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोकगीत, कलाकार हैं चामालाल मंडल।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं लोकगीत। कलाकार हैं चामालाल मंडल। अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कुछ जानकारियों को।
1: द फ्यूचर फील्स एफर्टलेस विद द ग्रैंड विटारा, बिकॉज सम जर्नीज डिजर्व मोर देन जस्ट मूवमेंट, दे डिजर्व कंफर्ट, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just rupees 8,999 per month. Yes, rupees 8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं लोकगीत। कलाकार हैं चामालाल मंडल। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये शिव भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं लोकगीत। कलाकार हैं चमालाल मंडल। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये झूमर।

कंसन गजधर भरत कियारे, कंसन भरत गज भरत कियारे गबला।

0: बे खदाबा पानी पटाए के छिटाए बे खदाबा बोरिंग से पनिया पटाई रे खेत बा मैं किसनिया निहुरी निहुरी काटे दान रे।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, कलाकार थे चमालाल मंडल। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, 11 बजने ही वाले हैं, अगला कार्यक्रम आप कुछ ही देर में सुनेंगे, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए श्रोताओं के फोन कॉल पर आधारित कार्यक्रम फोन इन आपकी पसंद। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सौरभ कुमार।

0: फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने मन पसंदीदा गानों की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में करवा सकते हैं। साथ ही आप अपनी फरमाइश प्रत्येक शनिवार को 11 बजे से 12 बजे के बीच में सुन सकते हैं। तो लेते हैं हम अपने पहले कॉलर को। हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड मंडा विलेज से लक्ष्मण चाय वाले बोल रहे। सर कैसे हो आप?
0: हम अच्छे लक्ष्मण जी, और बताइए क्या चल रहा है अभी?
1: बस बरसात हो रही है, बरसात होने दे।
0: क्या बात है, आपके यहाँ बरसात चालू हो गई, काफी अच्छा लगा सुनकर। और जहाँ जहाँ बारिश नहीं हो रही वहाँ पे अभी बहुत परेशानी हो रही है। और आज मुहर्रम भी देश में कई जगहों पे मनाया जा रहा है जी। तो सभी लोगों से अपील है कि प्रेम भाईचारे से सभी लोग अपना मुहर्रम त्योहार मनाएं। और अभी इतनी गर्मी है तो इस गर्मी में अपना ख्याल रखें। कई जगहों पे आपको लू लहर चल रहा है लगातार, अल नीनो इफेक्ट जो होता है उसमें थोड़ा बदलाव होने के कारण से अभी थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कई जगहों पे। बारिश नहीं हो रही है तो खेती के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, कई जगह अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज गाना बरसात हो रही है, बरसात होने दे, यही सुनना है।
0: तो और बताइए कि ये गाना आप खुद सुनेंगे अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: दोस्त रहेंगे, गजरा लोधी, मांगीलाल चंद्र, वसंती लाल, विपिन कटारे, ऋषिकेश तिवारी, अमित तिवारी है, सचिन है, मुकेश भाई साहब है, कलू है, ये सब दोस्त हैं, सुनना चाहेंगे
0: जी। तो ठीक है, आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे और इसी तरह हमें कॉल करते रहिएगा।
1: ठीक है सर, नमस्कार।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: अरे सर जी नमस्कार, जबलपुर एमपी से अशोक सिंह।
0: अशोक जी कैसे हैं आप?
1: ठीक हो सर?
0: हम आपको ये कहना चाह रहे थे कि अभी जो आने वाला हमारा 27 जून है, ये
1: जी
0: हेलन केलर डे के नाम से भी मनाया जाता है। और
1: जी
0: हेलन केलर के बारे में ये कहा जाता है कि मतलब ये एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जिनको डिसेबिलिटीज़ होती है, उसके
1: जी
0: बावजूद भी वो आपको आगे बढ़ते हैं। और ये दिन है सामाजिक न्याय और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने का
1: जी
0: जी, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया था और बहुत सारे लोगों को ये प्रेरणा देने का ये भी एक दिन है। और आपको वर्ल्ड एस्ट्रोराइड डे हम लोग 30 जून को मनाते हैं,
1: जी
0: और ये आपको 1908 से मनाया जा रहा है
1: अच्छा,
0: जी। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: तो बहुत जानकारी देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म है चाचा भतीजा, तेरा शीशे का सामान मैंने तोड़ा मेरी जान, मोहम्मद रफी लता जी की आवाज।
0: जरूर जरूर, तो ये गाना खुद सुनेंगे, अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे।
1: आप और सभी

0: सुनने वाले श्रोता बंधु हैं सर।
1: जी, तो हम
0: बहुत
1: सभी
0: बहुत
1: को आपकी पसंद पे गाना जरूर सुनाएंगे, और इस तरफ हमें कॉल करते रहिएगा।
0: बहुत धन्यवाद सर।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: परम आदरणीय शरद कुमार साहब, ज्यादा सा प्रेम सर, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: आनवर, मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मास्टर से वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर, आप कैसे हैं?
0: जी हम भी ठीक है शारदा प्रसाद जी, आप बताइए, आप लोग का क्या चल रहा है अभी, वहाँ मौसम कैसा चल रहा है?
1: मौसम मानवर इस वक्त बहुत ही चमचमाती हुई प्रचंड धूप हो रही है, भीषण गर्मी का शिकार है, और यहाँ तक कि लू की चपेट में कुछ क्षेत्र हैं। और एक दो दिन पहले हल्की फुल्की बारिश हुई थी, लेकिन इतनी तेज धूप हो रही है कि बस उमस भरी गर्मी का सामना हम कर रहे हैं।
0: जी इस बार बहुत ही मौसम का जो ये मिजाज बदला है, अमूमन इस समय हर प्रत्येक वर्ष मानसून का आगमन पूरी तरह से हो जाता है, लेकिन इस बार एल नीनो इफेक्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ बारिश कहीं कहीं तो कभी कभी हो जा रही है, लेकिन जो कंटिन्यू बारिश हो रही थी मानसून में लगातार, वो नहीं हो पा रही है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बारिश प्रारंभ हो गई है, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जहाँ नहीं हुई है वहाँ पर इसका बहुत ही बुरा असर हो रहा है। फसलें सूख रही है, लोगों को काफ़ी सारी परेशानियाँ हो रही, इतनी भयंकर लू गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, तो सभी लोग इनसे बचने के लिए भी उपाय करें और आशा करते हैं कि मानसून जल्दी आए ताकि लोगों को इसे राहत मिले गर्मी से।
1: जी जी बिल्कुल, आपकी बातों से मैं सहमति व्यक्त करता हूँ। हमारा बिहार है, झारखंड है, और उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान में तो काफी बारिश हो रही है फिर भी, लेकिन ये क्षेत्र बहुत ही सूखाग्रस्त घोषित होने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार मानसून जो है ना अति विलंब से आएगा और मानसूनी वर्षा भी कम होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में हमें पूरी तरह से सावधानी पूर्वक कृषि कार्य करना जरूरी है और कम पानी वाली जो फसलें हैं उन्हें ही प्राथमिकता देनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: मानवर, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है उसने कहा था
0: जी,
1: और गीत के बोल हैं, रिम झिम के ये प्यारी प्यारी गीत लिए गीत लिए, बहुत ही सुंदर सुरीला गीत है, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आकाशवाणी भागलपुर से प्रसारण हेतु।
0: जी जरूर, तो आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे, और ये गाना आप खुद सुनेंगे अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी, मैं इस गीत में अपने दोस्तों को याद करता हूँ, शरद कुमार साहब हैं भागलपुर से,
0: धन्यवाद,
1: और लोकेन्द्र वर्मा हैं उज्जैन से, अविनाश जी, आशुतोष जी, संगीता जी त्रिपुरा से हैं, और राजू यादव बुंदेलखंड से। इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा सुरीला गीत है आकाशवाणी भागलपुर सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, तो आपकी तरफ से ये प्यारा सा गीत अपने तमाम श्रोताओं को, आपके तमाम दोस्तों को हम जरूर सुनाएंगे, और इस तरफ हमें कॉल करते रहिएगा।
1: जी हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, सादर नमस्कार।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: बच्ची मेरी कुरासिया कालदी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से आपका निमित होता इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ सर।
0: इंद्रभान जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ सर। और कल हम लोग तरफ पानी का दस्तक दे दिया है सर, ड्यूटी पीरियड में खूब पानी गिरा सर।
0: जी
1: और आज बादल भी किया है, उमस गर्मी भी लग रहा है, लगता है फिर पानी जम के आएगा।
0: जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि मानसून जो नहीं आया था आपके इलाके में, अगर प्रवेश कर गया है तो ये
1: जी
0: काफ़ी शुभ संकेत है कृषि के लिए और हमारे किसानों के लिए,
1: जी
0: प्रकृति
1: सर,
0: के लिए और सभी लोगों के लिए, ताकि ये जो गर्मी चल रही थी इससे बहुत ही लोगों को फ़ायदा मिलेगा।
1: जी सर। और ये जैसे सर पानी जब आने लगता है सर, तो उमस गर्मी टाइप लगता है, हवा बंद हो जाता है, उमस गर्मी खूब हो जाता है,
0: जी
1: तो पानी के संकेत है कि पानी जम के आने वाला है।
0: जी जी जी आज आपके माध्यम से हम अपने तमाम श्रोताओं से आज का जो पर्व मुहर्रम मनाया जा रहा है, इसके लिए सभी जो लोग मनाते हैं मुहर्रम, उन सभी को शुभकामनाएं देते हैं। ये तो मुहर्रम पर्व जो है शहादत के वो लोग याद करते हैं, हमारे मुस्लिम भाई सब, और बहुत सारे हिंदू लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, काफ़ी जगहों पे हमने देखा है। तो जो लोग भी मुहर्रम मना रहे हैं, सभी लोगों उनके लिए अच्छी कामना करते हैं और चाहेंगे कि सभी लोग प्रेम और भाईचारे के साथ पर्व को मनाएं।
1: जी सर,
0: जी, तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज वो फिल्म सर, फिल्म का नाम है तालका पिक्चर का है, वो तालका मेरी छतरी के नीचे आजा, अन्नू मल्लिक, सुदेश भोसले, और
0: जी
1: क्या
0: जी
1: बोल।
0: जी
1: और सबसे पहले गीत आपको केंद्र निर्देशक साहब को, पूरे भारत राष्ट्र श्रोता को, आकाशवाणी भागलपुर में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, भागलपुर में जुड़े सभी उद्घोषक भाई बहनों को, स्टाफ कर्मचारियों को, हेलो एक्टर रेडियो फेवरेट ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को, पूरे भारत राष्ट्र के श्रोताओं को रेडियो कर रहा हूँ सर। कल इसका प्रसारण 11 बजे होगा, जरूर सुना दीजिएगा सर।
0: जरूर जरूर, तो ठीक है, आपकी पसंद पे सभी को और अपने तमाम श्रोताओं को, आपके चाहने वालों को हमें गाना जरूर सुनाएंगे, और इस तरफ हमें कॉल करते रहिएगा।
1: जी सर, खासकर आपको डेडिकेट किया हूँ सर, फोन शाम के। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मुंती चौक भागलपुर से गौरव जोशी बोल रहा हूँ।
0: गौरव जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छा है, स्वस्थ है।
0: और क्या करते हैं आप?
1: अभी मैं पढ़ाई करता हूँ, पीएनबी कॉलेज में बीए सेमेस्टर 3 का छात्र हूँ।
0: क्या बात है। और आगे कुछ कंपटीशन वगैरह की तैयारी आप करना चाहते हैं?
1: हाँ, कंपटीशन की नौकरी जॉब के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ।
0: जी, तो काफ़ी अच्छी बात है और हम आशा करेंगे कि आप अभी से प्रयास करें ताकि आपको जो सफलता मिलेगी वो अब बहुत जल्द मिल जाएगी। आप अपना एक प्रिपेयर कर ले, चार्ट किस में जाना है उस हिसाब से आप अपना जो सही सही विषयों का चयन कर ले, जिसमें आप कमज़ोर है उसमें ज़्यादा प्रयास करें, जो आपको आता है उसको और अच्छे से कर लें, ताकि अपना एक स्ट्रेटजी, जो मेन जरूरी चीज़ होता है स्ट्रेटजी, आप बना ले। उसमें क्या क्वेश्चन बैंक वगैरह है वो सबको प्रैक्टिस करके देखे कि कैसा आपका होता है। और पहले से ही प्रयास करने से क्या होता है कि ड्यूरिंग स्टडी जब आप प्रयास करते हैं तो आपको मतलब और जल्दी मतलब आप गेन करते हैं कोई भी चीज़। तो अपना यूनिवर्सिटी पढ़ाई के साथ साथ उसको भी ध्यान में रखें। कई बार होता है कि कई जगहों पर टेक्निकल डिग्री की ज़रूरत भी पड़ जाती है, तो आप उसको भी पढ़ाई पूरी होने के बाद ले लेता कि आपको ज़्यादा ऑप्शन, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जी, कई लोग टाइप शॉर्ट हैंड भी सीख कर करते हैं, कई लोग आपको ITI डिप्लोमा की डिग्री लेकर भी बहुत सारी नौकरी करते हैं, तो सब कुछ आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। जी, और अभी गर्मी कैसी चल रही है आपको भागलपुर में?
1: गर्मी तो अभी है, काफ़ी गर्मी है। जी जी, बरसात हो जाती है।
0: जी जी, और जरूर जरूर, तो हम आशा करेंगे कि मानसून जल्द से जल्द पूरी तरह से हो। और बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज हम लोफर फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे।
0: लोफर फिल्म का कौन सा गाना?
1: दुनिया में है तेरा बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम।
0: क्या बात है, तो गाना खुद सुनेंगे अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: परिवार के सदस्यों के साथ सुनना चाहेंगे, पवन जोशी, संगीता जोशी, गीता जोशी और गौतम जोशी के साथ।
0: जी जी, जरूर जरूर, तो आपको ये गाना हम आपके परिवार के तमाम सदस्यों और अपने तमाम श्रोताओं के साथ जरूर सुनाएंगे। और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: जी, धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: मुकेश कुमार बोल रहे हैं सर, जबलपुर से।
0: मुकेश जी, कैसे हैं आप?
1: हम सर ठीक हैं।
0: और बताइए, काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। और मौसम कैसा चल रहा है आपको जबलपुर में?
1: मौसम तो सर बन रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है।
0: क्या बात है, लेकिन आपके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में बारिश प्रारंभ हो गई है।
1: यहाँ क्या है, मतलब तूफान आती है, आंधी आती है, फिर क्या है, छट जाती है।
0: ओ, यहाँ भी ऐसा ही चल रहा है बिहार में भी।
1: हाँ हाँ बिहार में
0: जी
1: भी।
0: जी और आपको बताना चाहेंगे कि 26 जून जो आज का दिन है, 26/6/2026, आज हम
1: हाँ
0: लोग
1: हाँ
0: इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर आज एक दिवस मनाते हैं। और ये दिवस जो है आपको 12 दिसंबर 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली जो है, जनरल असेंबली द्वारा घोषित किया गया था। और
1: अच्छा
0: टॉर्चर आप जानते होंगे कि कई बार टॉर्चर कई तरह से होता है। आप युद्धबंदी के दौरान टॉर्चर हो, या फिर किसी को अपहरण करके टॉर्चर हो, या शरणार्थियों का टॉर्चर हो, या जो भी हो, टॉर्चर के कई सारे रूप होते हैं। तो टॉर्चर के दौरान जो इनह्यूमन और जो डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है या पनिशमेंट दिया जाता है, तो वो लोगों का जो मनोस्थिति हो जाती है, जो टॉर्चर विक्टिम होते हैं, उनके सपोर्ट में ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
1: अच्छा
0: मतलब उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनको उस यादें होती है उसको दूर करने के लिए, क्योंकि कई लोगों को इसके ट्रामा होता है, बहुत लोगों को मतलब उसके दौरे भी पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये दिवस मनाया जाता है। तो बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज सुना दीजिएगा बरसात फिल्म का गाना।
0: बरसात फिल्म का कौन सा गाना?
1: बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन
0: क्या
1: आए,
0: बात है, तो गाना खुद सुनेंगे, घर वालों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: ये गाना सभी को सुनाएंगे, हम भी सुनेंगे। हमारे दोस्त है जितेंद्र कुमार, यूपी भीमसाम गेन से, भीमसेन गांव से, और बड़ी गोविंदपुर से है हमारे दोस्त देवराज, और ये सफियाबाद से है सुनील कुमार यादव। ये सबको
0: जी, तो ठीक है, आपके तमाम दोस्तों को और अपने तमाम श्रोताओं को आपकी पसंद पे खूबसूरत सा गाना हम जरूर सुनाएंगे। और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: ठीक है सर, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन
1: नमस्कार।
0: बोल रहे हैं?
1: हाँ शारद अली जी,
0: शहादत अली जी, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है। आप कैसे हैं सर?
0: हम भी अच्छे हैं। और अभी आप मुहर्रम का त्यौहार मना रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत
1: जी
0: बहुत
1: थैंक
0: शुभकामनाएं देते हैं।
1: यू
0: और आप
1: शुक्रिया।
0: हमारे श्रोताओं को बता दें मुहर्रम के त्यौहार के बारे में।
1: मुहर्रम त्योहार के बारे में देखिए, मुहर्रम बहुत अच्छा दिन है, अच्छा पैगाम है, लेकिन अच्छे से कीजिएगा तो अच्छा पैगाम है। ये तो
0: जी
1: ढोल बजाना, बच्चे बजाना, ये सब नजायज है, गलत है। ठीक है,
0: जी
1: ये
0: जी जी
1: पैगाम देना चाहते हैं। हाँ
0: जी तो बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: मुझे गाना यदि राष्ट्र का वो कव्वाली सुना दीजिए।
0: कव्वाली
1: अल्लाह
0: की,
1: अल्लाह।
0: अल्लाह अल्लाह।
1: जी जी
0: तो गाना खुद
1: जी
0: सुनेंगे, अपने घर वालों दोस्तों के साथ
1: खुद सुनेंगे,
0: सुना?
1: घर वालों का सुनाएंगे, खुद सुनेंगे,
0: जी जी
1: दोस्तों को
0: जी
1: सुनाएंगे।
0: तो ठीक है, आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे। और इस तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: ओके थैंक यू।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं? क्या बात है संदीप जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर।
0: और बताइए क्या चल रहा है अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं चल रहा है सर, गर्मी इतना जोर है सर। मैं बाहर में थोड़ा बैठते हैं, घास के पास लाइन भी नहीं रहते हैं सर, बहुत दिक्कत है।
0: तब तो बहुत समस्या हो रही होगी। और खेती में क्या स्थिति अभी चल रही है आपकी?
1: खेती में तो अभी वही खेत में था, मूंग लगाए हुए हैं सर।
0: तो फसल कैसी आएगी?
1: ठीक है सर।
0: फसल अच्छी है तब तो काफी अच्छी बात है। बारिश इधर हुई थी कि नहीं?
1: नई बारिश कहाँ हो रही सर?
0: वही सबसे बड़ी समस्या है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उधर के इलाके में भी, मतलब उत्तर भारत में बारिश नहीं होने से बहुत दिक्कत हो रहा है। और
1: जी
0: इसका सामना सबसे ज़्यादा किसानों को करना पड़ रहा है। 2015 के बाद ये स्थिति थोड़ा ज़्यादा गंभीर हो रही है। आशा करेंगे
1: बहुत
0: जल्दी
1: गर्मी
0: मानसून आए ताकि लोगों को इसका कुछ फ़ायदा मिल सके। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: राजा और रंग फिल्म का गाना,
0: कौन सा गाना?
1: उसमें मेरा नाम है चमेली महुमा।
0: क्या बात है, तो गाना घर वालों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी घर वाले के साथ। जी
0: ठीक है, तो आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा। धन्यवाद।

घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है, यानी वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। जाने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि प्रत्येक शुक्रवार को आप अपने मन पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी गानों के लिए अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। इसके लिए आप हमें सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मुझे यानी सौरभ कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के फोन कॉल पर केंद्रित कार्यक्रम फोन इन आपकी पसंद। प्रस्तुत करते थे सौरभ कुमार। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: समय पर बुवाई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो।

और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ। अपने

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। अब आइए सुनते हैं बहनों का कार्यक्रम नारी लोक। प्रस्तुत करते हैं श्री पार्वती के।

नारी लोक सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को मनीषी का प्यार भरा नमस्कार। किसी ने क्या खूब कहा है कि वेद उपनिषद धर्म ग्रंथ सब है, गीता का सार वही, शिक्षा संस्कृति संस्कार सब हैं, जीवन आधार वही, सकल विश्व में एक शब्द ही ईश्वर का प्रतिरूप बना, माँ ही प्रेम उद्दी सी निधि है, ममता का संसार वही। बहनों, भारत के विकास और प्रगति में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। आज की भारतीय महिलाएं केवल घर और परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल, चिकित्सा, व्यापार, कला और सामाजिक सेवा जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी भूमिका और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। यही नहीं, वह देश के निर्माण और विकास में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। बहनों, प्राचीन काल से ही भारतीय महिलाओं ने समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में शिक्षा के प्रसार और बढ़ते अवसरों के कारण महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आज महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षिका, वकील और प्रशासक बन रही हैं। वे अपने ज्ञान और कौशल के माध्यम से देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। आज राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वे संसद, विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता ने देश के विकास को नई दिशा प्रदान की। अनेक महिलाएं सामाजिक समस्याओं के समाधान और जन कल्याण के लिए निरंतर कार्य भी कर रही हैं। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी भारतीय महिलाओं की उपलब्धियां विश्व भर में सराहनीय हैं। वे अंतरिक्ष अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। बहनों, आज अनेक महिलाएं वैज्ञानिक देश के महत्वपूर्ण अनुसंधानों और परियोजनाओं का नेतृत्व कर रही हैं। बहनों, अगर खेल जगत की बात करें तो महिलाओं ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अनेक पदक जीते हैं। उनकी सफलता ने लाखों युवतियों को अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा दी है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में भी महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। आज अनेक महिलाएं सफल उद्यमी बनकर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कर रही हैं। वे आर्थिक विकास को गति देने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी योगदान दे रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं स्वयं सहायता समूह में के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं और अपने परिवारों की आय बढ़ाने में सहायता कर रही हैं। बहनों, महिलाओं ने अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, फिर भी उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लैंगिक भेदभाव, असमान अवसर और सामाजिक रूढ़िवादी आज भी कुछ संस्थानों पर मौजूद हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए समाज को महिलाओं के प्रति समानता और सहयोग की भावना विकसित करनी होगी। जब महिलाओं को समान अवसर प्राप्त होंगे, तब वे अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर सकेंगे।

0: तो बहनों, कहा जा सकता है कि आज की भारतीय महिलाएं देश की शक्ति, प्रगति और समृद्धि का आधार हैं। उनका योगदान राष्ट्र निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देता है। वे साहस, आत्मविश्वास, परिश्रम और समर्पण की अद्भुत मिसाल हैं। एक सशक्त महिला न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाती हैं। इसलिए महिलाओं का सम्मान करना, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से ही भारत एक विकसित, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो बहनों, हमारी बातों का सिलसिला आगे भी यूं ही चलता रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पनियरपुर पंचायत से बेबी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: जैसे कि हमने जब चुनाव मैंने जीती थी, उसके बाद हम अपने पंचायत में बहुत सारे काम किए थे, जैसे स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर। लेकिन सबसे अधिक प्रेरणादायक मेरा जो काम है वो है बालिका वाटिका जो हम बनवाए अपने पंचायत में, और छठ घाट का निर्माण करवाए थे। जो नई पीढ़ी आने वाली है उनके लिए जो भी संभव हो सके मैं उसे पूरा करूं, और पिछले जो समय जो उन लोगों के साथ जो बीता है वो आगे ना बीते, उसे आगे उनका भविष्य सफल रहे।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
4: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
3: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
4: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
3: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
0: बहनों, हम जीवन में बहुत कुछ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो जिंदगी का सफर होता है ना, वो कब क्या करे कुछ पता नहीं चलता। सफर में बहुत कुछ गुजरता है। कहीं कुछ लाइनें सुनी थी जो आपसे साझा करती हूं, कि सफर में जब जिंदगी को देखा, जो अनजान राहों पर चलते जा रही थी, कभी संगीत के स्वर की तरह मुस्कुरा रही थी, तो कभी आंख मिचोली खेल डरा रही थी। मंजिल तक पहुंचने की धुन में बिना रुके वह चलती जा रही थी, कभी नदियां की तरह बढ़ती तो कभी पहाड़ों से टकरा रही थी। हिम्मत कर एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, मुझे क्यों इतना सता रही थी, जब देखो तब मुझे आजमा रही थी। चल तो रहा था तेरी ही शर्त पर, तो क्या हर बार इम्तहान लिए जा रही थी।

0: और बहनों आइए अब सुनते हैं पूर्व प्रसारित वार्ता जिसका विषय है महिला समानता। वार्ताकार है वंदना झा।
1: आज समाज में महिला समानता दिखने लगा है। अब उनके लिए पहले जैसा परिदृश्य नहीं रह गया है। लड़कियों के लिए तमाम तरह के अंकुश के बावजूद आज महिलाओं के बीच अपने पैरों पर खड़े होने की जिद समाज में देखने को मिलती है। आज शिक्षा, प्रबंधन, विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, पत्रकारिता जैसे अनेकों क्षेत्रों में महिलाओं ने बेहतर मुकाम हासिल किया है। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के पीछे महिला का ही हाथ था। चंद्रयान 2 का कमान भी महिला वैज्ञानिकों के हाथ में है। देश की प्रथम नागरिक एक महिला ही रही है। देश में लोकसभा अध्यक्ष महिलाएं रही है। समानता के लिए आर्थिक उत्थान जरूरी है। विश्व में प्राय सभी देशों में आजकल महिलाएं पुरुषों से कंधे मिलाकर साथ चल रही है और राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुटी है। कहीं कहीं तो वे अपनी कार्य कुशलता, योग्यता, लगनशीलता के कारण पुरुषों से भी आगे बढ़ गई है। दृढ़ता, साहस, लगन, सूझबूझ के कारण उन्होंने समाज में प्रतिष्ठा हासिल की है। आज के अर्थ प्रधान युग में महिलाएं धन अर्जित कर रही है और वे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। केंद्र और राज्य सरकारों ने महिलाओं को संपन्न बनाने के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की है, पर समाज आज भी पूरी तरह से पीछे है। महिलाओं को समानता हासिल करने के लिए स्वयं पहल करनी होगी, क्योंकि महिलाएं समाज और परिवार की धुरी है। पर समानता का इंसानी हक आज भी हासिल नहीं हुआ है। लैंगिक असमानता के चलते ही अस्मिता और सामाजिक सम्मान से जुड़े सरोकार के संघर्ष में महिलाएं आज भी खुद को अकेले पाती है। भारत में महिला पुरुष असमानता किस हद तक है और इन दो महत्वपूर्ण आंकड़ों को ध्यान में रख करके मापा जा सकता है।

सकता है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन में महिलाओं की हिस्सेदारी 46.2% है, जबकि कुल श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी का दर महज 27% है। शुरुआती या एंट्री स्तर में रोजगार पाने की कुल प्रोफेशनलों में से केवल 24% ही महिलाएं होती है, जिनमें से लगभग 19% वरिष्ठ स्तर की प्रबंधक वाली भूमिका या पद तक पहुंच पाती है। फिर भी उन्हें पुरुषों की तुलना में 20% कम वेतन का भुगतान किया जाता है। इस तरह से समानता का हक आज भी आधी आबादी को सही तरह से हासिल नहीं हुई है। भारत में ही नहीं, दुनिया में भी महिलाएं अपनी पहचान बनाने को जुट रही है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बदलाव की दरकार समाज में मौजूद परंपराओं और रूढ़ियों को लेकर के है। बेटे बेटी के बीच किए जाने वाले भेदभाव की मानसिकता के चलते आज भी दूर दराज के गांव में बेटी की शिक्षा और उसके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता। आज भी हमारे परिवार में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को व्यवस्थागत समर्थन मिलता है। आज भी सार्वजनिक जीवन में महिलाएं खुद को सुरक्षित नहीं पाती। समाज में महिलाएं पहले के मुकाबले आगे आ गई है, लेकिन पूरी तरह से समानता हासिल करने में समय लगेगा। सरकारों ने इसके लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ तभी महिलाओं को मिलेगा जब समाज सचमुच में उसके लिए जागे। समाज में जागृति आ रही है, लेकिन की राजनीति में भागीदारी उतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। वर्तमान में संसद के दोनों सदनों में कुल मिलाकर के 94, 65 लोकसभा में और 29 राज्यसभा में महिला सांसद हैं, जो कि कुल सदस्यता का लगभग 12% है, जबकि वैश्विक औसत 23% है। राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो और भी चिंताजनक है। गौरतलब है कि भारतीय समाज में स्त्रियों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार की समाप्ति एवं उनकी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए 12 सितंबर 1996 को पहली बार महिला आरक्षण का विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जो तब से लेकर आज तक राजनीतिक दलों के राजनीति का शिकार है। लगभग 22 वर्षों से भारत की सरकार ने संसद एवं विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने का लंबा प्रयास किया, जो अभी तक सफल नहीं हो पाया है। दुनिया में कई देशों में महिला आरक्षण की व्यवस्था संविधान में दी गई है या विधेयक के द्वारा या प्रावधान किया गया है, जबकि कई देशों में राजनीतिक दलों के स्तर पर भी इन्हें पूर्ण लागू किया गया है। भारत में जिस तरह का पारंपरिक सामाजिक ढांचा है, उसमें केवल सरकारी योजनाएं और कानून महिलाओं को सशक्त नहीं बना सकता। असमानता के दंश से मुक्ति पाने के लिए समाज की सोच में भी बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं का उत्थान और उसका सशक्तिकरण परिवार और समाज की बेहतरी से ही सहायक बनेगा। देश के सर्वांगीण विकास के लिए हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बदलाव की दरकार समाज में मौजूद परंपराओं और रूढ़ियों को लेकर के है, और बेटे और बेटी के बीच किए जाने वाले भेद की मानसिकता के चलते आज भी बेटियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के मोर्चे पर तो अनगिनत चिंताएं है ही। घरेलू हिंसा, दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसे दंश भी बेटियों के जीवन में दुश्मन बनी हुई है। इससे राष्ट्रीय विकास की गति में अपेक्षित सुधार हुआ है और अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। सूक्ष्म वित्त आदि सुविधा का लाभ उठाकर और स्वरोजगार कार्यों में जुटकर आर्थिक उत्थान कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, सभी जगह आधी से ज़्यादा महिलाएं अर्थोपार्जन में लगी हुई है। घर समाज के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में महिलाएँ सक्रिय हैं। भारत जैसे विकासशील देश में महिलाएं स्वयं सहायता समूह के द्वारा आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है और समानता को हासिल कर रही है। पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण के कारण पिछले 27 सालों से सामाजिक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती आ रही है। नहीं तो इसके पहले तक और सामाजिक सार्वजनिक जीवन तो दूर, घर में भी फैसले नहीं ले पाती थी, वहीं अब वे पंचायतों में स्वयं निर्णय लेने लगी है और वे अपने फैसले को अमल में लाने के लिए किसी की मोहताज नहीं रहती। इतना सब कुछ होने के बाद भी महिलाओं को पुरुष के समान महत्व नहीं दिया जाता। समाज आधुनिक आविष्कारों

0: का लाभ उठाता है पर अपनी सोच में बदलाव नहीं लाता। केंद्र और राज्य सरकार ने महिलाओं को संपन्न बनाने के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की है पर समाज आज भी पूरी तरह से पीछे है। महिलाओं को समानता हासिल करने के लिए स्वयं पहल करनी होगी क्योंकि महिलाएं समाज और परिवार की धुरी है पर समानता का इंसानी हक आज भी हासिल नहीं हुआ है। लैंगिक असमानता के चलते ही अस्मिता और सामाजिक सम्मान से जुड़े सरोकार के संघर्ष में महिलाएं आज भी खुद को अकेले पाती है। भारत में महिला पुरुष असमानता किस हद तक है और इन दो महत्वपूर्ण आंकड़ों को ध्यान में रख करके समझा जा सकता है। आज सरकार के द्वारा स्त्री को पुरुष के समान महत्व की धारणा को ध्यान में रखते हुए उत्तराधिकार में बेटी को बेटे के समान आधा भाग दिया गया है। समाज में महिलाएं पहले के मुकाबले आगे आ गई है लेकिन पूरी तरह से समानता हासिल करने में समय लगेगा। सरकार ने इनके लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है लेकिन इन योजनाओं का लाभ तभी महिलाओं को मिलेगा जब समाज सचमुच में उसके लिए आगे। समाज में जागृति आ रही है लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीमी है।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। खांग पंचायत से कौशल्या देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
4: घर सम्मानी कौशल्या देवी खांग पंचायत। गाँव के तो बढ़ा रहे हैं कि गली नली बना रहा है, हमको गाँव ने अथी पंचायत भवन नहीं बन रहा है, बनने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं हो रहा है, आगे बढ़ाने चाह रहा है। ये सम्मान पा के बढ़िया लगा। गांव का फायदा तो है कि हमको गांव ने पानी गिरे के साधन नहीं था, वो सब के बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं।
3: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
5: बहनों अभी हम सुन रहे थे पूर्व प्रसारित वार्ता महिला समानता, वार्ताकार थी वंदना झा। जीवन में कई बार कुछ लोग आते हैं और ऐसी एक छाप आपके ऊपर छोड़ जाते हैं जो आप कभी नहीं भूल पाते। किसी ने क्या खूब कहा है कि शायद तुम कभी समझ नहीं पाओगे कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने क्या खोया। मैंने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, मैंने वह वजह खो दी जिससे दिन अच्छे लगते थे, जिससे भविष्य सुंदर लगता था। तुम चले गए और धीरे धीरे मैंने मुस्कुराना भी सीख लिया, लेकिन कुछ रातें आज भी ऐसी होती हैं जब दिल यह मानने से इनकार कर देता है कि अब तुम्हारा लौटना नहीं होगा। और तब समझ आता है कि कुछ लोग जिंदगी से चले तो जाते हैं पर दिल से कभी नहीं जाते हैं।

ये था बहनों को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक, प्रस्तुत करता थी श्री पार्वती के। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर संगम में। सुनिए वीजी जोग का वायलिन वादन राग शुद्ध सारंग में।

हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर और FM 100.1 MHz पर प्रस्तुत है लोकरंग कार्यक्रम। गायिका है रिंकू रानी। इनसे पहले सुनिए लोक भजन।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया। चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कुमना पंचायत की जनता।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

0: किन नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पठिया पंचायत से ज्योति कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं ज्योति कुमारी, ग्राम पंचायत राज मठिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जितने सारे कार्यों का वर्णन हम सभी मुखिया जी इस प्लेटफॉर्म पे आके वर्णन कर।
2: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। विश्व एमएसएमई दिवस आज। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी उद्यमियों को दी शुभकामनाएं। कहा, सरकार उद्यम और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार से भवन नियमितीकरण योजना की अवधि 6 माह बढ़ाने और इसके प्रावधानों को सरल बनाने की मांग की। रामगढ़ सड़क हादसा में 8 लोगों की मौत पर प्रशासन गंभीर। डीसी और एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। एनएचएआई अधिकारियों के साथ सुरक्षा उपायों पर विस्तार से की चर्चा। महान साहित्यकार और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर साहेबगंज में प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन। युवाओं ने लिया नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प। और रांची में 3 दिवसीय झारखंड फिल्म महोत्सव का उद्घाटन। 67 फिल्मों का होगा प्रदर्शन। राज्य की संस्कृति और स्थानीय प्रतिभाओं की दिखेगी झलक। और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व एमएसएमई दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश को आत्मनिर्भरता की ओर लगातार आगे ले जाने वाले सभी उद्यमियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार उद्यम और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र में जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2.0, आयुष्मान साथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुति क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज और स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। इनका उद्देश्य देश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी तथा सुलभ बनाना है। केंद्रीय ग्रामीण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गाँवों के विकास की साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत रोजगार जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर गरीब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। गिरडी के भंडारीडीह की रहने वाली रजिया इस्लाम का कहना है कि गैस सिलेंडर मुफ्त में मिलने से जिंदगी आसान हो गई है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया।
3: मेरा नाम रजिया इस्लाम। कोयला लकड़ी जलाते थे, अब वो जब से गैस मिला तब से खाना बना के दे देते हैं, टिफिन जल्दी जल्दी करके, धुआं से धक्का से बचते हैं, बीमारी से बचते हैं। घर दिया है, गैस दिया है, अनाज मिलता है फ्री में, खाने पीने की सुविधा है। सरकार को धन्यवाद देते हैं, ये सब कुछ मिल गया।
2: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल है।
4: जब यहाँ के बच्चों का हक, यहाँ के बच्चों का अधिकार को जब छीन रहे हैं, लुटा रही है सरकार, तो मुझे लगता है कि उससे अपने आप को सरकार नहीं बच सकती। हमारे पास आज भी वो सारे दस्तावेज है। विधानसभा में भी मैंने विषय को उठाया था कि रिम्स में या झारखंड सरकार में कोई सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है।
2: इधर भाजपा के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जनता का सरकार के काम पर विश्वास बढ़ गया है, जिससे भाजपा जानबूझकर राजनीति के तहत खामियां निकाल रही है।
5: हर जिला के सदर हॉस्पिटल हो या रेफरल अपने लोगों को भेजकर वहां का खामियां निकालता है, तो मैं डॉक्टर और सीएस को कहा हूं कि आप अपना एकदम मुस्तैदी के साथ रहिए और स्वार्थ को लेकर अगर राजनीतिक मुद्दा अगर बनाता है तो उसको बहिष्कार दीजिएगा। लोगों को विश्वास बढ़ गया है, आदमी काम करता है, मजदूरी करता है, तो मेहनत आता है तो मिलना चाहिए ना।
2: फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की कार्यकारिणी बैठक में राज्य सरकार से भवन नियमितीकरण योजना की अवधि कम से कम 6 माह बढ़ाने और इसके प्रावधानों को सरल बनाने की मांग की गई है ताकि अधिक नागरिक लाभ उठा सकें। इस बैठक में 13 से 19 जुलाई तक चीन का अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस टूर आयोजित करने और जल्द ही राज्य स्तरीय जॉब फेयर शुरू करने की जानकारी दी गई। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा, संताल परगना में 10% होल्डिंग टैक्स वृद्धि और मापतौल विभाग में निरीक्षकों की कमी पर भी चर्चा हुई। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ जिले के रजरप्पक थाना क्षेत्र अंतर्गत बारलोंग क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु पर जिला प्रशासन ने संवेदना प्रकट की। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रामगढ़ बोकारो की तकनीकी टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान दुर्घटना के कारणों की बारीकी से आकलन किया गया। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। BCCL अब खदान के गंदे पानी को प्यूरीफायर कर पीने योग्य बनाएगी और इसे कोल नीर के नाम से बॉटलिंग कर बाजार में उतारेगी। इसके लिए पुटकी बिलहरी क्षेत्रीय कार्यालय परिसर से करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से BCCL के पहले कोल नीर प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है। BCCL CMD मनोज अग्रवाल ने बॉटलिंग प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोयला खदानों से निकलने वाले माइन वाटर को अत्याधुनिक RO तकनीकी से शुद्ध कर पानी पीने योग्य बनाया जाएगा।
6: ये जल को सलिंग करके यहाँ बनेगा, 30 जून तक ये चालू हो जाएगा। इसके लिए जो ये कार्य यहाँ हो रहा है उस तरह का एक प्रथम कार्य पूरे BCCL में है, बल्कि प्रैक्टिकली पूरे CIL का वन ऑफ दी बेस्ट और फर्स्ट प्लांट होगा। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि माइन वाटर कैसे यूटिलाइज किया गया है।
2: हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की है। बरकट्टा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक अवैध शराब जब्त की। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अवैध अंग्रेजी शराब की खेप की बिहार में तस्करी करने की योजना थी। उत्पाद विभाग आगे की कार्रवाई में जुटी है। सिमडेगा जिले में पुलिस की दोहरी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अवैध गांजा तस्करी के मामले में एक महिला आरोपी को भी गिरफ्तार किया है।
7: छापामारी गठन के बाद लगातार तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर अज्ञात महिला का शव पहचान ललित देवी के पिता विश्वनाथ बराय साकिन तोलेगिरा जिला सिमडेगा के रूप में हुई है। आरोप मृतिका का मोबाइल, चप्पल, अभी का फोन बरामद हुआ है। अनुसंधान के क्रम में घटना में संदिग्ध आरोपी मोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया।
2: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो है। मेरा युवा भारत साहेबगंज के तत्वावधान में महान साहित्यकार और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती के अवसर पर एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित लोगों को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन, उनके साहित्यिक योगदान तथा राष्ट्र प्रेम की भावना से अवगत कराया गया।

0: कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्ति अभियान के तहत यूथ क्लब के सदस्य को नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी नशा मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया गया। रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में झारखंड फिल्म महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रोफेसर गोपाल पाठक और कुलपति प्रोफेसर जगन्नाथ चेकलिंगम ने किया। साथ ही महोत्सव स्मारिका चित्रपटल का लोकार्पण भी हुआ। देश भर में मिली 84 प्रविष्टियों में से चुनी गई 67 फिल्मों का 3 दिवसीय महोत्सव में प्रदर्शन होगा, जिनमें झारखंड की संस्कृति, प्रकृति और स्थानीय प्रतिभाओं की झलक दिखेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व एमएसएमई दिवस आज। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी उद्यमियों को दी शुभकामनाएं। कहा, सरकार उद्यम और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार से भवन नियमितीकरण योजना की अवधि 6 माह बढ़ाने और इसके प्रावधानों को सरल बनाने की मांग की। रामगढ़ सड़क हादसा में 8 लोगों की मौत पर प्रशासन गंभीर। डीसी और एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। एनएचएआई अधिकारियों के साथ सुरक्षा उपायों पर विस्तार से की चर्चा। महान साहित्यकार और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर साहिबगंज में प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन। युवाओं ने लिया नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प। और रांची में 3 दिवसीय झारखंड फिल्म महोत्सव का उद्घाटन। 67 फिल्मों का होगा प्रदर्शन। राज्य की संस्कृति और स्थानीय प्रतिभाओं की दिखेगी झलक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे लोकरंग कार्यक्रम।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। बनी वैसी पंचायत से गुड़िया देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: कार्य किए हैं, बच्चा का खेल मैदान वाला बनवाए, उसके बाद गली बनवाए, नाली, उसके बाद सरकार भवन बनवाए, उसके बाद रोड बनवाए, उसके बाद कचरा वाला। और बहुत अच्छा लगा। पहले भी हमको भागलपुर में मिला था, फिर हम गया गए थे, हैदराबाद गए थे, वहाँ भी हमको सम्मान मिला। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
1: लोकरंग कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं देवी गीत, गायिका एक बार फिर रिंकू रानी।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पनियरपुर पंचायत से बेबी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: जैसे कि हमने जब चुनाव मैंने जीती थी उसके बाद हम अपने पंचायत में बहुत सारे काम किए थे, जैसे स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, लेकिन सबसे अधिक प्रेरणादायक मेरा जो काम है वो है बालिका वाटिका जो हम बनवाए अपने पंचायत में, और छठ घाट का निर्माण करवाए थे। जो नई पीढ़ी आने वाली है उनके लिए जो भी संभव हो सके मैं उसे पूरा करूं, और पिछले जो समय जो उन लोगों के साथ जो बीता है वो आगे ना बीते, उससे आगे उनका भविष्य सफल रहे।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: संदेश के पूर्व लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में आपने सुना रिंकू रानी के गाए लोकगीत, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। 1:30 बजने वाले हैं, प्रस्तुत है संताली कार्यक्रम जीवन झरना, प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: आपने सुना संताली कार्यक्रम जीवन झरना, प्रस्तुत करते थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। ये आकाशवाणी भागलपुर है।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पठिया पंचायत से ज्योति कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मैं ज्योति कुमारी, ग्राम पंचायत राज मठिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जितने सारे कार्यों का वर्णन हम सभी मुखिया जी इस प्लेटफॉर्म पे आके वर्णन कर रहे हैं, यह सारी की सारी छुपी रह जाए। यह सारी की सारी छुपी रह जाती है अगर अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान सहयोग करके हमारे धरातल को, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ उभार कर एक मंच प्रदान नहीं करती। तो आज इस मंच पे आके हम सभी प्रतिभागी यहाँ पर अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं, और इसके लिए फिर से एक बार अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। खांग पंचायत से कौशल्या देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: घर सम्मानी कौशल्या देवी खांग पंचायत। गाँव के तो बढ़ा रहे हैं कि गली नली बना रहा है, हमको गाँव ने अथी पंचायत भवन नहीं बन रहा है, बनने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं हो रहा है, आगे बढ़ाने चाह रहा है। ये सम्मान पा के बढ़िया लगा। गांव के फायदा तो है कि हमको गांव में पानी गिरे के साधन नहीं था, वो सब के बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
4: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया। चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा।

0: समाचार सुनेंगे, इसे फिर से सुन लें। कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे पटना केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुना जा सकता है। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में बिहार समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य मिलकर गांवों के विकास की साझा रणनीति तैयार करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2.0, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज और स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। इनका उद्देश्य देश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी तथा सुलभ बनाना है। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से कल प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 993 पदों के लिए आयोजित ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। पूर्व मध्य रेलवे परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज और कल 13 परीक्षा विशेष ट्रेन चलाएगा। दानापुर मंडल की ओर से आज पटना के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से सहरसा, भभुआ, बेतिया, पूर्णिया, अररिया और सीवान के लिए कुल 6 परीक्षा विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं कल 7 परीक्षा विशेष ट्रेन संचालित की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बिहार सरकार की पहल पर पंचायती राज विभाग की ओर से अब प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर जन भागीदारी बढ़ाना और योजनाओं की समीक्षा के माध्यम से पंचायत को सशक्त बनाना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल मुंगेर के चयनित पंचायत से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आज हेलेन केलर दिवस है। प्रतिवर्ष 27 जून को हेलेन केलर की जन्म स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। हेलेन केलर जन्म से ही दिव्यांग थी। देखने और सुनने की क्षमता नहीं होने के बावजूद उन्होंने जीवन में दृढ़ संकल्प दिखाया और अपने लक्ष्य हासिल किए। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार नेत्रहीन परिषद की ओर से आज 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान विधान पार्षद सर्वेश कुमार और स्थानीय विधायक संजय गुप्ता भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के बीच अररिया, बांका, भागलपुर, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात

का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान रोहतास, कैमूर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना, नालंदा और शेखपुरा समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में भी कई स्थानों पर आंधी बारिश की आशंका है। अररिया जिले में जिलाधिकारी विनोद दुहन की उपस्थिति में एनआईसी के रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर्मियों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी की गई। किशनगंज के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने मुहर्रम के दौरान ड्यूटी पर मोबाइल फोन चलाने के आरोप में एक महिला सिपाही को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात शेयर करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां एडिशन होगा। प्रोग्राम का नशरिया आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज़, DD न्यूज़, वज़ीर आज़म दफ्तर और वज़ारत इत्तला'आत व नशरियात के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा नशरिया होगा। मन की बात प्रोग्राम का नशरिया प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुना जा सकता है। इसके फौरी बाद मैथिली जुबान में इसका नशरिया आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी नशरिये को दोबारा रात 8 बजे से भी सुना जा सकता है। मरकजी वजीर देही तरक्यात शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में कौमी देही तरक्यात कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। 2 दिनों की इस कॉन्फ्रेंस में बिहार समेत सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खितों के देही तरक्यात के वज़रा, सीनियर अफसरान और माहिरीन हम आज जहद देही तरक्की के मौजू पर इजहार ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अहम प्रोजेक्टों का जायजा और देही भारत के लिए मुस्तकबिल का खाका तैयार करने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के तवस्सुस से मरकज़ और रियासत मिलकर गांव की तरक्की की मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करेंगे। मरकजी वजीर सेहत और ख़ानदानी फलाह जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में सेहत के शोबे से वाबिस्ता कई डिजिटल पहल का आगाज़ करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रोत क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज और हेल्थ स्टैंडर्ड शामिल है। इनका मकसद मुल्क में डिजिटल सेहत खिदमात की तौसीह करना और सेहत खिदमात को मज़ीद मुअस्सर और आसान बनाना है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से कल रियासत के मुख्तलिफ मराकज पर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती इम्तहान का इनेकाद किया जाएगा। 993 ओहदों के लिए होने वाला ये इम्तहान 2 नशिस्तों में होगा। मशरकी वस्त रेलवे इस इम्तहान में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सहूलत के लिए आज और कल 13 इम्तहान स्पेशल ट्रेन चलाएगा। दानापुर डिवीज़न की जानिब से आज पटना के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों से सहरसा, भभुआ, बेतिया, पूर्णिया, अररिया और सीवान के लिए कुल 6 इम्तहान स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं कल 7 इम्तहान स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। हुकूमत बिहार की पहल पर महकमा पंचायती राज की जानिब से अब हर महीने के आखिरी इतवार को रियासत के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का इनेकाद किया जाएगा। इस पहल का मकसद है देही तरक्की से जुड़े मौजूदात पर अवामी हिस्सेदारी को बढ़ाना और मंसूबों के जायजे के जरिए पंचायत को मुस्तकम बनाना है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज यौम हेलेन केलर है। हर साल 27 जून को हेलेन केलर की पैदाइश की याद में ये दिन मनाया जाता है। हेलेन केलर पैदाइश से ही माजूर थी। देखने और सुनने की कुव्वत नहीं होने के बावजूद उन्होंने ज़िंदगी में पुख्ता अज़्म दिखाया और अपना निशाना हासिल किया। इस मौके पर रियासत में कई प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। बिहार नेत्रहीन परिषद की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इस दौरान रुकन कानून साज कौंसिल सर्वेश कुमार और रुकन असम्बली संजय गुप्ता मौजूद रहेंगे। इस बीच कल हेलेन केलर जयंती के कबल की शाम पटना में परिषद और BIA के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम माजूर अफराद के लिए ज़ाती तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर 25 बासलाहियत माजूर अफराद को इजाज़ से नवाजा गया। महकमे मौसमियात ने आज रियासत के कुछ हिस्सों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा ने अगले 2 से 3 घंटों के बीच अररिया, बांका, भागलपुर, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, पूर्णिया

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: फैक्ट्री का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
5: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
5: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
6: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
3: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेश रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि एक मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का। हमारा अगला कार्यक्रम है एक ही कलाकार। तो आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल के प्रिय श्रोताओं का मैं सुनिधि गुप्ता हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार में। तो आज का ये कार्यक्रम समर्पित है हिंदी फिल्म के संगीत के उस जादूगर को जिसने अपनी धुनों से संगीत की दुनिया को एक नई पहचान दी। हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार राहुल देव बर्मन की, जिन्हें दुनिया प्यार से पंचंदा के नाम से जानती है। दोस्तों, 27 जून यानी आज ही
8: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। पेशे फिल्मी गानों का कार्यक्रम चित्रपट से।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
6: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गानों का कार्यक्रम चित्रपट से, और प्रोग्राम का अगला नगमा शंकर महादेवन, राम शंकर और साथियों की आवाज़ों में फिल्म है बिच्छू।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के गाए दाग द फायर फिल्म के इस गीत के साथ ही समाप्त होता है आज का चित्रपट से कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रादेशिक संगीत में आज के गायक कलाकार हैं मधुकर निराले और साथी।

0: कार्यक्रम के आरंभ में आपने सुना गणपति वंदना।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। बनी है वैसी पंचायत से, गुड़िया देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: कर्ज किए हैं, बच्चा का खेल मैदान वाला बनवाए, उसके बाद गली बनवाए नाली, उसके बाद सरकार भवन बनवाए, उसके बाद रोड बनवाए, उसके बाद कचरा वाला। तो बहुत अच्छा लगा। पहले भी हमको भागलपुर में मिला था, फिर हम गया गए थे, हैदराबाद गए थे, वहाँ पे हमको सम्मान मिला। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश का।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
0: प्रादेशिक संगीत में अब हम आपको सुनवाते हैं गौलंद, गायक कलाकार मधुकर निराले और साथी।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से किशनपुर लोहुआर पंचायत से ओम राकेश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: यशस्वी मुखिया राकेश कुमार शाह ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं था जिसके चलते मेरे यहाँ नागरिकों को बहुत कठिनाई होती थी प्रखंड जाकर काम कराना पड़ता था। मैंने ग्राम पंचायत में अपने ग्राम पंचायत पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया। अब पंचायत सरकार भवन के एक छत के नीचे ही मेरे पंचायत के लोगों का सारा काम हो जाता है। अब प्रखंड जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा सहयोग करता हिंदुस्तान।

प्रादेशिक संगीत में अभी आप सुन रहे थे मधुकर निराली और साथियों को। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, समूह स्वर में सुनिए देशभक्ति गीत।

समोसर में अपने सुना देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब से संध्या 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम और शाम 5 बजे से आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रम। विविध भारती कार्यक्रम के लिए आइए शामिल होते हैं दिल्ली के प्रसारण में।

वंदना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत। इसके साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसके साथ अपने दोस्त नेहा शर्मा को भी दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कटीला रास्ता, इस नाटक का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक

शोध नहीं पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने। निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक।

0: डॉक्टर रतनगिरी, मेरी ओर से हार्दिक बधाइयां।
1: भारती,
0: अब मैं केवल आपकी भारती नहीं हूँ, समझे? अब मैं हूँ डॉक्टर भारती, MBBS।
1: फिर भी वो?
0: जी, मैं आपके गांव की हम पेशा लेडी डॉक्टर हूँ।
1: भारती सुनो तो।
0: अच्छे पाव धराओ, अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। आपकी प्रेयसी और भावी पत्नी डॉक्टर उमा देवी मेरी परम प्रिय सखी हैं, कम से कम इस बात को मत भूलिएगा।
1: ओ भारती, कृपा करके मेरी बात तो सुनो।
0: उसकी कोई जरूरत नहीं, सब जानती हूँ। मंगल ललूर गांव के बड़े रईस श्रीमान मरुद नायकम के इकलौते सुपुत्र हैं ना, और मद्रास शहर के बहुत बड़े व्यापारी की इकलौती सुपुत्री है डॉक्टर उमा देवी। दोनों का शुभ।
1: लेकिन भारती, इसमें तुम्हारी भी गलती है।
0: मेरी गलती? बातें तो बड़ी ऊंची की थी आपने, कहां गई वो सब बातें?
1: मैं भूला नहीं हूँ, ये सही है। हमने निश्चय किया था कि हम एक साथ पढ़ाई पूरी कर जीवन साथी बनकर गांव लौट आएंगे और जनता की सेवा करेंगे।
0: लेकिन हमारा वो निश्चय, वो संकल्प अब कोरा सपना हो गया है।
1: कोरा सपना नहीं हो गया भारती, समय तथा युग के अनुसार थोड़ा बदल गया है बस।
0: समय और जमाने के मुताबिक पैतरे बदलना, रंग बदलना क्रिकेटों का काम है, पढ़े लिखे उपाधिधारी और विचारवान व्यक्तियों का नहीं है, समझे?
1: इसीलिए तो मैं विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने की कोशिश में।
0: हाँ हाँ, आप उसी कोशिश में हैं, मैं जानती हूँ आपकी कोशिशें। भावी ससुर साहब की सहायता से विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने वाले हैं आप, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए।
1: भारती, भारती तुम मुझे अब भी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो।
0: खूब समझ गई हूँ आपको डॉक्टर साहब। विदेश जाकर पढ़ना और बहुत बड़े रईस की इकलौती बेटी का चोलेरी डॉक्टर भी है पति बनना, ये दो बड़े लक्ष्य आपकी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं, की हुई प्रतिज्ञाओं को भूलवा चुके हैं।
1: भारती, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बना करती, जिंदगी बसर करने की बुनियाद है पैसा। प्रेम के साथ पैसा भी हमें चाहिए।
0: वाह, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बन सकती, खूब कहा आपने। दौलत की बुनियाद पर प्रेम का दुर्ग खड़ा करना चाह रहे हैं आप, कीजिए, शांत से कीजिए।
1: भारती देखो, तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूं मैं। हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी इसी बात से तुम बहुत दुखी हो और मुझ पर अपना क्रोध उतार रही हो। देखो भारती, समझदारी इस बात में है कि हम कैसे अपनी जिंदगी बेहतर बना पाते हैं। जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में रहना और उसी के अनुसार सोचना कोई गलत काम नहीं है। अच्छा तो यह है कि हम बीती बात भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें और भविष्य पर दृष्टि रखें।
0: अतीत को भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें, ठीक ही है। होशियारी से जिंदगी गुजारने की सोचना तो जरूरी है, क्यों ना सोचा जाए।
1: मुझे खुशी है कि तुम समझने लगी हो अब।
0: जी हाँ, समझने लगी हूँ।
1: रियली?
0: हाँ, जिंदगी चाहे जैसे नहीं गुजारनी है, गुजारनी है अपनी इच्छा और अपने लक्ष्य के अनुसार। जीवन के इस सच्चे सिद्धांत को समझ गई हूँ मैं।
1: भारती,
0: सिर्फ भारती नहीं, I am डॉक्टर भारती। डॉक्टर रतनगिरी, आपके शानदार जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। मुझे आज्ञा दीजिए, बाय। भारती, ये क्या बात है, मेरी शादी भी नहीं आ रही हो? तुम्हारा बाहर जाना इतना जरूरी है क्या? अब क्या करूं उमा, मेरी इच्छा तो यही है कि तुम्हारी शादी के मौके पर जरूर रहूं, लेकिन कर्तव्य को भी नहीं डाला जा सकता ना।
2: हाँ हाँ,
0: बढ़िया ही कर्तव्य निभाने वाली। तुम्हारे गांव में ऐसा क्या कर्तव्य आ पड़ा जिसे निभाना जरूरी हो गया, बताओ तो जरा।
2: भविष्य में वो तुम्हारा भी गांव होगा उमा। ससुराल का गांव पीहर से कम नहीं है, और फिर तुम्हारे पतिदेव तो मेरे गांव के हैं।
0: तो तुम ही जानती हो?
2: क्यों नहीं, भली प्रकार जानती हूँ। मैं उसी गाँव की हूँ और मेरे मामा वहाँ रहते हैं। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया तुमने?
0: अब क्या बताऊँ भारती, पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए सारा इंतजाम करा दिया है। उनके व्यापार उद्योग क्षेत्रों के मित्र तो सब जगह फैले हुए हैं ना, तब तो विदेश में आगे की उच्चतम शिक्षा का इंतजाम करा दिया होगा।
2: ठीक है, उसे ही एक तरह से हनीमून समझो।
0: अब शादी में सिर्फ 10 ही दिन तो रह गए हैं, तुम इस बीच बाहर जाने का इरादा छोड़ क्यों नहीं देती?
2: मेरी विवशता है उमा, हमारे गाँव के डॉक्टर बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका काम चलाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है, उनका कार्यभार संभालने के लिए किसी ना किसी को तो जाना ही है, मैं ही वो काम संभालने जा रही हूँ।
0: तुम भी खूब हो भारती, शहर के डॉक्टर गांव में जाने से कतराते हैं, धंधा चले ना चले साइन बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं शहर में, और एक तुम हो गांव जाकर सेवा करने पर तुली हो।
2: इसीलिए तो जा रही हूँ, वरना आप लोग गांव चली जाओ कहकर भगा देंगे तो।
0: लेकिन फिर भी सिर्फ 10 दिनों की ही तो बात है।
2: आई एम सो सॉरी उमा।
0: ओफो भारती, तुम बड़ी हठी हो।
2: कुछ बातों में औरतों का हठीलापन अच्छा ही होता है और जरूरी भी है। अच्छा उमा, तुम्हारे सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए मेरी बहुत बहुत बधाइयां।
0: जी जी, जाकर तुम्हारे हाथ के आगे

0: भारती, उस हवाई जहाज को क्यों उतार के ले गई? खोई खोई सी क्यों खड़ी हो? अस्पताल नहीं जाओगी?
1: अभी जाती हूँ मामा, नर्स नागमणि के इंतजार में हूँ।
0: पूरा मत मानना भारती, तुम बड़ी डॉक्टर हो, तुम्हारे इंतजार में लोग रहे ये तो ठीक है, पर किसी और के इंतजार में तुम रहो ये जनता नहीं।
1: ये बात नहीं है मामा जी, मैं अपने काम की जरूरत के लिए इंतजार करती हूँ, किसी व्यक्ति के इंतजार में नहीं हूँ।
0: तुम ठीक अपने पिता की तरह हो, उन्हें राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्रीय संग्राम आदि के बारे में जितना लगाव था उतना ही लगाव तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में है। एक तरह का नशा ही चढ़ा हुआ था उन्हें, अब वैसा ही नशा तुम पर सवार है।
1: वो नशा नहीं था मामा जी, वो भक्ति थी। नशा तो जंगली नाले की तरह है, जो एक दिन उमड़ आता है तो दूसरे दिन उतर जाता है, पर मामा जी भक्ति ऐसी चीज नहीं है, वो तो सदा बहते रहने वाली धारा है।
0: मैं क्या जानू बेटी, मैं ठहरा गंवार, खेत जोत कर रोजी चलाने वाला।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, आपकी मेहनत और लगन की ही मेहरबानी है कि मुझे अनाथ लड़की को आपने पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया।
0: वो मेरा वचन पालन था जो मैंने अपनी बहन को दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ते वक्त तुम्हारे पिता की उम्र 22 साल की थी, शादी के कुछ ही महीनों की बात है।
1: और माता जी?
0: उस समय यानी 30 साल पहले तुम्हारी माँ मेरे साथ रहती थी, तुम्हारे पिताजी जेल में थे।
1: फिर क्या हुआ?
0: देश के स्वतंत्र होने के बाद ही मैं घर में घुसूंगा, तब तक मेरे लिए घर गृहस्थी कुछ नहीं है, यही कहते थे तुम्हारे पिता।
1: और आजादी मिलने के बाद?
0: तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ अपनी आजादी की खोज में चल बसी, शायद अधेड़ उम्र में प्रसव होने की वजह से यह हालत हुई होगी।
1: बेचारी दुखियारी माँ।
0: उसी व्यथा में तुम्हारे पिताजी भी खुल खुल कर मर गए, वे तुम्हारी माँ को बहुत प्यार करते थे।
1: स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में जो जमीन उन्हें भेंट की गई थी उसको लेने से तो पापा जी ने इनकार कर दिया था ना?
0: और क्या, टुकड़ा भर जमीन मिलेगी इस अरमान से थोड़े ही उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। खैर उस बात को जाने दो, मैं तो दूसरी ही बात कहने आया था, भूल ही गया।
1: क्या बात है मामा जी?
0: हाँ याद आ गई, इस बात का ख्याल रखना बेटी, यहाँ के सरपंच मरूद नायकम, बड़े मीरास्तार रईस कुमार स्वामी जैसे लोगों का मन रखना भी जरूरी है, उनसे झंझट मोल लेना ठीक नहीं होगा। इन लोगों के सहयोग से ही ये आम अस्पताल बना है और इन्हीं के सहारे ये चल रहा है।
1: काफी देर हो गई है, नर्स नागमणि अब तक नहीं आई, मैं चली जाती हूँ मामा जी।
0: ठीक है, मेरी बात याद रखना, तुम आखिर एक लड़की हो ये मत भूलना।
2: हाँ हाँ आप चिंता

0: डॉक्टर साहब, चार दिनों से बुखार लगातार चल रहा है, बहुत कमजोर हो गया हूँ। जरा कह दीजिए बिना पानी मिलाए अच्छी दवा देने।
1: मिक्सचर वाली दवा तो पानी के बिना नहीं बन सकेगी। टिकिया लेंगे आप? ऐसा ही लिख कर दे देती हूँ, दुकान से खरीद लीजिएगा।
0: डॉक्टर जी पैसा नहीं है। डॉक्टर जी
1: कोई बात नहीं, ये लीजिए पैसे।
2: डॉक्टर साहब उस आदमी को दवा मत दीजिए, वो हमारे रही सारे कुमार स्वामी जी के दुश्मन का आदमी है।
1: तुम आ गए नागमणि, इतनी देर कैसे हुई? इस आदमी को दवा देने से रोक क्यों रही हो?
2: एक ही करके पूछिए ना।
1: कहो तो।
2: वो अपने पंचायत प्रेसिडेंट है, उनके घर जाना पड़ा, उनको बुखार है।
1: ठीक है,
2: फिर आपको तुरंत ले आने को कहा।
1: क्यों, वो यहाँ नहीं आ सकते?
2: इस गांव का यही दस्तूर है, आप नहीं जानती बड़े लोग अस्पताल में कैसे आएंगे।
1: अफसोस, बुखार को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो बड़े और छोटे लोगों को पहचान सके।
2: आप नई आई हैं, इसीलिए यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानती, वरना ऐसा नहीं कहती।
1: मुझे अपने इस अस्पताल से ही मतलब है, मैं और कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती हूँ।
0: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मैं चलूं?
1: हाँ जा सकते हो भाई, पर देखो वो टिकिया जरूर खरीद लेना, रोज सुबह और शाम को खाना भोजन के बाद।
0: आप जुग जुग जिए डॉक्टर साहब, जुग जुग जिए।
2: डॉक्टर साहब वो आदमी हमारे रही साहब के दुश्मन का नौकर है, इसीलिए।
1: मरीज का ना कोई दुश्मन होता है ना दोस्त, डॉक्टर के लिए भी यही बात है।
2: ओफो, आप अभी छोटी उम्र की हैं, समझती नहीं है, मैं अनुभवी औरत कह रही हूँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अब तक कई डॉक्टर आ चुके हैं, जा भी चुके हैं।
1: नागमणि तुम एक नर्स हो, तुम्हारा काम दूसरों को धमकाना नहीं है, समझ रही हो?
2: लगता है तब तो आप प्रेसिडेंट के घर नहीं जा रही हैं।
1: प्रेसिडेंट हो या उससे भी बढ़ चढ़कर कोई और, अस्पताल उनके यहाँ नहीं जाएगा। अगर वो चाहे तो किसी बड़े डॉक्टर को घर बुला लाए, ऐसी औकात है उनकी।
2: याद रखिए ये अस्पताल उन्हीं की मदद से चल रहा है।
1: नागमणि
2: जाकर यही कह दूं उनसे कि डॉक्टर साहब का कहना है आप किसी बड़े डॉक्टर को बुला लाए, अस्पताल आपके घर नहीं आएगा।
3: वेदाचलम, लगता है भारती को गांव का कायदा समझ में नहीं आया है, नई उमंग है ना। मैंने सुना है नर्स नागमणि को नौकरी से हटाने की बात कर रही है, किस भुलावे में है ये?
4: नायकम जी मैं समझा देता हूँ उसे, इस बार माफ कर दीजिएगा, आखिर तो आपकी दया माया से बना हुआ अस्पताल है ये।
3: नर्स हो या डॉक्टर, उसे नौकरी में रखना हमारी मर्जी पर है, समझे। नागमणि की कितने ही सालों पुरानी सर्विस है, उसे भारती बर्खास्त कराएगी, ये मजाल है उसकी।
4: नायकम जी ये अपने बाप पर गई है, उसी की तरह ये भी थोड़ी तेज तबीयत की है।
3: तब इसकी भी उसके ही जैसी हालत होगी, मेरे ही अस्पताल में काम कर रही है और मेरे ही घर आकर इलाज नहीं करेगी। ये सब नहीं चलेगा यहाँ।
1: चिंता ना कीजिए, मैंने अपना इस्तीफा लिखकर दे दिया है।
4: भारती तुम?
3: अच्छा तो ये बात है,
4: पर इस्तीफा क्यों दे रही हो बेटी?
1: क्योंकि इसी तरह मैं अपने अंतःकरण के अनुसार काम कर सकती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ।
4: पर तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि ये गांव के बड़े आदमी हैं।
1: मामा जी मैं छोटी हूँ ना, बहुत छोटी हूँ, इसीलिए बड़े आदमियों के साथ सुलह कर चलना मुझे नहीं भाता, तभी तो इस्तीफा देकर बाहर आ गई हूँ।
3: सुना आपने?
4: इसके लिए मुझे खेद है साहब, मैं इस लड़की को समझा दूंगा।
3: ठीक है, देख लेंगे इसे भी, इस वक्त हम चले जाते हैं।
4: भारती भारती तुमने नागमणि के मामले में ज्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें।
1: चुपचाप अन्याय को देखते रहना मेरे बूते की बात नहीं है मामा जी।
4: बिटिया मैं बूढ़ा हो चला, मरीज भी हूँ, इस दशा में गांव वालों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। ओह पता नहीं ये क्या कर बैठे।
1: दुष्टों धूर्तों के पल्ले ना पड़ू, अपनी रक्षा कर सकूं, इतना होश मुझे है, आप चिंता छोड़िए मामा जी।
4: तुम भी अजीब लड़की हो। ओह अरे सीना दर्द कर रहा।

0: क्या हुआ मम्मी जी?
1: तीनों
0: मम्मी जी क्या हुआ? सुनिए ना बस, अभी आती हूँ, थोड़ा अपने को संभालिए, अभी आई।
1: पानी, थोड़ा पानी, पानी, पसीना छूट रहा है।
0: ले चाहिए, ये मुझे पानी के दौरे के कारण इनकी हालत है। मामा जी एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, आप आराम से सो सकेंगे।

0: देखो भाभी,
1: अरे उमा तुम अचानक यहाँ कैसे टपक पड़ी?
0: देख लो
1: क्या ससुराल की भूमि के दर्शन करने चली आई हो।
0: अरे भाई पहले आसमान से नीचे तो उतरो,
1: गाड़ी को तुम आसमान कहती हो।
0: ये लो उतर आई तुम्हारी धरा पर।
1: ये कहा कैसा
0: पागलों की तरह हंसी चली जा रही हो, आखिर बात क्या है?
1: तुम्हारा रूप देखकर पागल हुई हूँ।
0: क्या बढ़िया वेश बना रखा है तुमने, एक मामूली वॉयल की साड़ी, हाथ में ये छोटा सा बक्स, सीधा कंघी किया हुआ सिर।
1: वाह ठेठ देहाती दाईमा लगती हो।
0: ठीक ही तो है, लेडी डॉक्टर आखिर क्या है, दाईमा का ही तो दूसरा रूप है।
1: तुम अपनी बात कभी काटने भी देती हो?
0: बात बात पर काटने दौड़ पड़ने की तुम्हारी आदत गई नहीं आखिर।
1: मजाक मजाक छोड़ो उमा।
0: अच्छा पहले ये बताओ तुम कैसे इधर आई?
1: जानम्मा
0: जी
1: ऐसा करो तुम ये बक्स लेकर घर चले जाओ।
0: हाँ
1: मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी।
0: जी बहुत अच्छा।
1: अच्छा पहले ये बताओ कि जानम्मा कौन है, तुम्हारी नई नर्स साहिबा?
0: हाँ उमा मैंने अस्पताल से इस्तीफा देकर अपनी अलग डिस्पेंसरी खोल ली है।
1: वो सब तो मैं पहले ही सुन चुकी हूँ।
0: ये जानम्मा उसी डिस्पेंसरी की नई आया है और इसी के साथ नया कंपाउंडर भी रखा है, अल्लाह बख्श।
1: अच्छा अच्छा
0: फिर दोनों ही जान लड़ाकर काम करते हैं। ये नए लोग पुराने लोगों से ज्यादा वफादार हैं। अस्पताल के मरीजों की सारी भीड़ को ये दोनों ही संभालते हैं।
1: तुम्हारे मामा जी का क्या हाल है, तुम्हारी नई डिस्पेंसरी से बड़े खुश हो?
0: खुश तो है उमा पर बेचारे हृदय रोग से पीड़ित हैं, दिन पर दिन निर्जीव से होते जा रहे हैं और फिर दूसरे मरीजों के साथ उन्हें भी संभालना होता है और यहाँ की कमी कमजोरियों को तो तुम जानती हो।
1: भारती तुम सचमुच बड़ी ग्रेट हो, वरना इस मनहूस देहात में बिना किसी सुविधा सहूलियत के कैसे रह पाती?
0: इतना बड़ा काम संभालना तुम्हारा ही हौसला है,
1: ऐसे मनहूस देहात मत कहो माँ।
0: तो ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसकी कर्जदार हूँ, इस भूमि की सेवा से मुझे हौसला मिला है।
1: बस तुम जैसे तीन चार पागल जने और मिल जाए।
0: अच्छा ये सब रहने दो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पति महोदय क्या कर रहे हैं?
1: मैं आराम से वक्त काट रही हूँ।
0: अरे उमा ये क्या कह रही हो, विदेश जाकर पढ़ाई है? और
1: मैं कहाँ पढ़ी थी, उन्होंने ही पढ़ा था, प्रशिक्षण पाया था, मैं सिर्फ साथ देने गई थी, डिग्री ले आई।
0: बस डिग्री ले आई हूँ, ऐसे डेंग मारने भर से कोई फायदा नहीं है।
1: क्या बताऊं भारती, मेरे ससुराल वालों को भी मेरी पढ़ाई व नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है।
0: उमा पहले तुम्हारा तो अपना एक इरादा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। अगर तुम्हें पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं है तो सेवा भाव से ही तुम्हें इसमें लग जाना चाहिए था।
1: लेकिन मेरे पति भी ये चाहते हो तब तो
0: ये बात है। डॉक्टर रतनगिरी की ये मानसिकता, सचमुच वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे पतिदेव डॉक्टर रतनगिरी आजकल क्या कर रहे हैं?
1: अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए हैं, मद्रास में बहुत बड़ा नर्सिंग होम बनवा लिया है, खूब प्रैक्टिस चल रही है।
0: तुम्हारी बात में एक छोटा सा सुधार है।
1: वो क्या?
0: बनवा नहीं लिया है, तुम्हारे पिताजी ने बना कर दिया है।
1: तुम आकर देखोगी तो दंग रह जाओगी, कितनी नई नई मशीनें औजार साधन सामग्रियां हैं, इतना सजाया दजाया गया है कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है।
0: क्यों ना हो, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है ना,
1: अक्सर विदेश घुमाते हैं, हृदय रोग चिकित्सा संबंधी विश्व विशेषज्ञों की परिषदों सभाओं व बैठकों में भाषण देने जाते हैं।

0: बड़ा नाम है उनका। हाँ हाँ जाना ही चाहिए। तुम साथ नहीं जाती? अच्छा क्या आजकल भी गए हुए? तुम नहीं गई?
1: मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ।
0: अरे कॉन्ग्रेचुलेशन सुमा, मेरी प्यारी उमा माँ बनने वाली है।
1: चुप है ना, कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा। घर में चलो ना, नाश्ता करके जाना।
0: नहीं उमा प्लीज, देखो पहली बात तो यह है कि मैं डिलीवरी केस अटेंड करके आई हूँ, अब सब लोग छुआछूत मानेंगे, अंदर नहीं आने देंगे। और दूसरी बात, तुम्हारे पतिदेव के आने के बाद ही आऊंगी, नव दंपति को एक साथ देखना ही अच्छा है।
1: श्योर? जरूर आना, मेरी शादी में तो बहाना बनाकर चली गई थी।
0: अरे अब क्या बहाना बनाना है, जरूर आऊंगी उमा, जरूर आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ।
1: ओके बाय बाय।

0: बाप रे बाप, बारिश तेज होती जा रही है। डिस्पेंसरी के बंद होने के बाद इसको भी बंद हो जाना चाहिए।
1: क्यों कंपाउंडर साहब, अब तक घर नहीं गया?
0: कैसे जाएं डॉक्टर साहब। आप रोज बरोज रहम धर्म की कमाई ज्यादा हासिल कर लेती हैं, लिहाजा बरसात भी ज्यादा होती है।
1: आप भी खूब है, आपको हर बात में मजाक सूझता है।
2: अरे वो तो कोई लड़की दौड़ी आ रही है।
3: हाँ, अरे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी है।
1: बारिश में भीगती हुई दौड़ी चली आ रही है, कहीं तो मुसीबत तो नहीं खड़ी हो गई?
3: अरे अरे, ये तो हमारी ग्राम सेविका शकुंतला है।
1: शकुंतला, क्या बात है बताओ।
4: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मुझे बचाइए, मेरा जीवन बर्बाद करके।
3: अरे अरे, ये तो बेहोश हो गई। भाई इसकी तो साड़ी भी फटी हुई है, लगता है किसी ने इसके साथ ज्यादती की है।
1: पहले इस लड़की को अस्पताल के भीतर ले चलो, जल्दी करो।
3: चल चल कंपाउंडर,
1: वो बस ले आओ जल्दी से।
5: बेटी, इस लड़की को पनाह देने से तुम खामखा झंझट मोल लोगी।
1: मामा जी, मैं इसको सिर्फ पनाह ही नहीं दे रही हूँ, इसे बर्बाद करने वाले को सजा भी दिलाकर छोड़ूंगी।
5: भगवान के लिए चुप रहो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: मुझे किसी का डर नहीं है।
5: बेटी, कभी कभी सच्चाई को झूठ के सामने चुप हो जाना पड़ता है।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, सच्चाई की जबान साफ सुथरी और नेक होती है। वह दूसरी है कि वो देर में खुलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि झूठ के आगे सच्चाई गूंगी हो गई है।
5: लगता है इसके साथ
1: बड़ी भयावह स्थिति हुई है। ये बेचारी पड़ोस के गाँव से लौट रही थी, बीच रास्ते में तीन चार गुंडों ने इसे घेर लिया और उठाकर ले गए।
5: आगे मत कहो, प्राणों में एक आग सी लग जाती है, दिल दहल उठता है।
1: मामा जी, आपने दवा खाई थी, कल से आपका दिल दर्द कर रहा था ना, अब कैसे आप?
5: अब ठीक हूँ बिटिया, मैं काफी सावधानी बरतता हूँ।
1: मामा जी, अन्याय को आखिर मात खानी ही पड़ेगी।
5: भारती, तुम लड़की हो फिर अकेली भी हो।
1: मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा साथ देने वाला बड़ा शक्तिशाली है, वो है भगवान, और फिर मेरी चेतना भी मेरे साथ है, आप भी तो हैं। इतना ही नहीं मामा जी, गांव के गरीब लोग भी मेरे साथ हैं।
5: सुनने में तो सब अच्छा है, पर हकीकत यह है कि पूंजी और प्रभाव के धनी लोगों के सामने हम तिनके के बराबर हैं। मैं कहता हूँ ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: क्यों नहीं है? डॉक्टर की हैसियत से मैं गवाह हूँ, मैंने उसका इलाज किया है।
5: ये न भूलो कि तुम मर्द नहीं हो।
1: काश मैं मर्द होती।
6: डॉक्टर अम्मा!
1: कोई दरवाजा खटखटा रहा है,
6: डॉक्टर अम्मा!
1: देखती हूँ कौन है।
5: रात के 10 बज चुके हैं।
6: डॉक्टर अम्मा,
1: अरे नानी, तुम क्या बात है, इतनी बेचैन क्यों हो?
6: मुझे माफ कर दीजिए, अभी मेरे साथ चलिए, मेरी छोटी बहन की जान बचाइए। डॉक्टर अम्मा, आपको बहुत पुण्य होगा, दया कीजिए।
1: तुम्हारी बहन को अचानक क्या हो गया है?
6: आपके पैरों पड़ती हूँ, बाहर बैलगाड़ी तैयार खड़ी है, मेरी बहन प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, आप चलकर नहीं देखेंगे तो वो बचेगी नहीं, बहुत नाजुक हालत है, जल्दी चलिए माई जी।
1: लगता है बहुत सीरियस केस है। मामा जी, मैं अभी आती हूँ, एक सीरियस केस है।
5: जानम्मा, अल्लाह बख्श को भी साथ लेती जाना।
6: उनकी जरूरत नहीं है, मैं खुद नर्स हूँ, मैं संभाल लूंगी। आई डॉक्टर अम्मा,
1: जल्दी चलो।

0: नागमणि, ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि घर नजदीक ही है।
1: चुप रहो, बकझक करने की कोई जरूरत नहीं है।
0: क्या कहा?
1: मुझे डराती हो?
0: तब तो तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है। नागमणि, ऐसा क्यों किया तुमने?
1: जल्दी ही सब मालूम हो जाएगा।
0: छी, हंसती है, मक्कार कहीं की। ए, गाड़ी रोको। अरे रोकता है कि नहीं रोकता?
2: ए नागमणी, धमकाती है, जानती है हम कौन है?
1: बेचारी डर जाएगी। आप इस तरह मत हंसिए, बता दीजिए कौन है।
2: अरे हम हैं, हम इस गांव के बड़े रईस कुमार सानी।
0: अच्छा, वो बहुत बड़े रईस ज़ादे आप ही हैं?
2: क्या कहा?
0: यही कि गांव की बेसहारा लड़कियों को बर्बाद करने वाले सूरमा आप ही हैं। एक को पकड़ने के लिए आपने गुंडों को भेजा, अब मुझे पकड़ने इस औरत जात को भेजा है। शर्म नहीं आई आपको?
2: डॉक्टर ने ज्यादा उछल कूद मत कर, हम गांव के बाहर आ गए हैं। ये देख, सामने नाला बह रहा है।
0: ये धमकी सब किस लिए दे रहे हैं आप?
2: तू पुलिस केस कराने वाली है ना, उससे बाज आ जा बस।
0: शकुंतला पर किए जुल्म की बात कर रहे हैं आप?
2: हाँ वही, और अगर तू बाज नहीं आएगी ना, तो समझ ले उस लड़की जैसी हालत तेरी भी होगी।
0: इससे पहले ही मेरे हाथ करारा जवाब दे देंगे।
2: अरे इस नाले में बहा दी जाएगी।
0: नाले के पास ही अगर मेरे रक्षक छिपे हुए हो तो? अरे कोई है? अरे बचाओ, अरे भागिए भागिए मालिक, ऐसा ना हो कहीं लेने के तेरे। कायर कहेंगे, छूट मूट का शोर मचाते ही भाग गए, अपनी गाड़ी तक ले जाने का होश नहीं रहा।
3: अभी आपने सुना नाटक कंटीला रास्ता का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रूपांतर था। रूपांतरकार ए शौर्य राजन और इसके निर्देशक थे वीपी दीक्षित बटुक। यह हमारे केंद्रीय नाट्य एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल इसी कार्यक्रम में दिन में 3:30 बजे। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
7: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
6: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: Sound, camera, action.
1: नमस्कार श्रोताओं,

बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने।

0: अब तक लिखे हैं और भी न जाने कितना काम इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने किया है, तो आज उन्हीं से जानेंगे उनकी दुनिया का सफर। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
1: मंदाकिनी जी नमस्कार, मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
0: तो सबसे पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
1: मंदाकिनी जी हुआ ये कि हर आदमी अपने बचपन से प्रेरित होता है किसी भी काम के लिए। तो मैं गांव में रहता था, पलवल के पास मेरा गांव है, वहां हमारे एक चाचा थे, वो हमेशा ट्रांजिस्टर बगल में लटका के रहते थे। बिना ट्रांजिस्टर उनको आप देख ही नहीं सकते कभी। तो वहां गाने बजते थे, जब आता था अनाउंसमेंट कि आप अब शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत सुनिए, तो मुझे वो साउंड जो है ना ऐसा लगता था कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊं कि मेरा भी ऐसे नाम आए कि अब आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ गीत सुनिए। तो ये प्रेरणा स्रोत बना मेरा आपका ये माध्यम, और मैं वहां से सफर तय करने के मतलब तैयारी में मुंबई तक आया।
0: ये 1973 में, 1973
1: में
0: हरियाणा से मुंबई आ गए?
1: नहीं, मैं हरियाणा से दिल्ली में था।
0: हाँ।
1: दिल्ली से मुंबई आया।
0: अच्छा।
1: मेरे पिताजी दिल्ली में टीचर थे, तो मैं दिल्ली में ही रहता था, और वहां से मैं यहाँ आया। और यहाँ आने की भी एक अलग कहानी है, मैं कोई सोच समझ के नहीं आया, मतलब मुझे आना था ऐसा मेरे मन में था, लेकिन कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा इसकी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं थे और आने का कोई सोर्स भी नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं विजय त्यागी
0: जी,
1: वो धर्म जी के फैन थे, तो उसने बोला यार मुझे तो धर्मेंद्र बनना है, तो उसने बॉडी वॉडी भी अच्छी बनाई।
0: अच्छा।
1: थी उसका आने का प्रोग्राम बना और मेरे को बोले कि चल तू भी चल, और मैं उनके साथ आ गया, और यहाँ बम्बई में बम्बई का होके रह गया। मैं पहली बार जब यहाँ आया देहरादून ट्रेन से उतरा, देहरादून एक्सप्रेस दादर, तो मेरे साथ मतलब पहली घटना ऐसी हुई कि हम तीन थे, एक जो तीसरा था वो हमारा गाइड था।
0: अच्छा, तीन दोस्त आए थे?
1: तीन दोस्त आए।
0: हाँ।
1: थे मेरे दोस्त का वो दोस्त था।
0: अच्छा।
1: तो उसने बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत बड़ी जगह है, और उस जगह पे ये नहीं जा सकता।
0: कौन? आप?
1: सुधाकर।
0: अच्छा।
1: बोला ये तो शक्ल से ही चोर लगता है, तो वहां कुछ हो गया तो।
0: अरे।
1: तो मैं दादर स्टेशन प्लेटफार्म पे रात को सोया, ये लोग दोनों चले गए।
0: अच्छा।
1: मैंने कहा भाई आप तो जाइए फिर मैं रुकता हूँ। तो ये एक कार्यक्रम इस तरीके से बम्बई में मेरी पहली रात
0: हुई,
1: ओपनिंग हुई दादर एक नंबर प्लेटफार्म के बेंच पे सोया। कभी कभी उस जगह पे जाके मैं खड़ा होता हूँ अभी।
0: उस पल को महसूस करते हो जब आपको ऐसा किसी ने कहा था?
1: याद आता है वो।
0: जी, तो जब आपने कहा कि आप दिल्ली से यहाँ आए, तो क्या आप मुंबई गीतकार बनने ही आए थे या कुछ और विचार लेकर भी आए?
1: नहीं, मैं सिर्फ गीतकार बनने ही आया था, और मैं उस वक्त जो है ना बहुत बड़ा फैन था शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब का और शंकर जयकिशन का।
0: अच्छा।
1: लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मैं इन लोगों से कैसे मिलूं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ दिनों बाद मेरे वो दोनों दोस्त भी चले गए, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कुछ ना कुछ करूंगा। इससे पहले रूटीन ये चल रहा था कि ये लोग घूमते थे, मेरे को ले लेते थे दिन में, और रात को वहां खाना खिला के छोड़ देते थे।
0: अच्छा।
1: पूरा खर्चा वही लोग करते थे। लेकिन फिर जब ये जाने लगे तो मैं रुक गया, और मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना है। ये 4-5 महीने के बाद मैंने एक जगह नौकरी की ग्रैंड रोड पे, और वहां उस नौकरी के मेरा ये था कि कुछ 4-5 बाल्टी पानी नीचे से सेकंड फ्लोर पे उनको पहुंचानी होती थी भर के, और उसके बदले में वो टेरिस पे मुझे सोने की जगह देते थे।
0: कोई पैसा नहीं देते थे?
1: नहीं, पैसा नहीं देते थे। फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ और, भाई ये चाय ले आओ, फलाना डालो, ये लेटर डालो, और कुछ पैसे भी देने लगे। तो वहां काफी मेरा कुछ 1-1.5 साल लगा इस तरह से, मुझे फिल्म लाइन का कोई रास्ता ही नहीं मिला।
0: अच्छा, मतलब 1-1.5 साल लगभग आप यही काम करते
1: थे? यही काम करते,
0: ये संघर्ष जो,
1: अब इसको आप संघर्ष कहें या कुछ भी कहें, उस मंजिल तक ही नहीं मैं मुड़ा जहाँ के लिए आया था।
0: हाँ।
1: अब वो ही रोज उसमें चलता रहा, तो वहां पे मुझे 2-2.5 रुपए रोज के मिलते थे। तो वहां पे एक मुस्लिम होटल था जहाँ बड़ी रोटी मिलती थी, दाल फ्री।

0: होती थी, तो
1: अच्छा
0: एक टाइम हम आराम से खा लेते थे, कोई टेंशन
1: इतना
0: नहीं था,
1: पैसा मिल जाता था
0: इतना
1: आपको।
0: पैसा मिल जाता था। तो वहां उस कंपनी में एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम क्या बनने आए हो। मैंने कहा यार बनने तो बहुत कुछ आया लेकिन कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ तो काम ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और मैं उनके साथ गया और वो मुझे शंकर जी के म्यूजिक रूम में लेके गए।
1: अच्छा।
0: और तब तक जय भाई तो नहीं रहे थे, शंकर जी थे। और वहाँ जब मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं बता नहीं सकता उस पल की खुशी कि शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, वही शंकर जयकिशन का रूम, वही शंकर जी, वही उनके स्टूडियो, तो मेरे लिए तो ऐसा था मैं जन्नत में आ गया,
1: जी, सपने देखने जैसा।
0: सपने देखने जैसा। और यहां से इस पल से मेरे सपने साकार होने शुरू हुए फिल्म लाइन के।
1: तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: मैं मेरे उस्ताद जी का एक गाना सुनना
1: जी
0: चाहता हूँ,
1: बताइए।
0: और वो गाना है बहारो फूल बरसाओ मेरा
1: मेरा
0: महबूब।
1: महबूब।

0: माता पिता से बात होती रही क्या? उन्होंने पूछा? और वो जो दोस्त आपको छोड़कर फिर चले गए, आप कह रहे हैं मुंबई, क्या उनसे भी कभी सामना हुआ?
1: हाँ वो हुआ, सब कुछ हुआ। वो भी मेरी खैर खबर लेते रहते थे।
0: हाँ।
1: और माता पिता तो लेंगे ही लेंगे, तो मैंने उनको एक, अपने माता पिता को एक थोड़ा सा झूठ बोला था कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई है, मैं यहीं रहूंगा और मुझे यहीं कुछ करना है। और उनको ये अंदेशा तो था कि फिल्म लाइन में कुछ करेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बात करी कि भाई अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बम्बई में ही हो सकता है तो ठीक है आप करो, और जो भी आप कमा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान मत होना। जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहां से हम लोग बात कर सकते थे।
0: कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मैं, मुझे कुछ करना है तो करना ही है।
1: जी जी जी।
0: तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो में ले गए, जहाँ शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया या
1: नहीं,
0: आप
1: नहीं,
0: शंकर
1: नहीं।
0: जी के सानिध्य में रहे? कैसे?
1: बस
0: क्या?
1: उनके सानिध्य में मैं उनके रूम में काम करता रहा, झाड़ू कटका पोछा जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा।
0: अच्छा।
1: तो मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहां पे सब खाने पीने की बड़ी मौज थी। आपको जो खाना है कैंटीन में खाओ, खाली सिग्नेचर कर दो तो कोई परेशानी नहीं थी, और सोने की कोई परेशानी नहीं थी। तो मैं जो है वहां पे काफी समय तक रहा, और एक दिन शंकर जी ने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ हर आदमी एक सपना लेके आता है, तो तेरा क्या सपना है? तो मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सुनाओ कुछ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनके सामने मेरे से कुछ सुनाया ना गया। मैं बोला क्या सुनाऊं, एक होता है ना अभी अचानक उन्होंने बोल दिया।
0: तो क्या तब तक आपने कुछ गीत लिख लिए थे, कुछ
1: लगभग
0: 200-250
1: गीत मैंने लिखे थे।
0: अच्छा।
1: गीत तो रोज लिखता था। लेकिन अब शंकर जी जैसी पर्सनैलिटी सामने हो तो सिट्टी भिट्टी गुम सुनाए क्या?
0: बिल्कुल।
1: वो भी समझ गए, और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुझे पहली बार मिलाया।
0: अच्छा।
1: और कहा कि हसरत मियां ये लड़का सोचता बहुत अच्छा है, इसको लिखना सिखाओ।
0: अच्छा।
1: ये उनके वर्ड थे।
0: तो ये किस वर्ष की बात होगी लगभग?
1: ये तो मतलब मेरा होते होते लगभग 78 की बात है, मतलब काफी समय हो गया है। इन बिटवीन मैं यहाँ आता था बम्बई, सबके घर देखता था, सब चारों तरफ ये बंगला दिलीप कुमार का है, ये फलाने का, ये सब देखते थे। उन बंगलों को देख देख के ही खुशी होती थी, उनसे मिल तो नहीं पाते थे लेकिन बस घर देख लेते थे तो उसमें खुश हो जाते,
0: ऊर्जा आ जाती थी।
1: हाँ, लगता था
0: मिलता था,
1: मोटिवेशन होता
0: कि
1: था
0: कभी हमारा भी ऐसा
1: कि
0: घर
1: कभी
0: होगा।
1: हमारा भी होगा। दिलीप साहब के घर के सामने ना, जैसे आज अमित जी के घर के सामने भीड़ लगती है, उन दिनों दिलीप साहब के घर के सामने भीड़ लगती थी। कुछ लोग आते थे हमेशा, वहां का एक अलग ही चलन था। वहां एक चाय वाला आता था, सबको चाय पिला के चला जाता था और पैसे नहीं लेता था।
0: अच्छा।
1: अब वो पैसे
0: कौन
1: कौन देता था वो, या वो क्यों नहीं लेता था ये मुझे नहीं पता।
0: मतलब दीवानगी होगी दिलीप कुमार साहब
1: हो
0: के
1: सकता
0: प्रति
1: है,
0: ना, इस
1: हो
0: दीवानगी
1: सकता है
0: में भी लोग कितना काम कर जाते
1: करते
0: हैं।
1: हैं। तो दिलीप साहब आते थे बालकोनी में, हाथ हिलाते थे, बस इतना ही था। लेकिन मैं अक्सर जो है ना, हम लोग वो चाय पीने के लालच में ज्यादा जाते थे क्योंकि
0: जी
1: भूख प्यास भी होती है ना आदमी को। तो वो दौर पाली हिल का मुझे याद है अभी तक, कैसे वहां पे जाते थे। जब हसरत साहब ने मुझे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ खार, आप वहां आइए, तो मैंने वहां उनके पास जाना शुरू किया। और पहले पहले तो क्या ऐसी बातें होती रहीं उनसे बातचीत में, वो मुझसे बात करते रहे, पूछते रहे सब कुछ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हसरत साहब एक फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आए। उन्होंने वाकई में मुझे लिखना सिखाया। मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो सब बकवास है, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँ जितना अच्छा हसरत साहब लिखते थे।
0: जी, खैर ये तो
1: कहीं
0: आप...
1: ना कहीं मुझे एक रहता है, और शायद यही मलाल मुझे जिंदा रखे हुए है, शायद कभी कुछ ऐसा लिख पाऊं
0: जो हसरत साहब जैसा होगा,
1: उनके जैसा हो सकता है
0: जी,
1: लेकिन उनसे बढ़िया नहीं हो सकता।
0: ये एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है किसी कलाकार की कि मैं उन जैसा बन जाऊं, क्योंकि आपने उनको अपना उस्ताद माना हसरत
1: जी
0: साहब
1: जी
0: को।
1: जी बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कड़वी सच्चाइयों को सुनकर, है ना सुधाकर जी। तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
1: जी
0: गीत सुन लेते हैं पहले।
1: जी एक गीत मैं आपको ऐसा सुनाना चाहता हूं कि जिस गीत की बहुत अहमियत है मेरी जिंदगी में, और वो गीत है परदेसी बाबू का।
0: जी
1: क्या है प्यार बताओ ना।

0: सुधाकर जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना। आप ही का लिखा वही गीत था?
1: जी, मेरा ही लिखा हुआ।
0: अब अभी मैं ये आपसे तो नहीं पूछना चाह रही हूँ कि ये गीत आपने कैसे लिखा, लेकिन
1: नहीं, आप जरूर पूछिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे।
0: अच्छा, ये बताना चाहते हैं?
1: जी जी,
0: बताइए।
1: क्योंकि ये मेरे कैरियर का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गीत था। इससे पहले लगभग मेरे 240-245 गाने रिकॉर्ड हुए, जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ किए, लेकिन कोई गाना मेरा बाहर नहीं आया।
0: अरे, इतने सारे गाने करने के बाद भी?
1: हाँ, और नहीं आया। तो मुझे ये मिला ऐसे कि मुझे आनंद राज आनंद जी मेरे मित्र थे, और उनके साथ मेरा काफी आना जाना था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था यार मेरे से भी कुछ लिखवा लो। ये गीत मिलने से पहले मैं एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर हो चुका था
0: फिल्मों की,
1: लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं। तो लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे बुलाया, तो मेरे पास उस वक्त 2-व्हीलर था और बारिश हो रही थी, और उस बारिश में ये था कि 50 रुपए मैंने अपनी मिसेज को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ, वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया। और सहारा स्टूडियो में आया तो वहाँ पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला। उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा। और ये गीत लिखा और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और गीत नहीं आए, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के, पहली बार इतने पैसे मिले मुझे।
0: तो हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया के, वो ये था?
1: नहीं,
0: वो कोई और था। जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है।
1: जी, तो। जी जी जी
0: तो

0: जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई,
1: अच्छा
0: और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे,
1: अच्छा
0: वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफ़ी मतलब मुलाकातें रहीं। और हजरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे।
1: अच्छा
0: वो कहते थे ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो, तो मैं बोलता था मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहाँ से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ, मतलब मेरे ही गीत को वो सुधारते थे। वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया, वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफ़र एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को पाली हिल पे घूम रहा था, और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब आना जाना मेरा लगा हुआ था, लेकिन ये मैंने एक झोपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में, और मेरी तब तक शादी भी हो गई थी, तो हम लोग मियाँ बीबी रहते ही थे वहाँ पे। तो वहाँ मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई।
1: अच्छा
0: तो मारुति साहब जो ना, वो रात का समय था और अपने बरांडे में टहल रहे थे, तो मैंने उनको पहली बार टहलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे बातचीत की, और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ, तो मैंने उनको सुना दिया, तो बोले कि तुम कल आओ। तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा, तो उन्होंने कहा बेटा ये गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो। मैंने कहा जी वो क्या होता है, बोले कल आओ हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया, और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला, और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले,
1: अरे वाह।
0: मारुति साहब मुझे वहाँ लेके गए, और वहाँ उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया
1: अच्छा
0: जी, और मैं किशोरदा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया।
1: क्या बात है। तब तो किशोरदा तो गाने गा ही रहे थे, बहुत
0: वो
1: शानदार
0: तो
1: और लेजेंड से थे
0: उनका
1: वो
0: तो
1: तो।
0: क्या कहना
1: बहुत सुंदर। आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी।
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: तो मंदाग्नि जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए
1: चलिए सुनते हैं आपकी
0: जी।
1: पसंद का ये गीत।

0: तो मतलब इतना संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ राहत की सांस आपको तब मिली जब आप किशोरदा से जुड़े।
1: किशोरदा के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
0: हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा था किशोर कुमार के साथ आपका।
1: जी, जी जी।
0: तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किस तरह से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान?
1: जी जी, मैं किशोरदा के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहाँ सीखना ही सीखना था। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए वो सब मैंने वहीं से सीखा। बहुत बहुत। और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी बोलता हूँ। उस घर के बहुत बड़े एहसान है मेरे ऊपर। वहां जाने के बाद ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, और उसी घर से मुझे पहली डायरेक्शन की पिक्चर भी मिली। वो भी शायद इसी कारण मिली कि मैं उनका असिस्टेंट था, तो प्रोड्यूसर ने फेथ किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और पहली फिल्म की डायरेक्शन मुझे वहीं से मिली।
0: जी, तो वो कौन सी फिल्म थी?
1: वो फिल्म थी गोरी।
0: गोरी।
1: और मेरे ये उसी दोस्त ने बनाई थी जो मुझे बंबई लेके आया था।
0: अच्छा।
1: विजय त्यागी।
0: विजय त्यागी।
1: उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे, तो एक दिन बोले चल यार कोई और नहीं तो मैं फिल्म बनाता हूँ, और मुझे उन्होंने डायरेक्टर लिया। और इसमें किशोरदा ने भी गाना गाया। और इस पिक्चर को करने के लिए मैं शंकर जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि शंकर जी मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें म्यूजिक दें। तो उन्होंने कुछ इतना पहचाना नहीं क्योंकि फासला काफी हो चुका था।
0: हाँ।
1: तो मैंने उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। तो बोले अच्छा, जो कल तक हमारे यहाँ नौकरी करता था आज हमको नौकरी पे रखने आया है।
0: अरे।
1: मैंने कहा जी नहीं, मैं कल भी नौकर था आज भी नौकर हूँ, मैं कल भी आपको मालिक समझता था आज भी है, बस ये फिल्म आप करेंगे तो मेरा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे लाए हो? अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ये पूछें कि लोगे कितना, कैसे करोगे, ये सब बातें तो हुई नहीं। उन्होंने पूछ लिया कितने लाए हो, तो हमने उनको कहा कि 21,000 हैं शगुन के, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि टोटल इतने ही है। तो हम डरे हुए बहुत थे। तो उन्होंने कहा 1 रुपया और रखो इस पे। तो 1 रुपया रखा, उन दिनों कागज का चलता था। उन्होंने 21 छोड़ के 1 रुपया उठा के हमारी पिक्चर का, इसी में पूरी पिक्चर करूंगा।
0: अरे क्या बात है।
1: और उसी में उन्होंने की।
0: ये होते हैं महान संगीतकार। और उन्होंने समझा आपकी परिस्थिति को, और बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद

0: जाऊं, क्योंकि लोग, मैं डायरेक्टर बन गया, दो तीन पिक्चरें मैंने कर ली लेकिन चला नहीं, तो अब शर्मिंदगी भी थी कि मैं काम कहाँ जाऊं। तो मैं हिमेश जी के साथ जो ना, उनके जितने सीरियल थे उनके सबके टाइटल मैंने ही लिखे।
1: अच्छा
0: हाँ, उनके
1: हाँ
0: लगभग उन्होंने 40-45 कुछ ऐसे सीरियल उनके थे, लेकिन सबके मैं गाने मैंने लिखे। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ ज्वाइंट किया। हमारा उम्र में बहुत फर्क था,
1: जी
0: तो एक दिन हिमेश जी बोले कि सर वो क्या है। मैंने कहा भाई तुम मुझे सर बोलो, मैं तुमको सर बोलूं, बस इसी में कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये सलमान भाई ने ये गाना हिमेश जी को दिया लिखने के लिए, प्यार किया तो डरना क्या
1: डरना
0: का
1: क्या।
0: टाइटल सॉन्ग था,
1: जी जी
0: और हिमेश जी ने ये गाना मुझे
1: आपको
0: दिया।
1: दिया। हाँ
0: और उन्होंने कहा कि सर ये पिक्चर अगर हमको मिली मिली है, अगर ये गाना आप लिखोगे तो गाना सुपर डुपर हिट होगा और ऐसा होगा वैसा होगा।
1: तो
0: अब
1: हिमेश जी की ये पहली फिल्म थी।
0: पहली फिल्म थी उनकी, ये पहली फिल्म थी। तो मैंने कहा भाई लिख देंगे, लेकिन एक सवाल है हिमेश इसमें कि प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि जितनी उन्होंने अच्छी लिखी होंगी वो तो सब आ गई, तो हम लोग फंस जाएंगे यार। बोले नहीं नहीं सर, लेकिन वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टाइटल ही वो है। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। तो उस गाने को हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली
1: ठीक है।
0: और कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे,
1: हाँ
0: इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, सेकंड लाइन आप लिखो ही मत, बस इसको हुक लाइन रखेंगे।
1: अच्छा
0: तो फिर मैंने लिखा तेरे प्यार में डूब गए हम खुद को ही, वो जैसा
1: हाँ
0: वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
1: तेरे
0: की,
1: नाम की।
0: और वो ऐसे नाम की चुनरिया ओढ़ी के उसके बाद फिर ये गाना गुलशन जी ने सुना, तो उन्होंने कहा कि एक गाना इस टीम का और ले लो। फिर हमको वो एक गाना मिला और वो गाना था तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके
1: क्योंकि तुम वो हटके।
0: हटके। तो ये दो गाने मेरे पहले रिलीज हुए और बहुत मजा आया। मैं और हिमेश बहुत नर्वस थे कि पता नहीं गानों का क्या होगा। तो लिबर्टी में हम लोग पिक्चर देखने गए थे,
1: हाँ
0: तो हम लोग पिक्चर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमको इंटरेस्ट था कि अपना गाना कब शुरू होता है और जैसे ही अपना गाना शुरू हुआ और लोगों ने, मैंने पैसे बरसते हुए पहली बार देखे
1: अच्छा
0: अपने गाने पे,
1: क्या बात है।
0: दोनों बहुत खुश हुए और हमें लगा कि अब हमारी लाइफ बन गई। और वाकई में उस गाने ने हमारी लाइफ बनाई।
1: बढ़िया।

0: वैसे तो इस फिल्म के संगीतकार साजिद वाजिद साहब थे,
1: इसमें जतिन ललित जी भी थे, साजिद वाजिद भी थे और हिमेश रेशमिया भी थे, दो गाने हिमेश जी
0: और गीतकार भी, अन्य गीतकार भी थे
1: इसमें, समीर साहब भी थे, एक और गीतकार थे और
0: एक आपका
1: मैं भी था। और मुझे लगा कि इतने सब बड़े बड़ों में देखो क्या होगा, लेकिन
0: पर ये गाना तो मतलब आज भी सबकी जुबान पर है और सुनते ही एक अलग किस्म की थ्रिलिंग हो जाती है। इतना खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है और हिमेश जी ने उसको संगीत में
1: बहुत सुंदर
0: है। इसमें और पिक्चराइजेशन भी बहुत सुंदर है।
1: सबसे बड़ा क्रेडिट इसमें मैं हिमेश जी को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो जो प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बना के जो मुझे बचाया सेकेंड लाइन लिखने से, ये बस ऊपर वाले ने उनके दिमाग में डाली, बहुत बारीक काम किया। और हिमेश जी जितना भी काम करते हैं वो बहुत बारीकी में करते हैं और बहुत धैर्य से करते हैं।
0: मुझे एक बात बताइए सुधाकर जी, आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि इस गीत में मैंने एक पैंतरा डाला था, मैंने हिमेश जी से कहा था कि इसमें एक पैंतरेबाजी करनी पड़ेगी,
1: जी जी।
0: तो ये पैंतरा क्या था और किस तरह से आपने इसको निभाया, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: पैंतरा क्या है कि एक्चुअल में हसरत साहब बोलते थे कि जब कभी ऐसी जगह पे फंस जाओ तो उसमें पैंतरेबाजी से काम लेना चाहिए। वो पैंतरा क्या होता है कि मतलब अब जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन मैंने नहीं लिखी, तो पैंतरा ये था कि गाने को ऐसी जगह से शुरू करो कि लोगों को ये पता ही नहीं लगे कि कहना क्या चाहते हैं। अब हम कह रहे हैं तेरे प्यार में डूब गए हैं हम, खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो, यहां से शुरू हो रहे तो उनको क्या मालूम ये क्या कहने वाले हैं। और ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, जब प्यार किया तो डरना क्या, हिमेश भाई ने इसकी ट्यून बनाई, ओ जब प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ली डरना क्या के बाद लोग खटके, तो हमने दूसरा ही रंग दे दिया, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, ये ओडली पैंतरा था।
0: बहुत सुंदर, मतलब एक बहुत बारीक काम था ये, जिसे हर एक को समझना आसान नहीं था। तो जब ये गीत आपने रिकॉर्ड किया, आपने अलका याग्निक और कुमार सानू को इस गीत में गवाया, तो क्या कोई दिक्कतें आपको पेश आई और किस तरह से गाना, क्योंकि गाना मिल तो गया लेकिन रिकॉर्ड किस स्थिति में हुआ उसकी भी कहानी होती है।
1: हाँ, ये दिक्कत तो इसमें बहुत बड़ी आई, और दिक्कत सबसे बड़ी ये आई कि हिमेश

0: जी ये चाहते थे कि ये गाना अलका याग्निक और कुमार शानू गाएं, तो चूंकि उनका ये पहला गाना था और उनका ये था कि अगर ये दोनों गाएंगे तो सुपरहिट होगा, तो दादा को लाने में मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता था, हम लोग काम कर रहे थे, तो मैं गया तो दादा को तो इतना प्रॉब्लम नहीं था। मैंने दादा को बोला दादा एक फिल्म मिली है और उसमें आपको ये गाना गाना है, तो दादा बड़ा वाकई में वो टाइगर ही हैं
1: कुमार
0: वो,
1: सानू जी
0: हाँ वो जो हैं बस वही हैं,
1: जी
0: वो कभी कुछ बनावटी बातें नहीं करते हैं उसमें। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कुछ नाराज हैं, और नाराज वाराज भी कुछ नहीं होते, उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या उनको बोलना चाहिए और क्या बोल गए। बड़े भोले और बड़े डैशिंग आदमी हैं, तो मेरे को बोले हाँ ठीक है गा दूंगा गा दूंगा। कौन है म्यूजिक डायरेक्टर? तो मैंने कहा आपने एक दो गाने सीरियल में गाए हैं उसके, हिमेश भाई का म्यूजिक है। हाँ अच्छा अच्छा वो करता है वो, करूंगा करूंगा। प्रॉब्लम आई अलका याग्निक की,
1: अच्छा
0: उनका अप्रोच नहीं हो पा रहा था। मैं जब भी उनकी बिल्डिंग पे जाता था तो वो ऊपर फोन करके पूछते थे तो वहां से मना हो जाता था, कई कारण रहे होंगे जो भी। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, तो मैंने कहा हिमेश भाई बाकी तो सब हो रहा है मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो वो मुलाकात यूं हुई कि मैंने सेम बिल्डिंग में कविता कृष्णमूर्ति रहती थी, तो मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने कहा मुझे कविता जी के घर जाना है, तो उन्होंने कविता जी के घर फोन लगाया और उन्होंने कहा भेज दो। अब मैं कविता जी के घर नहीं जाके अलका जी के घर चला गया।
1: अरे यहाँ पर आपने भी पैतरा
0: पैंतरा हो
1: खेला
0: गया।
1: जी
0: और फिर अलका जी से मेरी बात हुई, अलका जी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे गाना आपको गाना है, मुझे जानती थी, तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, मैंने उन हिमेश जी का परिचय दिया, ये सब हुआ। तो बोले कि ठीक है लेकिन अभी तो क्या है मैं थोड़ी बिजी हूँ ये है वो। मैंने कहा गाना आपको गाना है और ये गाना कल ही गाना पड़ेगा आपको, वरना ये पिक्चर हमको नहीं मिलेगी और बहुत दिनों से मेरे पास काम वाम नहीं है, तो अभी मिला है। तो बोले नहीं कल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं चुप हो गया। बोले कल नदीम श्रवण की रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं क्या गया वहाँ से निकला, और मैं निकलने से पहले वो गाना उनको कैसेट में लेके गया था, उनको सुनाया, गाना बहुत पसंद आया, तो मुझे लगा गाने के लिए तो रेडी हो गई हैं, अब ये कल नहीं गा पाएंगी क्योंकि
1: उनकी
0: उनका गाना
1: रिकॉर्डिंग
0: है।
1: है।
0: तो मैं सनी में पहुंचा, और सनी में मैं गया तो उधर वो सिटिंग रूम में नदीम और श्रवण जी दोनों बैठे थे, तो मैं बार बार ऐसे उनको झांक के ऐसे हो जाता था, अभी मैं अंदर भी कैसे जाऊं। थोड़ी देर में श्रवण भाई बाहर आए, तो मैंने श्रवण भाई को बोला कि श्रवण भाई एक मेरी छोटी सी मदद कर दो यार, मैं बहुत परेशान हूं। तो उन्होंने तुरंत जेब में हाथ डाल के पर्स निकाला,
1: अरे
0: बहुत बढ़िया इंसान थे वो। मैंने कहा भाई ये वाली मदद नहीं।
1: अच्छा
0: यार क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा ये वाली मदद नहीं, मदद ये चाहिए कि हमको एक पिक्चर मिली है और उस पिक्चर में एक गाना है, वो गाना हम अलका जी से गवाना चाहते हैं, तो अगर वो कल गाएंगी तो पिक्चर हमको मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी। हाँ तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा नहीं मैं अलका जी से बात हुई, वो आपका गाना गा रही हैं इसलिए हमारा गाना नहीं गा
1: नहीं
0: सकती।
1: गा पाएंगे।
0: तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे सामने ही अलका जी को कहा फोन करके कि ये सुधाकर जो है ये मेरा खास है, और कोई बात नहीं आप मेरा गाना 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद कभी भी गा दो, पहले इनका गा दो।
1: क्या बात है।
0: ये दिक्कत थी, लेकिन जब ये गाना एम्पायर में रिकॉर्ड हुआ और वो पल आया कि इन दोनों शहंशाहों ने गाया, और एक इसमें एक बात आ गई, मैं ये भूल गया कि मुझे ठीक से किसी ने बताया नहीं था कि इसमें काजोल हीरोइन है। तो मैंने हिमेश भाई को पूछा यार हिमेश भाई इसमें हीरोइन कौन है? तो उसने कहा सर काजोल। मैंने कहा यार गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमने कहा यार काजोल के लिए तो इसमें कोई लाइन ही नहीं है। क्या मतलब? तो मैंने कहा वो अब मैं क्या बताऊं आपको सर, ये एक बार कुमार शानू को बुलाना पड़ेगा। बोले लेकिन हुआ क्या है? मैंने कहा वो एक लाइन में काजोल के लिए लिखना चाहता हूँ, खासकर काजोल की आंखें जो है ना वो बड़ी कमाल हैं, और वो जो बातें करती है, जो जितनी
1: आंखें
0: बातें
1: बोलती
0: करती
1: हैं।
0: है सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है, और वो बात मैं कह नहीं पाया लेकिन मैं कह दूंगा। तो बोला ठीक है बुलाओ फिर आप ही बुलाओ। तो मैंने शानुदा को फोन किया, शानुदा शायद बर्थडे मना रहे थे अपना था या किसी और का मुझे याद नहीं। मैंने कहा शानुदा इधर भी एक पैंतरा चला। मैंने कहा शानुदा एक्चुअल में जो लाइन गाने में प्रोड्यूसर ने पसंद की थी वो मैं आपको लिखवाना भूल गया, और जो रिजेक्ट थी वो आपने गा दी, और ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप प्लीज आके वो लाइन सही कर दीजिए। अरे यार मैं बर्थडे में हूँ, सब चमकी उमकी पड़ी है कोर्ट पे, मेरा ये हाल है। मैंने कहा दादा गाना तभी लगेगा जब वो लाइन होगी। दादा आए।
1: अच्छा, दो लाइन के लिए भी आए?
0: एक ही लाइन थी।
1: अच्छा,
0: दो तो मैंने बोली, लाइन तो एक ही थी
1: जी।
0: और वो आए, और आते ही थोड़े से जरा प्यार में नाराजगी होती ना, हाँ यार तो बोल बोल कौन सी लाइन है, क्या है ये? हमने कहा सर ये मेरी लाइन है वो, तौबा तौबा ये आंखें करती हैं सौ सौ बातें।
1: अच्छा जी।
0: तो वो मेरे को तो हंसने लगा, बोला तेरा नाटक है, तूने अभी सोचा होगा ये। मैं कुछ बोला ही नहीं, और उन्होंने वो लाइन गाई, और वो गाने में सबसे अच्छी लाइन,
1: बहुत सुंदर थी। और काजोल की आंखें जब एकदम हाईलाइट होती हैं उस गाने में, और सलमान गाते हैं, बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर।
2: तो

0: मतलब कहने का ये हुआ सुधाकर जी कि एक गीत को बनवाने में इतनी मशक्कत आपको करनी पड़ी, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा, तो जो आज नए गीतकार आने वाले हैं उनको भी ये सबक मिलता है कि इतना आसान नहीं है कुछ नहीं करना, है ना, कि हमने लिख लिया और हम गीतकार कहला गए, उसके पीछे कितनी संघर्ष की कहानी है।
1: संघर्ष की कहानी मतलब यह होता है कि अगर चूंकि मैं डायरेक्टर रह चुका था, मैं ये सब कर चुका था, मैं लाइन में मतलब नया नहीं था ना, तो मुझे वो मालूम था कि जो ये म्यूजिक डायरेक्टर जो चाह रहे हैं अगर ये फुलफिल होगा तो गाना और खिल के आएगा, और वो चूंकि नए थे तो मैं वो सब कर सकता था। तो कभी भी कोई भी गाना सिर्फ कागज पर हिट नहीं होता है, उसके बहुत सी उसमें जो चीजें हमको डालनी होती हैं वो हम डालते हैं।
0: बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप गीत लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए गीत लिख रहे हैं, सिचुएशन क्या है।
1: हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस फिल्म का हीरो कौन है,
0: हाँ,
1: हीरोइन कौन है, ये गाना क्यों गाया जा रहा है, ये गाना गाते वक्त जो है ना इनकी सिचुएशन क्या है, और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसका मिजाज क्या है, वो किस तरह के गाने पसंद करता है, तब हम उस रंग में जा सकते हैं।
0: मतलब आपके लिए किसी किरदार और सिचुएशन को जानना बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है, तब
1: जरूरी
0: जाके शब्दों का चयन आप करेंगे। आपने एक उदाहरण दिया था कि गणेशा पर जो आपने
1: जी, जी, जी,
0: बनाई है, तो
1: जी,
0: वो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल
1: कॉन्वेंट स्कूल का है, इसलिए मैंने उसमें कर दिया कि ओ माई फ्रेंड गणेशा। अगर वो लड़का कॉन्वेंट में नहीं होता तो वो गणेशा को फ्रेंड नहीं कह सकता, और वो फ्रेंड जो ना इतना हिट हुआ कि उसकी तीनों चारों सीरीज मैंने ही लिखी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये क्या होता है कि हम किरदार क्या है हमारा, वो क्या कह रहा है, कितनी बात कर रहा है, तो उससे हमें क्लू मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं।
0: जी।
1: अभी जैसे प्यार किया तो डरना क्या में ही जब दूसरा गाना हमको मिला, तो अब वो गाना लिखना था हमको कि उसमें गाना डालना है और उसमें भैया भी होना चाहिए। तो मैं और हिमेश भाई ये थे कि यार गाना तो ठीक है, भैया क्या करेगा इसमें। तो मेरे को उन्होंने कहानी बताई कि भाई ऐसा है, अरबाज भाई वो रोल कर रहे हैं, तो वो उनकी भाई कुछ कहानी है, वो बहन को ऐसा चाहते हैं, ये प्यार करता, तो हमने कहा ठीक है। तो वो गाना हुआ तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके, तो अब झट ये तो गाना हो गया, अब भैया की एंट्री कैसे होगी।
0: हाँ हाँ
1: तो मेरे को एक जहन में बात आई कि देखिए जब कोई लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, भले वो सच्चे मन से प्यार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भाई को अगर पहली बार पता लगेगा तो और उसे उसे लगेगा कि ये मेरी बहन की तरफ बढ़ रहा है, तो वो खटकेगा जरूर।
0: जी,
1: भले बाद में उसको
0: जी,
1: पता लगे कि ये मेरी बहन की सच्चाई
0: है,
1: लेकिन पहला उसका जो
0: रिएक्शन आएगा
1: तो मेरी वो लाइन आ गई, बच के रहना प्यार में तुमको पड़ जाए ना फटके, और भैया को तू खटके।
0: हाँ, अच्छा।
1: और ये गाना कंप्लीट
0: जी,
1: हुआ
0: जी, जी।
1: ये दो गाने मेरे सुपर डुपर हिट हुए
0: जी।

0: थटके।
1: आपने ये बताया कि किसी भी गीत को लिखते समय क्या बारीक दृष्टि होनी चाहिए गीतकार की, एक संगीतकार की, तब जाकर किसी की एंट्री आना कोई इतना आसान नहीं है कि किसी भी गीत में कोई भैया आया या दादी आई या ताऊ आए, क्यों आए,
2: क्यों आए,
1: और गीतकार ने उनके लिए क्या लिखा।
2: देखिए, ये फिल्म हमराज का गाना है, साढ़े ना लाएगी ते लाइव बन जाएगी। इसकी भी कहानी बड़ी कठिन कहानी है।
1: अच्छा,
2: क्या है कि मैं इतना बड़ा राइटर नहीं हूँ जितने बड़े हमारे बुजुर्ग होते थे, और उनके सामने शायद कोई बोलता भी नहीं था, उनका लिखने का भी इतना परफेक्शन भी था जो शायद मुझ में नहीं है। मैं लेकिन एक बात की जरूर कोशिश करता हूँ कि मेरा डायरेक्टर, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर जो मुझसे चाहता है मैं उसको फुलफिल कर देता हूँ।
1: जी, ये सबसे
2: अपनी बात को रखते हुए
1: जी,
2: मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उतनी बड़ी पदवी मेरे पास नहीं मिली, और नहीं मिली तो अच्छा है क्योंकि मुझे भी अलग अलग काम करने का मजा है। कोई आदमी बोलता है मुझे ऐसा चाहिए तो मैं कोशिश करता हूँ वैसा ही दूं। तो ये जब गाना ओके हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद बात आई कि मेरे को डायरेक्टर ने सजेशन दिया कि इसमें जब सब नाच रहे तो दादी भी नाचेगी और दादी गाएगी भी।
1: अच्छा,
2: तो मेरे को थोड़ा सा फिर झटका लगा।
1: हाँ हाँ।
2: क्योंकि झटका इसलिए मुझे लगता था कि ये सारी बातें मुझे कन्वे होती थी। अभी हिमेश भाई ने ट्यून बना दी, सब कुछ हो गया, अभी अगर उनको भी बोला तो वो भी मुझे ही बोलेंगे, और मुझे ये हमेशा रहता था कि हिमेश भाई की बात अगर जो उन्होंने सोचा है अगर मैं वो नहीं दे पाया तो हिमेश भाई निकाल देंगे या प्रोड्यूसर निकाल देगा। मुझे एक डर हमेशा

0: रहता था, आज भी रहता है कि अगर मैं अच्छा काम नहीं कर पाया, अच्छे से दो मुरादें हैं, एक अच्छा काम वो जो आपको पसंद है, एक अच्छा काम वो जो दुनिया को पसंद है, तो मैं दोनों के कॉम्बिनेशन में रहता हूं कि मुझे भी लगे और दुनिया को भी लगे।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा ठीक है दादी गाएगी, लेकिन एक सिंगर और बुला लीजिए फिर। तो जसपिंदर नरूला जी को मैंने फोन किया,
1: क्या बात है,
0: और उनको बुलाया, गाना वाना लिखा हुआ नहीं था तब तक,
1: अच्छा
0: पहले सिंगर तो मिले। तो जब हो गया तो मैंने गाना लिखा उसमें। अब मैंने सोचा कि दादी जो गा रही है तो दादी क्या गाएगी, अभी ये तो लव सॉन्ग चल रहे हैं, हीरोइन हीरो की तारीफ कर रही है, हीरो हीरोइन की कर रहा है, ये कर रहा है, सब दोस्त नाच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, दादी अचानक बेचारी क्या गाएगी। तो बहुत सोचने के बाद ना मुझे एक याद आया कि जब गांव में कोई फंक्शन होता है ये सब ऐसा होता है ना, तो बुड्ढी बुड्ढी भी नाचना शुरू कर देती हैं, और वो कभी कभी तो ऐसा नाचती हैं कि जवान उसको देखना शुरू कर देते हैं, नाचना बंद कर देती हैं।
1: जी।
0: उनका अपना एक स्टाइल होता है। तो मैंने पूछा उनको कि भाई इसके दादाजी भी हैं क्या फिल्म में, और बाद में ऐसा नहीं दादा भी कुछ जवाब देगा, बोले नहीं दादा नहीं दादी।
1: जी।
0: तो अब वो जो बॉबी देओल साहब गाना गा रहे हैं गा रहे हैं गा रहे हैं, और दादी की एंट्री मैंने कराई कि वारी वारी जाऊं पुत्र तेरी इस जवानी पे, और तेरे दादा याद आए तेरी इस कहानी पे।
1: जी।
0: यहां तक तो दादी गाती है, अब लड़का क्या जवाब दे, दादी कोई रोमांटिक जवाब तो नहीं दे सकता है। तो कहता है कि दादी इस बात में दम है, पोता ना तेरा कम है, वादा है तू अगले साल पड़ पोता खिलाएगी।
1: क्या बात है।
0: और ये 10 मिनट की कहानी है, मतलब आपको अभी लिखना है, गाना चल रहा है, गाना गाया जाएगा, तो वो आपका माइंड जो है ना वो कभी भी हाइपर टेंशन में नहीं आना चाहिए। कोशिश करो कि अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, और हम वैसा काम करने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये गाना मतलब इतना बड़ा सेलिब्रेशन और दादी की एंट्री होना, ऐसे बहुत से काम जो है ना मेरी लाइफ में हुए हैं और मैं उनमें से पार भी हुआ हूँ।
1: जी।
0: गीत सुनाइए।
1: मैं आपसे यही कहने वाली थी, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म हमराज से।
0: हमराज।

0: ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਤੋ ਲਾਈਵ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਤੋ ਲਾਈਵ ਬਣ ਜਾਏਗੀ।
1: आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है युवा वर्ग को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाओं की वाणी युववाणी में। आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करती है आपकी रेडियो साथी कंचन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी श्रोता स्वस्थ होंगे और हमारे दैनिक कार्यक्रम का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। तो आइए अब बिना समय गवाए आज के खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के खास कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है। साथियों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत दिन विशेष की चर्चा के साथ करेंगे। उसके बाद आज भाव गीत के खास सेगमेंट में भावों से विभोर कर देने वाले गीतों को सुनेंगे। उसके बाद कार्यक्रम में समसामयिक की खास खबरों को सुनकर कार्यक्रम से विदा लेंगे। तो आइए अब कार्यक्रम के इस शाम शानदार की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में सुनते हैं ये सुंदर सा गीत फिल्म धड़क से। इस गीत के गायक कलाकार हैं दर्शन रावल और जुनिता गांधी। तो आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इस सुंदर से गीत को सुनते हैं।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: इस मधुर और मोहक गीत के बाद अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आज के दिन विशेष की चर्चा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज डे हर साल 27 जून को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ष 2017 में की गई थी। इसका उद्देश्य MSME क्षेत्र के महत्व को उजागर करना और आर्थिक विकास में इनके योगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। माइक्रो इंटरप्राइज बहुत छोटे स्तर पर संचालित व्यवसाय हैं, स्मॉल इंटरप्राइज सीमित पूंजी और कर्मचारियों वाले व्यवसाय हैं और मीडियम इंटरप्राइज छोटे उद्योगों से बड़े उद्योगों से छोटे व्यवसाय हैं। इसका महत्व लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। आज के समय में MSME क्षेत्र डिजिटल तकनीक, नवाचार और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसी के साथ आज के दिन विशेष की चर्चा

यही समाप्त होती है। आशा है कि श्रोताओं को नई जानकारी मिली होगी। तो आइए अब कार्यक्रम में आज के डेली ट्रिविया में आज के आकाशवाणी से जुड़े खास प्रश्न को जानते हैं। आज का प्रश्न है, आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों हमें इस प्रश्न के जवाब को भेजें, हम आपसे कार्यक्रम के अंत में इसके जवाब को साझा करेंगे। तो आइए अब कार्यक्रम में आज के खास सेगमेंट भावगीत को शुरू करते हैं, जिसमें हम ढेरों फिल्मी गीतों के साथ भावों को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज के हमारे भावगीत का विषय है आईना। जी हाँ दोस्तों, आईना। रुख से पर्दा हटा तो हुस्न बेनकाब हुआ, आईना देख कर खुद आईना लाजवाब हुआ। आइए, एक आईना एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन का हिस्सा है। हम रोज़ उसके सामने खड़े होते हैं, खुद को देखते हैं और अपने चेहरे को संवारते हैं। लेकिन आईना केवल हमारा चेहरा नहीं दिखता, वो हमारे मन की भावनाओं का भी प्रतिबिंब बन जाता है। जब मन खुश होता है तो चेहरे पर चमक दिखाई देती है, और जब मन उदास होता है तो उसकी छाया भी आईने में साफ झलक आती है। कहा जाता है कि प्रेम इंसान के जीवन का सबसे सुंदर एहसास है। जब किसी के मन में सच्चा प्रेम होता है तो उसकी आँखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती है। आईना उसके चमक को छिपा सकता है, नहीं छिपा सकता, और प्रेम को अपना आईना बना लेता है।

आईना भी रिश्ते की तरह होते हैं। यदि उनमें प्रेम, स्नेह, सम्मान और अपनापन हो तो वह चमकते रहते हैं, लेकिन यदि उसमें अहंकार, झूठ आ जाए तो उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। जीवन में कई बार लोग हमारी कमियां बताते हैं। कुछ बातें हमें अच्छी लगती है और कुछ नहीं, लेकिन हमें उन बातों से सीखकर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार आईना हमारी बाहरी कमियों को दिखाता है, उसी प्रकार अच्छे मित्र, माता पिता और हमारे गुरु हमारी गलतियों को बताकर हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जब कोई अपना अपनों से दूर होता है, तब अक्सर वह आईने में खुद को देखकर उनकी यादों में खो जाता है। कभी किसी की मुलाकात याद आती है, कभी किसी की बातें, तो कभी किसी के साथ बिताए हुए वो पल जो लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स होते हैं। आईना जितना सुंदर और साफ दिखाई देता है, उतना ही नाजुक भी होता है। एक छोटी सी ठोकर उसके 100 टुकड़े कर देती है।

आईने के 100 टुकड़े हुए तो क्या हुआ, हर टुकड़े में वही चेहरा नजर आया। प्रेम और यादों की तरह जो टूट कर भी दिल से कभी दूर नहीं। आज के समय में लोग बाहरी सुंदरता पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन मन की सुंदरता को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। यदि हमारा मन साफ है, हमारे विचार अच्छे हैं और हमारे कर्म नेक हैं, तो हमारी पहचान अपने आप बन जाती है। ऐसी सुंदरता हमेशा आईने के पीछे छिपी रहती है। आईना हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चाई कितनी महत्वपूर्ण है। वह ना तो हमारी कमियों को छिपाता है और ना ही हमारी खूबियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। वह जैसा है वैसा ही दिखाता है। शायद इसी कारण आईना केवल दीवार पर टंगा एक सामान नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक मौन साथी है। रोज दीवार पर टंगा आईना मुझे निहारता है, मेरे चेहरे के साथ साथ मेरे मन को भी पढ़ता है। मैं बदलता रहता हूँ हर दिन हर पल, पर वह चुपचाप सच का साथ निभाता है। ना कोई छल ना कोई दिखावा, आईना बस मुझसे मुझे मिलाता है।

इसी के साथ भावगीत का यह सेगमेंट यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि श्रोताओं को आज का ये खास सेगमेंट पसंद आया होगा। तो आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब समसामयिकी की चर्चा को सुनते हैं। जून 2026 में भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक से सम्मानित किया गया। फीफा ने हाल ही में नेपाल देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नए निदेशक महेश दीक्षित नियुक्त हुए हैं। भारत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी गुरुग्राम हरियाणा में करेगा। इसी के साथ समसामयिकी की जानकारी यहीं समाप्त होती है। आशा है कि श्रोताओं को आज की चर्चा पसंद आई होगी। तो आइए अब आज के कार्यक्रम में फन फैक्ट्स में कुछ खास जानते हैं। क्या आपको पता है 5 फरवरी 1952 से आकाशवाणी के तत्कालीन जयपुर केंद्र से दूरदर्शन पर संस्कृत समाचार वार्ता की शुरुआत की गई थी। और आज के हमारे डेली ट्रिविया के प्रश्न का सही जवाब है, आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण 30 अगस्त 1974 से शुरू किया गया था। तो दोस्तों, डेली ट्रिविया के ये खास सेगमेंट यहीं समाप्त होता है। तो आइए अब इस आखिरी गीत को सुनते हैं, फिल्म रेड 2 से। इस गीत के गायक कलाकार हैं जुबिन नौटियाल।

इसी के साथ कार्यक्रम का ये प्यारा सा सिलसिला यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ कि श्रोताओं को आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो साथियों, अब हम मिलेंगे आपसे शाम के 5 बजे इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपने साथी कंचन को दे विदा। नमस्कार।

अभी आप युवाओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। शाम के 5:30 हो चुके हैं, वक्त है फिल्म संगीत का।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: इस अंतराल के बाद आइए सुनते हैं सैयारा फिल्म का गीत। गायक कलाकार हैं सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

अभी आपने एआर रहमान को सुना फिल्म तेरे इश्क में, फिल्म थी तेरे इश्क में। और आइए अब सुनते हैं वरुण जैन और शिल्पा राव को फिल्म स्त्री टू में।

आकाशवाणी भागलपुर से अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। और अब कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज की सभा में अब से थोड़ी देर बाद शाम 6 बजे ग्रामीण बंधुओं का कार्यक्रम होगा, ग्राम जगत खेती गृहस्थी। इसमें आज हम श्रोताओं को पंकज कुमार सिंह की वार्ता सुनवाएंगे, हस्तचलित यंत्र का यंत्र एक विश्लेषण। साथ ही साथ किसान भाई रामकिशोर शर्मा की वार्ता भी सुनेंगे, पशुओं में खुरहा पखा रोग। शाम 7:10 पर लोकगीतों का कार्यक्रम होगा, कलाकार होंगे नवल किशोर पंडित और साथी। 7:52 पर सुरलहरी कार्यक्रम में आज हम पायल चक्रवर्ती के गाए कुछ गीत और भजन सुनवाएंगे। रात्रि 8 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। 8:15 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 9:30 पर विज्ञान भारती कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 बजे से।

श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रम और अब एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल की सभा सुबह 5:55 पर खेत खलिहान कार्यक्रम के साथ आरंभ होगी। 6:05 पर आप सुनते हैं चिंतन मनन। 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा वंदना। 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल हम आपको वैद्य विनोद कुमार गुप्ता की वार्ता सुनवाएंगे, पेट के रोगों का आयुर्वेदिक इलाज।

सात बजे से लेकर 7:55 तक आप सुनते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम में कल हम आपको राजीव कुमार झा के गाए कुछ गीत और भजन सुनवाएंगे, साथ ही साथ आप सुनेंगे हिंदी वार्ता। विषय होगा छायावादी कवि निराला की प्रगतिवादी चेतना। लेखक होंगे अमित कुमार। 9:30 पर बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम होगा बाल मंजूषा।

कल सुबह 10:30 पर लोकगीतों का कार्यक्रम होगा। इसमें कल हम आपको गोपाल भगत के गाए कुछ लोकगीत सुनवाएंगे। 10:55 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का विशेष प्रसारण आप सुन सकेंगे।

12 बजे एक और साप्ताहिक कार्यक्रम होगा विज्ञान वाणी। 12:30 पर सुर संगम कार्यक्रम में पंडित भजन सोपुरी को आप सुन सकते हैं। एक 1:30 पर लोकगीतों का कार्यक्रम होगा लोकरंग, कलाकार होंगी आशा देवी।

2:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। शाम 5 बजे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम लेकर आते हैं हम युववाणी। 6 बजे ग्रामीण बंधुओं का कार्यक्रम होगा ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर कल हम आपको नूतन कुमारी के गाए कुछ लोकगीत सुनवाएंगे और 7:25 पर कल सुरलहरी के कलाकार होंगे श्यामानंद झा। रात्रि 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा और रात्रि 10 बजे से रविवासरीय संगीत सभा का अनुप्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से करेंगे। कार्यक्रम विवरण में अभी आप हमारे केंद्र से आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं प्रस्तुत है ग्रामीण बंधुओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: स्वागत है श्रोताओं, आपका इस प्यारे कार्यक्रम में सबको आज किशन का नमस्कार।
1: आरो सबका गैरू के भी नमस्कार, आरो अपने के भी नमस्कार किशन भाई।
0: नमस्कार गैरू भाई, और सब सुनाइए क्या हाल समाचार हैं?
1: जी चलिए रहलो छौं, सब बढ़िया चली रहलो छे। आब तो देखो क्या आयो खुना तनटा झमाझम वर्षा जे छे होले, लेकिन पूरा नहीं होले, एक दिक्कत चली रहलो छे। वर्षा के समय गुजरलो जा रहलो छे आरो मानसून के कहीं कोई ठिकाने पता नहीं छे।
0: जी हल्की बारिश से थोड़ी तपिश में तो गिरावट आई, बदली भी छाई रही थे पूरे आसमान में, लेकिन खेती बाड़ी के लिए थोड़े चिंता के विषय हैं, जिसको रोहनिया बिहन भी पारना कहते हैं किसान भाई, तो उसकी तैयारी तो है, खेती बाड़ी जोत कोड़ हैं, घास भूसा उसे निकाल रहे हैं, केलोनी उलोनी चल रहा है कि हल्की भी जरा नमी हो जाए तो बिहन वहन छीटा जा सकता है। तो खैर, कृषि प्रधान देश है, किसान कुछ न कुछ कार्यों में लगे रहते हैं, कभी ये फसल तो कभी वो फसल, लेकिन इसके खेती बाड़ी के साथ साथ आवश्यकता इस बात की भी है गैरू भाई कि जो हमारे पास साधन या संसाधन हैं उसमें अब देखिए कि सभी व्यक्तियों को, सभी युवाओं को रोजगार तो मिल नहीं पाते हैं, और ख़ास करके सरकारी सेवाओं में संख्या तो बड़ी सीमित रहती है, तो वैसे व्यक्ति जिनको रोजगार नहीं मिल सके,

तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बीच कुछ परंपरागत लघु उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, कुछ बड़े पैमाने पर

0: के समय में तो सरकार हर चीज में जे छे कि ओकरा अनुदान दे छे कि अपना तो अगरबत्ती के बिजनेस शुरू करो, मोमबत्ती के बिजनेस शुरू करो, कोनो जूता के या अपना जे कपड़ा सनी के जे सामान होय छे, कोई भी कपड़ा बनाना स्त्री के पुरुष के, ओकरा सब के लिए भी सरकार जे छे कि एक निश्चित राशि कहीं 2 लाख मिले छे, कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख तक के राशि जे छे कि सरकार उपलब्ध कराबे छे जकरा से कि लघु उद्यम शुरू करलो जा सके छे और अच्छा खासा जे छे कि ओकरा से आमदनी भी होय छे।
1: बिल्कुल, ये आप जो ऋण की व्यवस्था है आप बैंकों से आसान किस्तों पर आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी तय सीमा होती है उसके अंतर्गत आपको उस ऋण को जिस व्यवसाय के लिए आप प्राप्त किए हैं उसे लौटाना पड़ता है। और ख़ास करके हम वैसे युवाओं से आग्रह करना चाहते हैं कि जो अब निजी क्षेत्र में अपना कुछ व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, पैमाना जो भी हो, तो आप एक बार जिला उद्योग केंद्र पर जो हैं वहाँ पर आप जरूर एक बार पधारिए और वहाँ पर जो संबंधित अधिकारी होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि लघु मध्यम छोटे बड़े जो भी उद्योग जो आपके क्षमता के अनुसार हैं उसकी एक बड़ी लंबी सूची होती है, वहाँ पर प्रशिक्षित व्यक्ति भी होते हैं, आपको उस दिशा में दशा निर्देश भी दे सकते हैं, आप उसे कैसे शुरू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात गैरू भाई ये है कि इस तरह के व्यवसाय यदि आप शुरू करते हैं जो परंपरागत भी हो सकते हैं, जो कृषि आधारित फसलों या अनाजों के ऊपर भी हो सकते हैं, या कृषि उद्योग में काम करने वाले और भी चीज़ें आती हैं उसमें, कोदरा, खंती, कुल्हाड़, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, इसके भी छोटे छोटे स्तर पर व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। इसमें देखिए फ़ायदा कि एक तो इसमें जो आपको आमदनी हुई, आप अपने घर में हैं, गांव में हैं, समाज में हैं, जो साधन हैं संसाधन आपको आसानी से उपलब्ध होते हैं, और साथ साथ सहयोग के लिए आप अपने घर परिवार के साथ साथ समाज के भी कुछ लोगों को, दो चार लोगों को जोड़ सकते हैं, तो इससे आपके विकास के साथ साथ समाज का भी विकास होता है या होगा, और साथ में दो चार लोगों को यदि रोजगार में आप लगाते हैं तो एक बेरोजगारी की समस्या भी कुछ हद तक धीरे धीरे दूर होगी। तो निश्चित रूप से निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी आपके पास योग्यता है, क्षमता है, साधन है, क्षेत्र हैं, वहाँ पर प्रयास करें, बट लेकिन जो है कि एक ईमानदारी से, लगन से मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
0: जी जी किशन भाई, आय खुना जे छै खां जते बढ़िया बात करलो बतेलो, आय तो अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस बीच के, और ये अवसर पर तो बढ़िया चर्चा, ये एक सार्थक चर्चा होले, और देश के अभी 8.6 करोड़ से बेसी लोग जे छै उद्यम पोर्टल पर जे छै कि उ पंजीकृत भए गेलो छै, और सरकार के तरफ से ओकरा अनुदान मिली रहलो छै, और देश के जे सकल घरेलू उत्पाद में भी 30% से बेसी योगदान है छोटो छोटो उद्योग करे वाला हमरो सब भाई बहनी के छे।
1: जी, और निश्चित रूप से कार्य कीजिएगा, सफलता मिलेगी ही, और कोई भी इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, दिन दिवस मनाए जाते हैं गैरो भाई, खास उद्देश्य होता है कि उस दिशा में लोगों में एक जागरूकता पैदा करें, उसके एक रुझान पैदा करें, उस खास दिन की जो क्या महत्वपूर्ण जो बातें हैं हो सकती है आगे पीछे
0: बताइलो जाए,
1: बिल्कुल उसके बारे में चर्चा के विषय होते हैं संगोष्ठी के माध्यम से, योजना के माध्यम से, ताकि लोग इस चीज़ को सुने, समझें, और अंतिम पायदान तक भी जो व्यक्ति खड़े हैं वहां तक योजना का लाभ हो सके। कार्यक्रम में हम लोग और बातों की चर्चा करेंगे गैरु भाई अपने श्रोताओं के साथ, हम लोग बने रहेंगे, बढ़िया सा एक देवी गीत से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
0: जी जी सुनाइए।

0: जी, लाले लाले फुलवा फुलाए मैया जगतारिण है, बहुत
1: जी
0: ही बढ़िया जे छे कि है देवी गीत। मन जे छौ कि किशन भाई, इत बढ़िया गीत सुनी के जे छे कि भक्ति भावना से भरी गेले।
1: ओतप्रोत हो जाते हैं
0: हाँ सही।
1: जी। और गैरू भाई देखिए, ये उद्योग धंधे की बात कर रहे थे, तो हमारे बीच ऐसे भी यंत्र हैं, कुछ मशीनें हैं जो कि चाहे लघु मध्यम बृहत जो भी उद्योग में हैं, काम में ये आते हैं, और इन मशीनों से चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है, खास करके उत्पादन में। तो कुछ बिजली से चलते हैं, कुछ डीजल से चलते हैं, कुछ अन्य साधनों से चलते हैं, और कोई आज भी हस्तचलित होते हैं, तो हस्तचलित भी जो एक मशीन होता है, उसका भी कैसे आप बेहतर ढंग से रख रखाव करेंगे ताकि लंबी अवधि तक आप उसकी सेवा प्राप्त कर सकें। तो इस विषय पर भी कुछ जानकारी अपने श्रोताओं को दिलवाएं गैरू
0: जी,
1: भाई।
0: वार्ताकार छके इंजीनियर पंकज कुमार
1: जी
0: सिंह जी।
1: जी हस्तचलित यंत्र का एक
0: यंत्र
1: विश्लेषण।
0: विश्लेषण।
2: किसी को अभियंत्रिकी प्रौद्योगिकी द्वारा आधुनिक कारण के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। स्थापना द्वारा फसल उत्पादन, कृषि प्रसंस्करण, कृषि में ऊर्जा प्रबंधन एवं खेती तथा ग्रामीण गृह प्रबंधन में महिलाओं द्वारा किए जा रहे अनावश्यक श्रम को कम करने हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरण विकसित किए गए हैं, जैसे नवीन रोप छिद्रक डिबलर। यह एकल कतार में अच्छी तरह तैयार खेत में बड़े या मध्यम बीजों की बुआई करने या अंतर को पूरा करने के लिए हस्तचालित उपकरण है। यह छोटे खेतों अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में सोयाबीन, अरहर तथा मक्के इत्यादि की बुआई के लिए उपयुक्त है। इस यंत्र का कार्यक्षमता 0.015 हेक्टेयर प्रति घंटा एक व्यक्ति है। अनुमानित कीमत लगभग 1,000 रुपया है। बीज बोने का चक्रीय यंत्र यानी कि रोटरी डिबलर, यह एक हस्तचालित धकेल कर चलाया जाने वाला उपकरण है, जिससे अच्छी तरह तैयार किए गए खेत में बड़े तथा मध्यम आकार के बीजों की बुआई कतारों में नियमित दूरी पर की जाती है। यह मक्का, अरहर, चने और सोयाबीन बीजों को काली या एल्यूवियल मिट्टी वाले क्षेत्र में बुआई के लिए उपयुक्त है। इस यंत्र का कार्य क्षमता 0.106 हेक्टेयर प्रति घंटा एक व्यक्ति और अनुमानित कीमत 2,500 रुपया मात्र है। धान बोने या यंत्र पैडी ड्रम सीडर, कदबा हुए खेत में धान के अंकुरित बीज बोने हेतु है। इस यंत्र का कार्य क्षमता 0.092 हेक्टेयर प्रति घंटा एक व्यक्ति और अनुमानित कीमत 4,000 रुपया मात्र है। खूंटीदार शुष्क भूमि निदाई यंत्र, यह एक हस्तचालित उपकरण है जिससे कतारबद्ध फसलें जैसे मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन तथा ज्वार में निदाई गुराई की जा सकती है, जिसमें हत्था, सोया समायोजनीय वी ब्लेड तथा खूंटी युक्त रोलर भी लगाया जाता है। मिट्टी की ऊपरी परत को खुट्टी युक्त रोलर से तोड़ा जाता है, जबकि खरपतवार को उखाड़ना तथा मिट्टी की गुराई इकाई के ब्लेड को आगे पीछे धकेल कर तथा खींच कर की जाती है। इस यंत्र का कार्य क्षमता 0.008 घंटा प्रति हेक्टर प्रति घंटा, शक्ति स्रोत एक महिला पुरुष एवं अनुमानित कीमत 1,000 रुपया मात्र है। शंकुकार निदाई यंत्र कोनो वीडर, जलमग्न खेतों में धान के पौधों की दो कतारों के बीच निदाई एवं गुराई हेतु है। इस यंत्र का कार्य क्षमता 0.01 1-2 हेक्टर प्रति घंटा और एक महिला या पुरुष, अनुमानित कीमत 1600 रुपया मात्र है। कटाई उपकरण जैसे नवीन हंसिया, इसके द्वारा घर्षण के सिद्धांत पर पौधों को काटा जाता है। इस कारण फसल कटाई बल के पारंपरिक हंसिये की तुलना में उल्लेखनीय कमी हो जाती है, जिसमें प्रहार सिद्धांत का प्रयोग होता है। इसमें दांतेदार ब्लेड, फेरेयूल तथा लकड़ी का हत्था लगाया जाता है। परिचालक की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए लकड़ी के हत्थे को घुमा दिया गया है। यह इकाई गेहूं, चावल, घास तथा पतले तने वाले फसलों की कटाई करने के लिए उपयुक्त है। इस उपकरण का कार्यक्षमता 0.015 हेक्टेयर प्रति घंटा एक व्यक्ति एवं अनुमानित कीमत 130 रुपया मात्र है। सफाई श्रेणी पृथककरण। हस्तचालित द्वि छिलनी अनाज सफाई यंत्र, यह एक बैच प्रकार का उपकरण है, जिसमें सफाई के लिए अनाज को एक निश्चित मात्रा में डाला जाता है। यह इकाई वर्तमान में अनाज सफाई करने की पारंपरिक प्रक्रिया जैसे हवा या क्षैतिज ऊर्ध्वाधर छलनियों को प्रतिस्थापित करने के लिए बनाई गई है। यह ठूंठ, भूसी, मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियों को गेहूं, चना, सोयाबीन तथा अन्य अनाजों और दलहनी फसलों से अलग करता है। इसमें एक मुख्य ढांचा ऊपरी अनाज सफाई तथा निचली अनाज श्रेणीकरण, छलनियाँ, ड्रेपर, रॉड, हत्था, शटर आदि लगाए गए हैं। इसमें 4 रस्सियों के साथ किसी ऊंचे स्थान पर बांधकर प्रचालित किया जाता है। इस इकाई में 5 से 10 किलोग्राम अनाज भरकर इकाई को हाथ से आगे पीछे हिलाकर अनाज साफ किया जाता है। इस यंत्र की कार्यक्षमता 150 से 225 किलोग्राम प्रति घंटा गेहूं, चना 200, सोयाबीन 225 और अनुमानित कीमत 4500 रुपया मात्र है। अनाज सफाई तथा श्रेणीकरण यंत्र। यह कुटीर उद्योग हेतु अधिक मात्रा में अनेक अनाजों की सफाई तथा श्रेणीकरण हेतु उपयोग में लाया जाता है। इस उपकरण को एक व्यक्ति पैदल अथवा आधा अश्वशक्ति सिंगल फेज विद्युत मोटर चालित उपकरण है, जिससे कुल मिट्टी, पत्थर, भूसा, चारा आदि अलग कर अनाज तथा दलहनों का श्रेणीकरण किया जा सकता है। इस यंत्र का कार्य क्षमता 230 से 900 किलोग्राम प्रति घंटा, शक्ति स्रोत एक व्यक्ति एवं आधा अश्वशक्ति की एकल फेज द्वि मोटर विद्युत मोटर एवं अनुमानित मशीन का अनुमानित कीमत 20,000 मात्र है। फोराई छिलाई उपकरण। नलिकाकार मक्का सेलर, यह एक हाथ से चलाया जाने वाला औजार है, जिससे छिले गए भुट्टों से मक्के के दाने निकाले जा सकते हैं। इस इकाई में कलाई युक्त पाइप की अंदरूनी परिधि में 4 ट्रेपर फिनिश लगाए गए हैं। इकाई को बांधे बाएं हाथ तथा भुट्टे को दाएं में पकड़कर इकाई में डालकर घुमाया जाता है, जिससे दाने अलग किए जा सकते हैं। यह इकाई अष्टकोणीय डिजाइन में भी उपलब्ध है। इसका कार्यक्षमता 27 किलोग्राम प्रति घंटा एक व्यक्ति एवं यंत्र अनुमानित कीमत 60 रुपये मात्र है। मूंगफली एवं अरेनी फुराई यंत्र। यह एक हस्तचालित उपकरण है, जिसमें मूंगफली तथा अरेनी की फली से दाने अलग किए जाते हैं। इस इकाई में ढांचा, हत्था, दोलन, आर्म तथा मूंगफली एवं अरेरी के लिए अलग अलग छलनियाँ हैं। मूंगफली को 5 किलोग्राम के समूह में अवतल तथा ढलवा लोहा नायलॉन सुयुक्त दोलन आर्म के बीच में फोड़ा जाता है ताकि फली से दाना अलग किया जा सके। इस यंत्र का कार्य क्षमता 40 किलोग्राम एक व्यक्ति एवं यंत्र का अनुमानित कीमत 2,500 रुपये मात्र है। आलू छिलने का यंत्र, यह एक बैच प्रकार का हस्तचालित उपकरण है जिसमें किसी भी आकार के आलू में बाहरी छिलके को उतारता है ताकि छिले आलू से अन्य प्रसंस्करण जैसे चिप्स, वेफरस आदि मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार किए जा सके। इसमें मुख्य ढांचा हत्था, घुमाने वाला ड्रम तथा खोंच, पानी अंतर्गत ऊपरी ढक्कन आदि लगाए गए हैं। इसमें 8 किलोग्राम के एक बैच छिलाई 8 मिनट में पूरी कर ली जाती है। इस यंत्र का कार्य क्षमता 50 से 60 किलोग्राम एक व्यक्ति एवं मशीन यंत्र की अनुमानित कीमत 17,000 रुपये मात्र है। आलू काटने का यंत्र, छिले हुए आलू की चकतियाँ यानी कि चिप्स तथा वेफर्स लघु स्तर पर बनाने हेतु काम आता है। इसमें 75 मिलीमीटर व्यास तक का आलू लगाया जा सकता है। इस यंत्र का कार्य क्षमता 40 से 50 किलोग्राम प्रति घंटा एक व्यक्ति एवं

0: अनुमानित कीमत 12,000 रुपये मात्र है। धन्यवाद।
1: जी, बड़ी अच्छी बातों की जानकारी दी है इंजीनियर पंकज
0: पंकज
1: कुमार
0: कुमार
1: सिंह
0: सिंह
1: ने।
0: जी ना भाई,
1: निश्चित रूप से जो स्वचालित यंत्र हैं, मशीनें हैं, उसकी अच्छी देखभाल होनी चाहिए, तभी आप लंबे समय तक उनकी सेवा ले सकते हैं। गैरू भाई,
0: जी जी किशन
1: शुभ
0: भाई,
1: लगन बड़े जोरों पर हैं, कहीं
0: बिल्कुल
1: कहीं बारात आने की तैयारी है, कहीं बारात जाने की तैयारी है, कहीं मंडप सजाया जा रहा है, कहीं शुभ लगन लगाए जा रहे हैं। बढ़िया सा विवाह गीत सुनते हैं हम लोग।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनै छिए और आनंद लै छिए।

0: choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS Level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under rupee 1 per kilometer. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
1: Nexa.
2: सुनो ना,
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है, हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: जी कुछ संदेशों को सुने, ये भी बड़े आवश्यक हैं। इससे भी संदेश मिलते हैं कि हटिया बाजार में क्या लेना है, किसकी क्या गुणवत्ता है, बहुत सारी बातों की जानकारी गैरू भाई मिलती है।
5: जी जी।
4: लेकिन देखिए शादी ब्याह के समय में एकाध गीत से काम नहीं चलेगा, लगे हाथ एक और बढ़िया सा विवाह गीत पहले सुनते हैं, फिर तब खेती बाड़ी की चर्चा हम अपने किसान भाइयों के साथ करेंगे।
5: जी जी जी, ठीक है जी।

0: गैरू भाई, अब कुछ खेती बाड़ी की भी चर्चा करें, खास
1: बिल्कुल
0: करके अभी
1: बिल्कुल
0: के समय में क्या चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे किसान भाई, साम सामी कुछ सलाह हो तो उसको, पहले मौसम के बारे में ही जरा बताएं।
1: हाँ, एकदम सही कहलो कि किसान भाई के इस सब के जानकारी रहना बहुत आवश्यक है। किसान भाई,
0: जी
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अभी जो छौ 28 जून तक
0: जी
1: जे छै कि जिला में एक
0: कल
1: दो
0: तक यानी
1: हाँ
0: जी
1: कल तक यानी स्थान जे एक दो स्थान पर जे छै गरज चमक के साथ आंधी आरो हल्का वर्षा होय के संभावना
0: संभावना
1: छै।
0: है जी।
1: और अनुमानित तापमान जे छै 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान जे रहते हो 26 से 27 सेंटीग्रेड रहे के संभावना छै।
0: जी
1: सापेक्ष आर्द्रता भोरे भोर जे छै कि 60 से 70 आरो दोपहर में 25 से 30% रहे के संभावना छै। पूर्वानुमान के अवधि में 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से दक्षिण पूर्वी हवा चले के संभावना
0: जी
1: छै।
0: धान के बारे में कुछ बताइए,
1: बिल्कुल
0: बीज
1: बिल्कुल
0: उपचारित कैसे करना है, क्या हमारे क्षेत्र के लिए
1: अब
0: कौन सी नस्ल का प्रभेद उपयुक्त तो होगा,
1: हाँ
0: जरा उसके बारे
1: हुन नहीं जा रहा है
0: जी
1: अब
0: जी
1: जैसे कि धान के बारे में तो एकदम
0: जी
1: बतेबो
0: तंटा अगवाबो
1: नहीं
0: आरो बताबो जी
1: तो समय वर्तमान समय में मानसून के कमजोर स्थिति के देखते हुए किसान भाई सनी के सलाह दिलो जाए छे
0: जी
1: कि उच्च भूमि में धान के खेती नहीं करना छे
0: जी
1: अखनी।
0: जी
1: आरो जोन किसान भाई के पास सिंचाई के सुविधा उपलब्ध छे
0: जी
1: उन्हीं मध्यम अवधि वाली धान के किस्म के बिचड़ा गिरावा सके छे अभी आरो बीज स्थली में नमी बनेने रखना छे
0: जी जी
1: आरो एकरे ओकरे अनुसार कि जखनी जितना जरूरत हुआ जीवन रक्षक सिंचाई करते रहना छे।
0: बिल्कुल
1: विशेषकर उच्च भूमि में धान के स्थान पर वैकल्पिक फसल के खेती पर विचार करे के उचित समय छे।
0: जी
1: मक्का के खेती के जो बात कर लो जाए जे हमरो किसान भाई मकई के
0: ये भी
1: खेती करे
0: नगदी
1: छे।
0: फसल है
1: हाँ, खरीफ फसल मक्का के बुआई आसमान साफ रहला पर कर सके छे। खेत के जुताई से 10 से 15 टन जे छे कि में गोबर के सरलो खाद प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करला से बढ़िया रहते।
0: जी
1: और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर और 50 किलोग्राम पोटास के व्यवहार करना चाहिए।
0: जी
1: अनुशंसित मक्का के किस्म जे छे हो छे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3,
0: जी
1: गंगा 11 है भेलौ मक्का के बाद। मूंग
0: जी
1: के बाद तो मूंग के जे अपनो किसान भाई सनी खेती करने छो तो मूंग के तैयार फली के तुराई करो आरो हरी खाद के ले लीजिए छे कि ओकरो पौधा के मिट्टी में पलटे वाला हल से जमीन में गाड़ी देना छे जे बची गले तो ओकरा पलटी के गाड़ी देना छे ताकि ओकरो उपयोगिता खेत के ले लिए बढ़िया हो जाए।
0: जी
1: सब्जी के बात कर लो जाए तो भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ, लौकी के फसल में निराई गुराई करने रहना छे, खरपतवार नियंत्रण करे के उचित समय छे।
0: जी गैरू भाई, बड़ी बढ़िया बढ़िया जानकारी आप दिए किसान भाइयों को, उम्मीद है कि हमारी बातों के ऊपर गौर करके किसान भाई खेती बाड़ी में अपना हाथ बढ़ाएंगे। बढ़िया जानकारी के बाद किसान भाई एक बढ़िया सा झूमर भी सुने।
1: बिल्कुल।

0: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: जी, ये संदेश के बाद फेनू से स्वागत छे कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में सब अपनों श्रोतागण के। श्रोतागण अपना सनी का हम सब लगातार जानकारी देते रहे छे कि जे पशुपालक भाई सनी छो ओकरा में जे अभी अपनों जे पशुधन छे दुधारू पशुधन खास करी के ओकरा से कि गर्मी से बसाना छे आरो एहनों में छायादार हवादार स्थान पर रखना छे, पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाना छे, स्वच्छ ताजा पानी पिलाना छे आरो एक विशेष जानकारी जे लगातार
4: समय समय पर गैरो भाई खनिज मिश्रण भी खिलाना।
3: हाँ, अरे एक लगातार जे किशन भाई अपनों से जानकारी देते रहे छे, हाउ छे कि गलघोटू आरो लंगरी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवाना छे, है कि ना। आरो जे भी दुधारू पशु छे ओकरा टीकाकरण जौन जौन आवश्यकता होय छे जे हिसाब से अपनो पशु चिकित्सक से संपर्क करी के हो दिलाना छे। तो आय यही विषय पर एक विस्तृत बातचीत वार्ता सुनै छे जेकरो विषय छिके पशु में खुरपका आरो जे मुँह पका होय छे खुरहा पकहा ई रोग ओकरो केना होय छे आरो ओकरा बचाव की छे होला के बाद निवारण की छे, तो ये विषय पर एक विस्तृत जानकारी ले छे वार्ताकार छे राम किशोर शर्मा
5: जी। पशुओं में जितने भी घातक रोग होते हैं उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक और संक्रामक बीमारी है खुरहा चपका खुरकुट, जिसे अंग्रेजी में संक्षेप में FMD एवं एप्थस फीवर भी कहते हैं। यह वायरल बीमारी है। यह रोग गाय भैंस भेड़ बकरी सुअर आदि फटे खुर वाले क्लोवन फुटेड एनिमल्स में पाया जाता है। दुगली नस्ल क्रॉस ब्रीड्स एवं जवान मवेशी यंग कैटल ज़्यादा ग्रसित होते हैं इस बीमारी से। भारत से इस बीमारी से एक साल में किसान को लगभग 1,000 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति होती है। कारण कि दूध के उत्पादन में कमी, मीट एवं पशुओं में काम करने की क्षमता में कमी, वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ ड्राफ्ट एनिमल्स। यह एक फिल्ट्रेबल वायरस बीमारी है जिसका नाम पिकोरना वायरस एप्थो वायरस है। यह 7 मेजर वायरस है जिसका नाम OAC एशिया 1 सेट 1 सेट 2 सेट 3 है। भारत में OAC एवं एशिया 1 वायरस जवाबदेह है। यह विषाणु वायरस बहुत ही खतरनाक होता है। यह बीमारी प्रायः आक्रांत भोजन, जल के खाने पीने के प्रयोग के बर्तन, घास चोकर पानी कपड़ा और गौ बीज के संपर्क में आने से होता है और फैलता है। खटाल में एक पशु को यह रोग हो जाने पर अन्य पशु को भी होने की संभावनाएं 70% होता है। इस बीमारी के हो जाने पर पशुओं के शरीर का तापक्रम 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। भूख में काफ़ी कमी हो जाती है, दूध के उत्पादन में कमी हो जाती है, ड्रॉप इन मिल्क यील्ड। मुंह से बहुत ज़्यादा लार एवं झाग निकलता है, जीभ के ऊपर फफोला द्रवयुक्त छोटी थैली वेजिकल्स अल्सर हो जाता है। पशु चकचक की आवाज़ निकालता है। जीभ का फफोला फट जाने पर घाव बढ़ जाता है एवं जीभ में सूजन हो जाता है। खुर के अंदर घाव हो जाने पर पशु चल नहीं पाता है। घाव के जल्दी ठीक नहीं होने के कारण उसमें मक्खी अंडा दे देती है जिससे कीड़े निकलते हैं। दर्द से पशु बेचैन हो जाने पर अपना पैर झाड़ता है। ग्रसित गाय का बछड़ा ग्रसित गाय का दूध पीने से बछड़ा भी ग्रसित हो जाता है तथा उसका दिल कमज़ोर हो जाता है और वह मर भी सकता है। ग्रसित गाभिन पशुओं का गर्भपात भी हो जाता है। प्रजनन क्षमता घट जाती है और गर्भधारण करने में भी विलंब होता है। यदि ग्रसित दुधारू गाय या भैंस ठीक हो जाने पर भी पहले की तरह दूध देने लायक नहीं रहती है एवं ग्रसित पशु में थनेली मस्टाइटिस बीमारी होने की भी संभावना रहती है, सारा जीवन हाँफते रहता है। यह विषाणु वायरल बीमारी होने के वजह से इसका कोई विशिष्ट स्पेसिफिक इलाज नहीं है, सिर्फ सिम्टम लक्षण के अनुसार चिकित्सा की जाती है। मुंह की सफाई 1% पोटासियम परमैंगनेट के घोल या 2% सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल से करना चाहिए एवं बोरोग्लिसरीन लगाना चाहिए। पैर की धुलाई 2%

0: परसेंट कॉपर सल्फेट तुतिया के घोल से या 2 या 4% सोडियम कार्बोनेट के घोल से करना चाहिए। उसके बाद कोई भी जीवाणु नाशक महलम उस घाव पर लगाना चाहिए। पैर के घाव में कीड़ा या मैगट होने पर तारपीन का तेल या कार्बन टेट्राक्लोराइड या ब्यूटॉक्स लगाना चाहिए। इससे घाव का कीड़ा बाहर आ जाता है और मर भी जाता है। बुखार कम करने के लिए कोई भी एंटीपायरेटिक की सुई लगानी चाहिए, साथ ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की भी सुई कम से कम 3 दिन तक पशु चिकित्सक की सलाह से लगानी चाहिए। साथ में बी कम्प्लेक्स की भी सुई लगानी चाहिए। जब तक ग्रसित मवेशी ठीक नहीं हो जाती है तब तक समुचित इलाज चलते रहना चाहिए। ग्रसित पशुओं को नरम खाना देना चाहिए, जैसे हरा घास, मार, दाल, बेसन का घोल, चोकर एवं भिंगा हुआ गेहूं देना चाहिए। कंट्रोल, ग्रसित पशुओं को तुरंत खटाल से अलग कर देना चाहिए। पशुओं का घूमना फिरना नियमित रूप से रोक देना चाहिए। पहले से व्यवहार किया गया भोजन एवं बिछावन पुआल वाला को जला देना चाहिए। आम आदमी का खटाल में घूमना फिरना एवं प्रवेश बंद कर देना चाहिए। पशुओं के रहने वाले खटाल घर को साफ सुथरा रखना चाहिए एवं 1 से 2% कास्टिक सोडा या फॉर्मेलिन से स्प्रे एवं धो देना चाहिए। ग्रसित पशुओं को स्लॉटर हाउस भेज देना चाहिए। ग्रसित पशुओं के मर जाने के बाद उसे तुरंत दूर स्थान पर दफना देना चाहिए एवं अन्य पशुओं को वहां जाने पर पाबंदी रोक लगा देनी चाहिए। ग्रसित पशुओं गाय भैंस के बछड़ों को माँ का दूध नहीं पीने देना चाहिए। FMD खुरहा चपका बीमारी को रोकने हेतु टीकाकरण वैक्सीनेशन करवाना बहुत ही आवश्यक है। वैक्सीन बहुत से ब्रांडेड कंपनियां बनाती है। जो भी वैक्सीन पशुपालकों के क्षेत्र में उपलब्ध हो पशु चिकित्सकों के सलाह पर लगवाना चाहिए। साल के प्रत्येक मार्च अप्रैल माह में एवं सितंबर तथा अक्टूबर माह में अवश्य ही लगवाना चाहिए। पहला टीका 3 महीने के उम्र में लगवाना चाहिए एवं बूस्टर डोज यानी दूसरा टीका 6 माह पर दिलवाना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक 6 माह पर टीकाकरण करवाते रहना चाहिए। इससे खुरहा चपका FMD बीमारी होने की संभावना नहीं के बराबर रहती है। नियमित टीकाकरण तथा खटाल में अच्छी साफ सफाई रखने के साथ साथ पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पोषकता प्रदान करने से पशु स्वस्थ तथा रोग मुक्त रहता है।
1: जी, बहुत बढ़िया जानकारी दिल के और इतने सुंदर जानकारी के लिए जे छे कि हमरो वार्ताकार राम किशोर शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरो जब इतना बढ़िया से बातचीत हो गेले ये विषय में पशु के खुरपका रोग, मुँहपका रोग, ये सब विषय में आरो की जे छे सावधानी बरतना छे, ओकरो बाद एक जे छे कि लगे हाथ किशन भाई एक कृषि गीत अगर सुनी ले लो जाए तो कहना रहते।
2: खूब बढ़िया
1: जी, तो सुनाई छे एक कृषि गीत अपना श्रोता सनी के सुनवाई छे, फिर देखे छे।
3: धनिया अब हम बन

0: गैरू
1: वाह
0: भाई, अभी किसान भाइयों को, खास करके वैसे किसान भाई जो बड़े पैमाने पर बाग बगीचा लगाते हैं या बगीचे की देखभाल करते हैं, हालांकि अभी व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे क्षेत्रों में थोड़े आम के फसल कम आए थे, लेकिन इससे निराश होने की बात नहीं है। अभी के समय में जिस पेड़ में अच्छे फल नहीं आए उसमें आप कुछ जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं, बल्कि उसमें गड़ारी बना करके थोड़ा देसी कंपोस्ट, थोड़ा सा चूना मिला करके वो बढ़िया से भराउट करें। इसमें इससे पौधों को, बड़े वृक्षों को पोषण मिलता है और आने वाले दिनों में जो अगले साल फसल आएंगे तो उसमें उसकी संख्या बढ़ेगी। और दूसरी बात, खास आग्रह भी करना चाहते हैं जो नए बाग लगाना चाहते हैं किसान भाई, तो वहाँ पर अभी गर्मी के महीने में, खास करके अप्रैल के समय ही, मध्य मई तक के जो आम के या कटहल के या लीची के वृक्षों के लिए लगाने के लिए, छोटे पौधों को लगाने के लिए जो गड्ढे बनाए हैं, तो उसका मिश्रण थोड़ा बारीकी से करें, तीन तीन तिहाई उसके बनाए अलग अलग, एक तिहाई में थोड़ी बालू होनी चाहिए, थोड़ी दूसरी ओर थोड़ा देसी कंपोस्ट होना चाहिए, नीम की खल्ली हो या और भी सूखे खाद भी उसमें मिट्टी में बराबर बराबर हिस्से में मिला करके गड्ढे को भरें। सबसे आवश्यकता है कि जब गड्ढे को भरते हैं वृक्ष, अभी के समय में जो वृक्ष लगाते हैं तो सामान्य समतल जमीन से थोड़ा सा वृक्ष ऊंचाई पर रहे, इसमें अभी के समय वर्षा के पानी से जड़ें उसकी बड़ी मजबूत होती है, लेकिन जहाँ पर जड़ में यदि पानी का ठहराव हो गया तो जो छोटे वृक्ष आप लगाते हैं कलम, तो वो फिर गल जाने की संभावना होती है, तो इससे आपके मेहनत बेकार हो जाएंगे। तो जब पौधा लगाते हैं तो उस समय थोड़ा बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है। कल के कार्यक्रम में हम अपने किसान भाइयों के साथ, श्रोताओं के साथ और अच्छी बातों की चर्चा करेंगे। आज अनुमति लेते हैं, सबको किसान का नमस्कार।
1: सबका गैरू का भी नमस्कार।

ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजने को हैं अब रांची से प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करगेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रामगढ़ में युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रमंडलीय आयुक्तों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर दिया प्रशिक्षण। डिजिटल क्रिएटर्स से मतदाताओं तक जानकारी पहुंचाने की अपील। राजधानी रांची सहित राज्यभर में भाईचारगी के साथ निकाला गया मुहर्रम का जुलूस, देशभक्ति और अमन का दिया संदेश। और राजधानी रांची सहित राज्यभर में कल से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। 61 लाख से अधिक बच्चों को पोलियोरोधी खुराक देने का है लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर का सपना आर्थिक न्याय, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के माध्यम से एक सशक्त भारत का निर्माण करना था। श्री अठावले आज रामगढ़ के राधा गोविंद विश्वविद्यालय में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवाओं को बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज भारत के छात्र कई देशों में शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं
1: और शिक्षा में हमें बहुत बड़ी प्रगति हम कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज में अपने अनेक स्टूडेंट जाते हैं। मेरे मंत्रालय का सोशल जस्टिस का एक ओवरसीज

0: इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सिर्फ पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है, जबकि गैर भारतीय या नागरिकता त्याग चुके व्यक्ति एनुमरेशन फॉर्म बिना भरे तुरंत बीएलओ को लौटा दें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्टेट लेवल क्रिएटर्स मीट 2026 में ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े 70 डिजिटल क्रिएटर्स को एसआईआर का महत्व समझाते हुए सोशल मीडिया के जरिए मतदाताओं तक सही जानकारी पहुंचाने को कहा, ताकि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम सूची से न छूटे और एक भी अपात्र व्यक्ति न जुड़े। उन्होंने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर आंशिक भरे इन्यूमरेशन फॉर्म की दो प्रतियां देंगे। एक बीएलओ को लौटानी है और दूसरी पावती के रूप में रखनी है, और फॉर्म जमा करने वाले सभी मतदाताओं का नाम 5 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची में प्रकाशित होगा। जामताड़ा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आलोक कुमार ने आज समाहरणालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारी की जा रही है।
1: मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क उसमें है कि हाउस टू हाउस जो विजिट करेंगे हमारे बीएलओ 30/6/2026 से 29/7/2026 तक हमारे बीएलओ हर घर में जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म्स देंगे। इसके बाद रेशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन को भी रेशनलाइज कर रहे हैं, जिसमें कुछ पोलिंग स्टेशन के बढ़ने की संभावना है।
0: झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने झारखंड कंबाइंड प्रवेश परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। अब यह परीक्षा 19 जुलाई की जगह 26 जुलाई 2026 को आयोजित होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने को लेकर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा रांची के दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि किसानों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई पहल की जा रही है।
2: इस नए जमाने में पुराने अपने विधियों के द्वारा पुराने हमारे उसमें हम अपने लोगों की जरूरत कैसे पूरा करें, बड़ी संख्या जनसंख्या है उसको कैसे हम इसको करें ताकि हम शुद्ध भी खाएं और हमारा पेट भी भर जाए सबका।
0: राजधानी रांची में मुहर्रम के मौके पर मुस्लिम समुदायों ने ताजिया और अलम का जुलूस निकाला, जिसमें मेन रोड सहित अन्य स्थानों से गमे हुसैन में हजारों अजादार शामिल हुए। जुलूस में लोगों ने मातम करते हुए इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की कुर्बानी को याद किया। वहीं एक ताजिया को फाइटर जेट के मॉडल में बनाकर उसमें सैनिक वेश में युवकों को बिठाकर देशभक्ति और अमन का संदेश दिया गया। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कल से 3 दिनों तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत राज्य भर के 61 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित है। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि रांची में 5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने के लिए 3,893 बूथ बनाए गए हैं। श्री कुमार ने रांची सदर अस्पताल में 15 प्रचार प्रसार वाहनों को रवाना करते हुए कहा कि लोगों को पल्स पोलियो अभियान के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
3: मुख्य उद्देश्य तो यही है कि लोगों को जागरूक करें, क्योंकि 2 साल के बाद हो रहा है जो पल्स पोलियो का कार्यक्रम है, 2 साल के गैप के बाद हो रहा है, क्योंकि अब उतनी जरूरत नहीं रही, लेकिन अभी जरूरत महसूस की गई है कि नहीं 2 साल के बाद अभी होना जरूरी है, तो इसी के प्रचार प्रसार के लिए सारे रथ रवाना किए गए।
0: देवघर में स्वास्थ्य निदेशक शशि प्रकाश झा ने लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो रोधी खुराक पिलाएं और अभियान को सफल बनाएं।
4: याद रखें कि 2000

0: 2011 से कोई मामला हमारे भारत में नहीं आया है पोलियो का, तो हम लोग ये चाहेंगे कि कभी भी ये रिपीट ना हो, इसके लिए ये विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सभी बच्चों को दवा नहीं दी जाएगी, तो इतने मात्रा में जो दवा की व्यवस्था और पूरी सारी व्यवस्था की गई है बेकार हो जाएगी।
1: उधर पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में 3,97,521 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य है। वहीं सरायकेला खरसावां जिले में 2.25 लाख से अधिक बच्चों को खुराक दी जाएगी। हजारीबाग जिले के बरकटा थाना की पुलिस ने एक होटल के पास अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। बरही CDPO राधा प्रेम किशोर ने बताया कि ट्रक से 935 कार्टन शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए है। पुलिस ट्रक चालक उत्तराखंड निवासी दलजीत सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। मौसम विभाग ने झारखंड में 30 जून से मॉनसून के दोबारा सक्रिय होने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान 30 जून और 1 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्यवर्ती और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रामगढ़ में युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रमंडलीय आयुक्तों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर दिया प्रशिक्षण। डिजिटल क्रिएटर्स से मतदाताओं तक जानकारी पहुंचाने की अपील। राजधानी रांची सहित राज्यभर में भाईचारगी के साथ निकाला गया मुहर्रम का जुलूस, देशभक्ति और अमन का दिया संदेश। और राजधानी रांची समेत राज्यभर में कल से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। 61 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का है लक्ष्य। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। 7:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं लोकगीत। कलाकार हैं नवल किशोर पंडित और साथी। आरंभ में इनसे सुनिए एक देवी गीत।
3: घर घर हो त मैया तोहरो।

नवल किशोर पंडित और साथियों से आइए सुनते हैं एक लोक भजन।

अभी आप नवल किशोर पंडित और साथियों के गाए लोकगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। शाम के 7:25 हो चुके हैं। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
3: अब हर माह के अंतिम रविवार को आपकी ग्राम पंचायत में होगा पंचायत विकास दिवस
4: ग्राम सभा में जानिए पंचायत की योजनाएं प्राप्त राशि व्यय अवशेष राशि और आगामी विकास कार्यों की पूरी जानकारी
3: चर्चा होगी स्थानीय विकास लक्ष्यों पर दिखाए जाएंगे उत्कृष्ट पंचायतों के विकास कार्यों के वीडियो
4: और सुना जाएगा प्रधानमंत्री जी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात आइए जुड़िए पंचायत विकास दिवस से
3: जन भागीदारी से सशक्त ग्राम पंचायत विकसित भारत समृद्ध बिहार
4: पंचायती राज विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी
0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश की सभी पंचायतों में कल होगा पंचायत विकास दिवस का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के टेटिया बंबर में करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, भारत को विकसित बनाने का संकल्प एमएसएमई के माध्यम से होगा पूरा। और प्रदेश के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ी, अगले 5 दिनों तक विभिन्न भागों में मध्यम से तेज वर्षा का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुना जा सकता है। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। बिहार सरकार की पहल पर पंचायती राज विभाग की ओर से अब प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस माह कार्यक्रम का विषय है महिला हितैषी ग्राम पंचायत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल मुंगेर जिले के टेटिया बंबर पंचायत से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पंचायत विकास शिविर का उद्देश्य है ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर जन भागीदारी बढ़ाना और योजनाओं की समीक्षा के माध्यम से पंचायत को सशक्त बनाना। आज एमएसएमई दिवस है। इस अवसर पर देश भर में लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प को एमएसएमई के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बहुत चिंतित हैं और चाहते हैं कि आज भारत को विश्व के चौथा आर्थिक व्यवस्था में लाने में कामयाब हुए हैं जापान को पछाड़ करके, और वो चाहते हैं, उनका कल्पना है कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत के रूप में संसार का पहला आर्थिक व्यवस्था के रूप में बनाएं, ये उनका स्वप्न है।
0: श्री मांझी ने कहा कि देश का एमएसएमई सेक्टर लगातार रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 38 करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
1: अन्य विभाग की बात नहीं कहता, हम अपने विभाग की बात करते हैं। जो अभी आपने सुना कि आज एमएसएमई की जो इकाइयां हैं वो लगभग 8 करोड़ से ऊपर की बात, जिसकी बात कही गई कि 38 करोड़ लोगों को हम लोगों ने एमएसएमई के माध्यम से नियोजन दिया, ये स्पष्ट है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पटना के बीरचंद पटेल स्थित शहीद देवीपद स्मारक मिलर हाइस स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। श्री चौधरी ने आज विद्यालय का दौरा किया और अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना बनाकर विद्यालय के समग्र विकास के लिए कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय राज्य के सभी विद्यालयों के लिए प्रेरणा स्रोत और अनुकरणीय बनेगा। राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का अपार आईडी अनिवार्य कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव ने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में 30 जून तक सभी विद्यार्थियों को अपार आईडी बनाने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि अपार आईडी के बिना परीक्षा के लिए निबंधन नहीं कराया जा सकेगा। गौरतलब है कि अपार आईडी छात्रों का डिजिटल शैक्षणिक पहचान है जो उनकी पूरी शिक्षा का रिकॉर्ड सुरक्षित और सुगम बनाता है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पीएमसीएच के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एनपी सिंह के खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी के गठन का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्राचार्य की गंभीर लापरवाही की जांच उच्च स्तरीय समिति करेगी। श्री कुमार ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।
2: जो मैं निरीक्षण करने गया था 23 तारीख को पीएमसीएच में, प्राचार्य अनुपस्थित थे, तो उनके लिए मैंने एक जांच कमेटी उच्च स्तरीय बैठाने का आदेश दे दिया है। उसके बाद उनका पक्ष रखा जाएगा, वो अपनी बात कहेंगे कि क्यों नहीं थे, उसके बाद उन पर कार्यवाही की जाए। और हमारे विभाग की नीति एकदम स्पष्ट है कि ऐसे ऐसे किसी भी लापरवाह, कर्तव्यहीन, भ्रष्ट या अनुपस्थित रहेंगे बिना बताए, तो उन पर भी आगे कार्रवाई हो सकेगी।
0: गन्ना मंत्री संजय पासवान ने कहा है कि प्रदेश के लोगों को अब मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना होगा। मुंगेर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि प्रदेश में आने वाले दिनों में 25 गन्ना फैक्ट्री समेत कई कल कारखाने खोले जाएंगे।
3: मेरी सरकार ने, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक पॉलिसी लाया गन्ना उद्योग विभाग का, जो मॉडल कॉम्प्लेक्स चीनी मिल होगा, आने वाले दिनों में 25 की 25 चीनी मिल खुलेंगे। और बिहार से पलायन को रोकना है तो सरकार यहीं पे रोजगार देने का, बिहार में ही रोजगार देने का संकल्प लिया है और जनता के वादे पर खड़े उतरेगी।
0: श्री पासवान ने मुंगेर जिले के प्रभारी मंत्री के तौर पर आज जिले का दौरा किया। इस दौरान बगचपरा में गंगा नदी में डूबने से मृत युवतियों के परिजनों से मुलाकात की और राज्य सरकार की ओर से आपदा राहत राशि 4-4 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से कल प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 993 पदों के लिए आयोजित ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। पूर्व मध्य रेलवे परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज और कल 13 विशेष परीक्षा ट्रेन चलाएगा। दानापुर मंडल की ओर से आज पटना के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से सहरसा, भभुआ, बेतिया, पूर्णिया, अररिया और सीवान के लिए कुल 6 परीक्षा विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं कल 7 परीक्षा विशेष ट्रेन संचालित की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता दिख रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश भागों में मानसून का विस्तार हो जाएगा। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और सीवान समेत कई जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, बांका, रोहतास और मधुबनी समेत राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर दोपहर बाद तेज हवा के साथ मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मधेपुरा के पुरौनी में सबसे अधिक 76.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर हल्की वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 घंटों के बीच अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, गया, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, नालंदा, पटना, पूर्णिया और सुपौल जिले के कुछ स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने खराब मौसम को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि अनावश्यक रूप से इस दौरान बाहर ना निकलें। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा है कि अग्नि सुरक्षा केवल एक बार का प्रयास नहीं बल्कि सतत दायित्व है। राज्यपाल ने लोकभवन में आज राज्य स्तरीय अग्नि सुरक्षा तैयारी सेमिनार में फायर सेफ्टी डिक्लेरेशन का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। राज्यपाल श्री हसनैन ने कहा कि आगजनी की घटनाओं से होने वाले जानमाल के नुकसान को प्रभावी तैयारी और जागरूकता के माध्यम से कम किया जा सकता है। राज्यपाल ने सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी बिहार के निर्माण के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का भी आह्वान किया। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे तक ऑनलाइन सेवाएं नहीं मिल सकेंगी। ऊर्जा विभाग के अनुसार आज रात 8 बजे से कल रात 8 बजे तक विद्युत संबंधी सभी ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। विभाग ने कहा है कि इस दौरान स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का रिचार्ज नहीं होने की स्थिति में भी बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। आज हेलेन केलर दिवस है। हेलेन केलर जन्म से ही दिव्यांग थी। देखने और सुनने की क्षमता नहीं होने के बावजूद उन्होंने जीवन में दृढ़ संकल्प दिखाया और अपने लक्ष्य हासिल किए। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार नेत्रहीन परिषद की ओर से आज एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इधर कल हेलेन केलर जयंती की पूर्व संध्या पर पटना में परिषद और बिहार उद्योग संघ के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांग प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर लगभग 25 दिव्यांग प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। प्रदेश के विभिन्न भागों में आज भी मुहर्रम के ताजिया जुलूस का पहलाम किया जा रहा है। पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पत्थर की मस्जिद इलाके में स्थित दरगाह में आज दूसरे दिन भी विभिन्न क्षेत्रों से निकाले गए ताजिया का पहलाम जारी है। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने मिशन शक्ति के तहत संचालित की जा रही योजनाओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। जहानाबाद की जिलाधिकारी छिरिंग वाई भूटिया ने आज जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि जिले में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है, इसे किसानों तक आसानी से उपलब्ध कराया जाए। अररिया जिले में नशा मुक्त भारत सप्ताह के तहत नारा लेखन, निबंधन लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के अंत में नशा मुक्त समाज के लिए सामूहिक संकल्प लिया गया। कटिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चंद्र चौधरी ने तामगंज मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक को निलंबित कर दिया है। इन पर छात्रों से विद्यालय अवधि में कीटनाशक का छिड़काव कराने का आरोप है। वहीं नाथनगर मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक को छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। किशनगंज के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने मुहर्रम के दौरान ड्यूटी पर मोबाइल फोन चलाने के आरोप में एक महिला सिपाही को निलंबित कर दिया।
रोहतास जिला भाजपा इकाई की ओर से समीक्षा बैठक की गई। पार्टी प्रदेश महामंत्री अभिषेक नितिन ने कार्यकर्ताओं से पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सक्रियता से कार्य करने का आह्वान किया है। सुपौल जिले के विभिन्न स्थानों पर आज दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। सीवान जिले के दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रज्ञा प्रवाह की ओर से भारत बोध सांस्कृतिक अवधारणा विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य वक्ता के तौर पर रामाशीष सिंह, डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी समेत अन्य ने अपने विचार रखे। शिवहर जिले के विभिन्न अंचलों में आज भूमि विवाद निष्पादन शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान एक दर्जन से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया। अररिया जिले में जिलाधिकारी विनोद दुहन की उपस्थिति में एनआईसी के रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर्मियों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी की गई। वहीं जिले के आरएस थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान दो युवकों को 101 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश की सभी पंचायतों में कल होगा पंचायत विकास दिवस का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के टेटिया बंबर में करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, भारत को विकसित बनाने का संकल्प एमएसएमई के माध्यम से होगा पूरा। और प्रदेश के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ी, अगले 5 दिनों तक विभिन्न भागों में मध्यम से तेज वर्षा का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मधुबनी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आकिल हुसैन।
1: मधुबनी जिले में मोहर्रम का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। पूरे जिले में सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी तथा दंडाधिकारियों की लगातार निगरानी सुनिश्चित की गई। जुलूस मार्गों पर भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। राज्य सरकार ने राज्य में 5 नए निजी विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी है, जिसमें मधुबनी जिला को भी सांझा विश्वविद्यालय की स्वीकृति मिली है। विश्वविद्यालय की मंजूरी मिलने पर सांझा विश्वविद्यालय के फाउंडर सह सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद, विश्वविद्यालय के डायरेक्टर सह विधायक आसिफ अहमद और विश्वविद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर तौसीफ अहमद ने मुख्यमंत्री समाज चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। इधर कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा बीते दिनों मधुबनी जिला मुख्यालय में आधुनिक अटल कला भवन के निर्माण के लिए 19,73,26,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। 620 दर्शकों क्षमता वाले इस आधुनिक ऑडिटोरियम एवं संस्कृति परिसर का निर्माण भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित प्रकरण के आधार पर कराया जाएगा। जिले में पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। जिले में वर्तमान में 5,79,123 पेंशनधारी हैं, जो राज्य में सर्वाधिक है। अब तक 4,71,318 पेंशनधारकों ने अपना प्रमाणीकरण करा लिया है, जबकि 1,17,800 पेंशनधारियों का प्रमाणीकरण शेष है। जिला अधिकारी अनंत शर्मा ने पेंशन धारकों से अपील करते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा के सभी पेंशन धारकों को वर्ष में एक बार अपना जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा समाज के 3 वर्ग वृद्ध विधवा एवं दिव्यांगों को प्रत्येक माह 1100 रुपया पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। जिला अधिकारी ने कहा कि जो पेंशनधारी जीवन प्रमाणीकरण नहीं करा पाए हैं, उनको पेंशन भुगतान मार्च 2026 से विभाग द्वारा रोक दिया जाएगा। वहीं जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर लगातार सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बीते दिनों जिला अधिकारी की अध्यक्षता में सहयोग शिविर के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और शिविर में प्राप्त शिकायतों और आवेदनों की प्रगति की जानकारी दी। समीक्षा के दौरान पाया गया कि सहयोग शिविर पोर्टल पर अब तक कुल 8,799 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 88% आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। बैठक के दौरान जिला अधिकारी ने कहा कि जन सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के निर्देश दिया कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का समय वृद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। किसी भी आवेदन को लंबित न रखा जाए तथा प्रत्येक मामले की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्त भारत सप्ताह के अवसर पर उत्कर्णित मध्य विद्यालय पंडौल में बच्चों के बीच नशे के बढ़ते दुष्प्रभाव के विषय पर पेंटिंग और निबंधन लेखन प्रतियोगिता का आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों एवं युवाओं के बीच नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना था। प्रतियोगिता में विद्यालय के अनेक छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिले के बेनीपट्टी में कुल 14 राजकीय नलकूप हैं, लेकिन नाला नहीं रहने के कारण इनका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस मामले पर SDM सारंग पानी पांडे ने संबंधित अधिकारियों से सभी स्टेट बोरिंग की स्थिति पर 24 घंटे के अंदर प्रतिवेदन देने की निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किन किन बोरिंग में किस प्रकार की समस्या है और उन्हें दूर कर किसानों को कैसे लाभान्वित किया जा सके, इसकी सूची भी उपलब्ध कराई जाए। जिले में किसानों को निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराने तथा खाद की कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार सघन निगरानी और औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला अधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी द्वारा लौखी प्रखंड क्षेत्र में खाद दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। झंझारपुर मधुबनी यात्री मार्ग पर आधुनिक आरक्षित पिंक बस सेवा 29 जून 2026 से शुरू की जाएगी, जिसका उद्देश्य महिलाओं, छात्राओं और आम यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। इस बस सेवा का शुभारंभ नगर विकास एवं आवास तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा किया जाएगा।
0: अभी आप सुन रहे थे मधुबनी जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आकिल हुसैन।
2: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। 7:52 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। आज सुरलहरी की कलाकार हैं पायल चक्रवर्ती। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे सुनते हैं एक भजन।

0: सुरलहरी कार्यक्रम में अभी आप पायल चक्रवर्ती को सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान की अगली कड़ी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
2: उड़ान उड़ान उड़ान कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आप सबों के बीच में हाजिर है। इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बिहार में हम बज रहे हैं। जी हाँ, युवा साथियों के लिए, उनके करियर के लिए माता पिता से भी बातचीत हो रही है और ये उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा संस्थान जो पिछले 27 वर्षों से लगातार युवाओं के साथ BCA और BBA के कोर्स को लेकर लगा है, एक अच्छा शिक्षण संस्थान आर्किड बिजनेस कॉलेज। आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर, आर्य कुमार रोड और सगुना मोड़ पटना में है। साथियों, टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है और टेक्निकल पढ़ाई करके ही आप अपने करियर में आगे की ओर जा सकते हैं, ऊंचाइयां दे सकते हैं। अगर आप BCA और BBA की सोच रहे हैं, और अगर नहीं सोच रहे तो एक बार सोचिएगा, विचारिएगा कि BCA और BBA की पढ़ाई आपके लिए कितना जरूरी और लाभदायक हो सकती है। और अगर आपने सोचा तो जरूर डायल कीजिएगा आर्किड बिजनेस कॉलेज के इस नंबर पर। नंबर है 7520800 यानी 7520800 आर्किड बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर आशीष आदर्श जी से लगातार जी हाँ दो एपिसोड से बातचीत चल रही है। आर्किड बिजनेस कॉलेज के विषय में एक चीज और बता दें कि ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से स्थायी मान्यता प्राप्त BCA और BBA के लिए एकमात्र संस्थान है।
3: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
4: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
3: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
4: आर्किड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
3: फिर तो आर्किड से ही BCA या BBA करना सेफ है। आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़ पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
2: और अब आइए चलते हैं, आशीष जी से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और कुछ सवाल है हमारे पास, हम सबसे पहले उससे शुरुआत करेंगे और ढेर सारी बातें होंगी आपके करियर के लिए, क्योंकि ये करियर काउंसलर भी हैं। आशीष जी, बहुत बहुत पहले तो आपका स्वागत है एक बार फिर से उड़ान कार्यक्रम में। और हम आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहते हैं, और वो ये है कि BCA और BBA या कोई भी कोर्सेज अगर करने स्टूडेंट जाते हैं ना, तो संस्थान का चुनाव हाँ कैसे करें, क्योंकि आज बहुत ज्यादा चकाचौंध है, इतने ज्यादा संस्थान हैं, हाँ तो इसमें संस्थान का चुनाव बहुत मायने रखता है।
5: देखिए, एक बात बताता हूँ, आप कोई भी संस्थान का विज्ञापन उठा के देखिए, हर संस्थान अपने आप को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा। आपको यह देखना है कि उस संस्थान के जो पहले के जो छात्र हैं उनका क्या मंतव्य है,

0: मैं करता हूं, अभी तक लगभग हमारे यहाँ 450 स्टूडेंट करीब पास आउट करके निकले हैं, लगभग 200-225 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है, 200-225 के बीच में, और बाकी अभी कंपनियां 4-5 कंपनियां, बहुत सारी कंपनीज ऐसा बोलती है कि भाई एग्जाम के बाद हम, परीक्षा के बाद हम उनको इन कैंपस इंटरव्यू आपके यहाँ करेंगे, क्योंकि परीक्षा के लिए हम छुट्टी नहीं देंगे। अब परीक्षा खत्म हो चुकी है पार्ट 3 की, रिजल्ट भी अब 1-2 दिन में आने वाला है, तो इसीलिए अब बहुत सारी कंपनीज लाइनअप कर रही हैं, वो आ रही हैं, और हम ये बात आश्वस्त करते हैं हर स्टूडेंट को कि आपके लिए कम से कम 10 कंपनी का हम इन कैंपस इंटरव्यू लेकर के आएंगे, कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन होगा ही, बस आपको अपनी क्लासेस में अपनी जो अटेंडेंस रखनी है और अपने कोर्स के ऊपर में पूरा फोकस करना है, बाकी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं।
1: एंड फैकल्टी, टीचर्स,
0: देखिए टीचर तो किसी भी संस्थान का की आत्मा होती है, आपके यहाँ अगर अच्छे टीचर होंगे तभी वो एक अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, अच्छा एक आपको नॉलेज दे सकते हैं। टीचर्स के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कोई समझौता नहीं करते। हमारे यहाँ आप स्टूडेंट से बातचीत करेंगे तो वो हमेशा ही, अभी आप रिव्यूज देखिए, आप आर्केड बिजनेस कॉलेज के वेबसाइट पर चले जाइए, abcollege.org भी है और abcollege.in भी है। abcollege.org राजेंद्र नगर कैंपस का है, abcollege.in सगुना मोड़ कैंपस का है। आप वहाँ जाकर रिव्यूज देखिए या गूगल में डालकर रिव्यूज देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि आर्केड बिजनेस कॉलेज का क्या स्थान है, उसकी क्या विश्वसनीयता छात्रों के बीच।
1: बहुत खूब आशीष जी, आपने एकदम सिलसिलेवार तरीके से बता दिया और ये भी ऑनेस्टी के साथ कहा कि हर संस्थान जो है बढ़ा चढ़ा कर विज्ञापन देता है, और 2-3 चीज़ों को आपने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा एंड ऑफ द डे जो रोजगार की बात होती है कि पढ़ने के बाद रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी आपने खुलकर बातें की हैं एकदम साफ साफ, यही चीजें मुझे पसंद हैं। इसके अलावा टीचर्स को आपने संस्थान की आत्मा कहा, जो 100% सही है, खुले मन से खुले दिमाग से बातें होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट के करियर का सवाल है, युवाओं के भविष्य का सवाल है। बीसी और बीबीए बहुत ही वाइब्रेंट है, टेक्निकल पढ़ाई अगर हम जानना चाहें ना तो बीसी और बीबीए की पढ़ाई बहुत वाइब्रेंट है, रोजगार भी मिल जाता है, और ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं जिन्होंने 27 वर्षों से बीसी और बीबीए की पढ़ाई जारी रखी है और आज एक स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का आर्केड बिजनेस कॉलेज। हम नंबर दे रहे हैं, जरूर बात कर लेंगे, डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी, और कोई सोचिएगा नहीं, विचारिएगा नहीं, एक फोन कॉल जरूर बनता है आपके अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, और नंबर है 7520800800। आशीष जी, हम दूसरे संस्थानों पर बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें कुछ बुरा लग सकता है, एक जनरल बातचीत हो रही है, और हमने आर्केड बिजनेस कॉलेज को हाँ इसके सेंटर में रखा है क्योंकि एडमिशन ले ना लें लेकिन सही जानकारियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आपने जो सफ़र 27 साल पहले बीसी और बीबीए को लेकर शुरू किया, लेकिन अभी तो एकदम बंच ऑफ कोर्सेज हैं आपके पास, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एडमिशन हो ना हो ये बाद की बात आती है, लेकिन हम ज़रूर कहेंगे कि कोई भी इस तरीके के कोर्सेज में जाने से पहले 7520800 नंबर है, ज़रूर फोन करके बात कर लेंगे। बहरहाल बताइए अपने कॉलेजेस, अपने इस तरीके के टेक्निकल कोर्सेज के बारे में।
0: देखिए आर्केड ग्रुप के ऑल टुगेदर 3 कॉलेजेस हैं, एक आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर, एक आर्केड बिजनेस कॉलेज सगुना मोड़, और एक एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन एक नया परिसर है, 2017 में शुरू हुआ, ये नेवरा में है, मतलब दानापुर स्टेशन से लगभग 10 मिनट लगता है जाने में। वहाँ पर हमने बीसी बीबीए के अतिरिक्त एमबीए एमसीए, बीएड पहले से वहाँ चल रहा है, एमबीए और एमसीए ये दोनों प्रोग्राम शुरू किए हैं, और ये हमने 2025 से शुरू किया है, और आपको सुनकर के अच्छा लगेगा कि सारे जो जितने भी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो सब हमारी फुल हो रही हैं और काफ़ी अच्छे संख्या में छात्र आ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी ये लगता है कि जब हमारे पास एमबीए एमसीए की व्यवस्था है यहाँ पे, अब वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ, हमारे यहाँ जो है छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड खुद आराम से हम सारा प्रोसेसिंग करा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको दिक्कत होती है कि हम कैसे इसको करेंगे, तो हम तो सभी स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि भाई तुमको कोर्स करना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी लेनी है, तुम हमारे पास चले आओ, तुम्हारा सारा काम, सारा प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन, सारा कुछ हम तुमको समझाएंगे, समझा करके सारा प्रोसेसिंग तुम्हारा करा करके तुमको हम पेपर दे देंगे। तो सारी चीज़ें उसके बाद से फिर 1-2 प्रक्रिया है जो प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता है, जाकर के एक जगह फॉर्म जमा करना पड़ता है,

0: लेकिन उसके पहले कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जितनी भी सारा गाइडेंस हमारी तरफ से होगा, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सारी इन सुविधा के दौरान के साथ साथ में आप एक बहुत ही स्मूथ तरीके से अपना कोर्स हमारे यहाँ से पूरा कर सकते हैं।
1: कितना कितना चेंजेज आया है बच्चों के टेम्परामेंट।
0: देखिए ऐसा है कि अगर आपके पास अच्छे टीचर हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी है तो छात्र कभी भी आपको कभी कुछ नहीं बोलेगा, वो हमेशा आपके आपके साथ रहेगा। तो स्टूडेंट्स का टेम्परामेंट सही है, अगर आप अपने काम में ठीक हैं, अगर आप अपने कॉलेज में अच्छे से बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से उनको आप ट्रीट कर रहे हैं, उनको सारा, आज आपको बताऊं कि बिहार का शायद ये एक ऐसा एकमात्र इंस्टीट्यूशन है जिसमें इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब कभी हम लोग किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाते हैं, कभी किसी को, वेबसाइट पे आप जाके देखिए आपको दुनिया भर की चीजें एक्टिविटीज होती हुई नजर आएंगी।
1: उड़ान कार्यक्रम चल रहा है लगातार, हम आते हैं हर एक साल इसी समय और इस रेडियो कार्यक्रम उड़ान के माध्यम से अपने युवा साथियों को जानकारियां देते हैं टेक्निकल पढ़ाई की, खास करके BCA और BBA के बारे में। और ऐसी स्थिति में हम गार्जियन से भी कहते हैं, हमारे बड़ों आप भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, ज़रूर इससे कुछ आपको भी पता चल रहा होगा कि संस्थान के अंदर जहां आपके बच्चे पढ़ने जाएं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए जो उनके अपने करियर में उन्हें ऊँचाइयाँ देगा। आप भी फोन कर सकते हैं, खुलकर फोन कीजिए, सवाल पूछिए, जो भी आपके अंदर में है ना सवाल उसको पूछ डालिए, आफ्टर ऑल आपके बच्चों का सवाल है। और नंबर है 7520800 7520800 7520800। अब जैसे हम इसमें बताते हैं कि स्थायी मान्यता प्राप्त, हाँ किसी को टेम्प्रोरी मान्यता भी दे दी जाती है, किसी को 2 साल 4 साल इस तरीके से भी होता है, लेकिन संस्थान यदि स्थायी मान्यता प्राप्त है ना तो कहीं से कोई डरने की जरूरत भी नहीं है। और आर्केड बिजनेस कॉलेज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है।
2: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
3: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
2: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
2: फिर तो आर्केड से ही BCA या BBA करना सेफ है। आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़, पटना। कॉल करे 7520800800, याद रखे 7520800800।
1: आशीष जी, अब एक सवाल ऐसा जिस पर बहुत सारे फोन कॉल्स आए हैं ऑलमोस्ट पूरे बिहार से, कि गांवों के रहने वाले हैं, हमारा कम्युनिकेशन स्किल या अंग्रेजी हमारी थोड़ी कमज़ोर है, हमें झिझक है, हम शहर में आके वैसे बच्चों के साथ कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, इसके विषय में बताइए कि आप कहाँ डिफरेंट हैं दूसरों से।
0: देखिए वही मैं बता रहा हूँ, देखिए गाँव के लड़कों बच्चों के साथ में एक ही डिमेरिट है, वो है कि उनका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा पुअर है, वो ना अंग्रेजी ढंग से बोल पाते हैं ना हिंदी ढंग से बोल पाते हैं, और उसके अलावा स्किल्स की कमी नहीं है। आप आज देखिए ना जितने भी टॉपर्स हैं सब गांव देहात के स्कूल्स के निकलते हैं, कहाँ टैलेंट पे कमी है। तो मैं समझता हूँ कि उस सभी स्टूडेंट्स को हमारे पास आना चाहिए। मैंने जैसा भी आपको बताया कि हम लोग शुरू में जो भी बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं उनके लिए एक स्पेशल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप कराते हैं जो उसको अटेंड करना पड़ता है, जिसके बाद वो लड़का स्मार्ट हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें वो उसके दिमाग से निकल जाती है, जो एक जो टैबू जो है काफ़ी दिमाग में जो चीज़ें मतलब भ्रांतियां हैं वो ख़त्म हो जाती है, और अपने आप को वो अपने आप 3 महीने के बाद खुद को उसको समझ में आएगा कि मेरे अंदर क्या तब्दीली हुई। जो बच्चा आपको मैं ऐसे ऐसे बच्चों से मिला सकता हूँ अपने यहाँ से, जो जिसको एक लाइन बोलना नहीं आता था, डरता था बोलने में, आज वो स्टेज पर खड़ा होकर के परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी जिम्मेदारी हमारी है, हम बेहतर से बेहतर वहाँ पर वर्कशॉप कराएंगे जिससे उन बच्चों के अंदर का जो झिझक है वो ख़त्म होगी, क्योंकि झिझक अगर करके कोई भी बच्चा आगे बढ़ेगा तो कभी भी बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। उसको निश्चित तौर पर अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, और उसमें हम उसकी पूरी मदद करेंगे।
1: जवाब मिल गया जिन लोगों ने भी फोन कॉल करके पूछा था उड़ान में कि हमारा क्या होगा। अरे आशीष जी ने कहा आप किसी से कम नहीं हैं, बस चंद दिनों के बाद आप कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ सकते हैं। टेक्निकल पढ़ाई का ज़माना है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी मित्रों। BCA और BBA बहुत ही उम्दा कोर्स है, और उतना ही उम्दा है आर्केड बिजनेस कॉलेज। आप एडमिशन लें ना लें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप फोन करके ज़रूर बात कीजिएगा, जानकारियां लीजिएगा, जिससे इंस्टीट्यूशन को चुनने में आपको मदद मिल सके। नंबर है 7520800800। जी हाँ आशीष जी, चलते चलते कुछ कहना चाहिएगा।
0: ये जो समय है, दो समय में से कोई एक समय चुनना है, या तो अभी 5 साल की मेहनत पूरे जीवन भर का आराम, या अभी 5 साल का आराम पूरे जीवन भर कश्मकश। चुनना आपको यही है, और स्टूडेंट्स को भी अपने लिए स्वार्थी हो जाना चाहिए पूरी तरह से, और ये 5 साल वो अपना पूरा फोकस करे अपने पढ़ाई में और अपने करियर को बनाने में।
1: थैंक यू आशीष जी, बिल्कुल सही कहा, एकदम सेल्फिश हो जाना चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड। 5 साल या जो भी साल अभी के हैं उसमें खूब मेहनत और भविष्य निर्माण की बातें होनी चाहिए। बहरहाल टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, BCA और BBA बहुत ही उम्दा कोर्स है, इसमें आगे चल के आप MBA और MCA करके अपने करियर को और सजा सकते हैं। फिलहाल उड़ान कार्यक्रम का लक्ष्य है सही चीजें आप तक पहुंचाना। हम सिर्फ ऐसी बात कर रहे थे जिससे कि आपको आधार मिल सके, जानकारियां मिल सके, उड़ान कार्यक्रम इसीलिए आता है। बहरहाल आर्किड बिजनेस कॉलेज का हम नंबर बताना चाहेंगे जहां से आप जानकारियां ले सकें, 7520800 फोन कीजिएगा, जानकारियां लीजिए, सवाल पूछिए और करियर में आगे बढ़ जाइए। राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
5: उड़ान, अभी आपने ये प्रायोजित कार्यक्रम सुना, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। रात्रि के 8:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की पहली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज़ में है, फिल्म है आपके साथ।

0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: इस अंतराल के बाद रजनीगंधा के कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को। फिल्म है आशा।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आई मिलन की बेला, आइए सुनते हैं इस फिल्म का दो गाना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

0: choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under rupee 1 per km. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
1: Nexa.
2: आकाशवाणी भागलपुर से अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे हैं. कार्यक्रम है रजनीगंधा. कार्यक्रम का अगला गीत सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में है. फिल्म है भीगी रात.

फिल्म बेटी बेटे के इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को है। अब दिल्ली से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच दो सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
5: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्वरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और ABC मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honor. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. And in US Open Badminton, India's Devika Sehwag, Kidambi Srikanth and Ronak Chauhan reach semi-finals in California. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. A report.
1: Prime Minister Narendra Modi visited the Botanical Garden and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco Dimar plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maa Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. Following this, Prime Minister Modi also interacted with members of Indian diaspora. He said that Indian diaspora has long served as a vibrant bridge between the two nations, strengthening people-to-people ties and enriching the shared journey. In a special gesture, Prime Minister Modi handed over the Made in India fast patrol vessel to President Dr. Patrick Hermini. He also handed over 6 ambulances, 10 utility vehicles and 5 laser radial boats, which will further contribute to the development and security of Seychelles. Prime Minister Modi will be the guest of honor at celebrations marking the historic 50th anniversary of independence of Seychelles. He is the first ever Indian Prime Minister to attend the National Day celebration of Seychelles. Akshit Vaidyan, Akashvani News.
6: Seychelles has backed India's bid for a permanent seat in the United Nations Security Council. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's arrival in the island nation, Seychelles Foreign Minister Barry Faure said the current global order and international institutions need reforms to reflect present-day realities. He said India deserves a permanent seat in the Security Council because of its population, growing global influence and its contribution to peacekeeping.

0: security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Man Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 50वें यौम आजादी की तकरीबात में मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत के लिए वहां पहुंच गए हैं। भारत ने सेशेल्स की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए उसे तेज रफ्तार गश्ती जहाज, एम्बुलेंसेस, दीगर कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और लेजर रेडियल कश्तियां तोहफे में दी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अतियात में खुर्द-बुर्द से मुतालिक मामले के बाद अखलाकी बुनियाद पर इस्तीफे दे दिए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल मुकाबलों में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 3 रोजा दौरे पर आज दोपहर विक्टोरिया पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जना मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशेल्स के सदर की जानिब से गर्मजोशी से खैर मकदम किए जाने की सताइश की। वजीर आजम ने कहा कि सेशेल्स बहरे हिंद में एक अहम बहरी शराकत दार और एक करीबी दोस्त है। जना मोदी ने कहा कि वो एक सूदमंद दौरे के मुंतजर है जिसका मकसद भारत सेशेल्स देरीना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना और दोनों मुल्कों के अवाम के मफाद में इश्तराक में इजाफा करना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी बोटानिकल गार्डन भी गए और वहाँ पौधा लगाने की तकरीब में शामिल हुए। तकरीब के दौरान जनाब मोदी ने सेशल्स के सदर की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। वजारत खारजा के मुताबिक पौधा लगाने की यह तकरीब एक पेड़ माँ के नाम पहल का एक हिस्सा थी और इससे पायदारी और माहौलियात की खातिर भारत सेशल्स के दरमियान मुश्तरका अज़्म की अक्कासी होती है। वो बोटानिकल गार्डन में जॉइंट टॉर्टोइज एनक्लोजर भी गए। इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वहां आबाद भारतीय बिरादरी से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय बिरादरी ने दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा एक मुतहरिक पुल का काम किया है, इससे अवाम के दरमियान रابطे मुस्तहकम हुए हैं। खैर सगाली के खसूसी कदम के तहत वजीर आजम मोदी ने सेशल्स के सदर को भारत में तैयार करदा गश्त के लिए तेज रफ्तार बहरी जहाज सुपुर्द किया। उन्होंने उन्हें 6 एम्बुलेंस, 10 यूटिलिटी गाड़ियां और 5 लेजर रेडियल कश्तियां भी सौंपी जो सेशल्स की तरक्की और सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाएंगी। वजीर आजम मोदी सेशल्स के तारीखी यौम आजादी की तकरीबात में मेहमान एजाजी होंगे। वो सेशल्स की कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम हैं। दिल्ली से अक्षत की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: भारतीय बहरिया का अंदरून मुल्क तैयार करदा निगरानी से मुतालिक बहरी जहाज INS इक्षक जनूबी मगरबी बहरे हिंद खित्ते में इसकी तैनाती के हिस्से के तौर पर सेशेल्स में विक्टोरिया बंदरगाह पहुंच गया है। वजारत दिफा ने कहा है कि सेशेल्स के 50वें कौमी दिन के मौके पर यह बहरी जहाज वहां पहुंचा है। इसने मजीद कहा है कि इससे भारत और सेशेल्स के दरमियान बढ़ती बहरी शराकतदारी और देरीना दोस्ती का इजहार होता है। इस दौरान INS इक्षक कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेगा और सेशेल्स की दिफाई अफवाज के साथ सिलसिलेवार पेशावराना राब्ते कायम करेगा जिनका मकसद बहरी इश्तराक और एक दूसरे के तरीक़ेकार से वाकफियत में इजाफा करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज

नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अतियात में खुर्दबोध से मुतालिक मामलों के बाद अखलाक बुनियाद पर इस्तीफे दे दिए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को मिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
1: जी।
2: उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन
1: जी।
2: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स शुरू होके फिर वो जैग्रोस यानी कि ईरान, इराक, और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदुकुश, और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा, और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब वो रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही हैं या वो रुक रुक के जा रही हैं
1: जी।
2: अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही हैं तो यानी कि रुक रही हैं, इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है, और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो, इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है, और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है।

0: लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं, कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है, और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी, तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं, जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा। छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। हम ही नहीं, सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहां पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसेसरी और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है, बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें, और होल्ड और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं, और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठाकर देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है। जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और फिर डेथ हो गई। तो घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें। जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है, तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं। लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स से कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
2: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
3: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका एक बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे

0: उनका जब जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी जब वो यहाँ पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
1: जी।
0: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
1: जी,
0: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
1: जी।
0: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में और उनकी जीवन शैली को सुधारने में और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा है, कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
1: जी।
0: और वो सुनाई नहीं देता था और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
1: जी,
0: मोबाइल भी नहीं था
1: नहीं।
0: और केवल रेडियो ही एक होता था और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पे
1: जी।
0: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांवों में भी स्मार्टफोन है, जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम वो सुनते हैं और बताते हैं साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
0: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि ये सफलता की कहानी तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
0: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
0: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
0: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
0: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
2: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
4: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इंपॉर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
3: जी।
4: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें। ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य के ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं। तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं। भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पर हमें काम करना पड़ेगा।
2: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान। साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की, उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ, उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
1: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ
0: प्रकाशिक

0: तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम पोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें, जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती है। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी, सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, जी गोपाल रेड्डी कैंपस, गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंटवार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव, इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
2: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुंचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
3: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी

0: रही है अभी। तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज की वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं, उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होकर अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो जो भी डेटा है, हम तो मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में, जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है।
1: जी
0: तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
1: थैंक यू सो मच सर,
0: थैंक यू सो मच,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, निदेशक एआईजी अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाशगंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरु प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगोगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्थ ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनीशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur. He was initiated by Sri Dulal Roy. He took Talim from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padmasri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्री से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला, विलंबित रचना झपताल और दुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय बिगिंस हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री। ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप, विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was Rag Rageshri, performed by Prabhat Mukhopadhyay. He concludes his recital with a Pahari Dhun.

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक बंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit